तै लीने भगत राख, तिनका गुण अवगुण ना बीचारे कोए। एवद देख मन लगा सेव, तबीर त्यायो एक रंग, नाम देव हर जीव बसे संग, रविदास ते आए प्रभ अनूप, गुरु नानक देव गोविंद रूप, बसंत महला पंजवा, अनक जन्म प्रमे जून माहे, हार सिमन बिन नरक पाहे, भगत बिहूना खंड खंड, बिन बूझे जम देत दंड, गोविंद पजो।

काम क्रोध मन बस किया, सुपने नाम न हर लिया, कब ही राजा कब मंगन हार, दू सुख बांधो संसार, मन उदरण का साजना हे, पाबंदन नित पोत जागे, ईठ मीत को सखा नाहे, आ बीज आपे ही खाहे, जाके कीने होत बेकार, ते छोड़ चलिया खिन मैं गवार, माया मुए मोह भरमिया, किरतरे कर करमिया, करने हार।

देव जागत सोवत बहु प्रकार, गुरमुख जागे सोई सार, ए देही के अधिक काम। कह कबीर पज राम नाम, जो एक खसम है जाया।

मन पई उमंग घास चंदन चोआ बहु सुगंध पूजन चाली ब्रह्म ठाए तो ब्रह्म बतायो गुरमन ही माहे जहां जाएगे तय जल पखान तू पूर रहोगे।

करत रहत निरहारी, तेन जन की सेवा थाए पई, जिनको किरपाल होवत बनवारी, हर के हो संत भले ते उत्तम भगत भले, जो पावत हर राम मुरारी, जिनका अंग करे मेरा स्वामी, तिनकी नानक घर पैज सवारी। सारग मोहल्ला चौथा पड़ताल, जप मन गोविंद हर गोविंद, गुणी निदान ससृढ़ का प्रभु, मेरे मन हर बोल हर पुरख अविनाशी रघाओ, हर का नाम अमृत हर हर हरे, सो पिए जिस राम प्यासी, हर आप दयाल दया कर मिले, जिस सदगुरु सो जन हर हर अमृत नाम चखासी, जो जन सेव है ससदा मेरा हर घरे, इनका सब दुख परम पौ जासी, जन नानक नाम लए ता जीव है, ज्यो चातक जल पीए त्रिवतासी। सारग मल्ला चौथा जप मान श्री राम, राम रमत राम सत सत राम, बोलो भैया सद राम राम, राम रव रहा सरबगे रघाओ, राम आपे आप आपे सब करता, राम आपे आप आप सप्त जगे, जिस आप कृपा करे मेरा राम राम राम राय, सो जन राम नाम लिव लागे, राम नाम की उपमा देखो हर संत हो, जो भक्त जना की पत राखे, वेत कलयुग अगे, जन नानक का अंग किया मेरे राम राय, दुश्मन दूख गए सब पगे। सारंग महला पंजवा चौपदे कर पहला, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, सदगुर मूर्त कौ बल जाओ, अंतर प्यास चातक ज्यों जल की, सबल दर्शन कर पाओ रघाओ, अनाथा को नाथ सर्व प्रद पालक, भगत वशिल हर नाओ, जा को कोई ना रखे प्राणी, तिस तू दे असराओ, नितरिया तर निगतिया गत, निथाव्या तू थाओ, दस जाओ ता तू संगे, तेरी कीर्त कर्म कमाओ, एक ते लाख लाख ते एका, तेरी गतमत कह ना सकाओ, तू बेअंत तेरी मित नहीं पाईगे, तब तेरो खेल दिखाओ, साधन का संग ताश्यों गोष्ट, हर साधन स्यों लिवलाओ, जन नानक पाया है गुरमत, हर देव दर्श मन चाओ। सारग मोहल्ला पंजवा, हर जियो अंतर जामी जान, करत बुराई मांग ते छपाई, साखी पूत पवान रगाओ, बैसनु नाम करत खड़ कर्मा, अंतर लोभ जुठान, संसबा की निंदा करते डूबे सब अज्ञान।

करे सवरता जो सबरी दमपान। प्रभु भुलाए उजड़ पाए नेफल सब करमान। सो ज्ञानी सो बैसनो पढ़िया जिस करी कृपा भगवान। हुन सतगुर सेव परम पद पाया उधरिया सगल विसवान। क्या हम कथ किश कथ नहीं जाने प्रभ पावे तिवे बुलान। सा संगत की तूर एक मांगो जन नानक पयो सरान। सारग महला पंजवा अब मोरो नचनो रहो। लाल रंगीला सहजे पायो सतगुर बचन लहो रगाओ। पुआर कन्या जैसे संग सहेरी त्रिया बचन उपहास कहो। जौ सुर जन ग्रे पीतर आयो तब मुख काज लजो। ज्यो कनको कोठारी चढ़ो कबरो होत फिरो। जब ते शुद्ध पय गए बारे तब ते थान थिरो। जौ दिन रैन तउ लो बजो मूर्त करी पलो। बजावन गारो ऊर सुधारो ता फिर बाजना पयो। जैसे कुंभ उदक पूर आने ता को पेन दृष्टो। कहो नानक कुंभ

सदगुर प्रसाद कैसे कहो मुए जी बेदनाई। दर्शन प्यास प्रेप्रीत मनोहर मान ना रहे बहुविध उमकाई रखाओ। चितवन चितवो प्रेप्रीत बैरागी तद पावो हर दर्शाई। जतन करो तो मन नहीं तीरे को है रे संत मिलाई। जब तब संजम पुन सब होम अर्पो सब सुख जाई। एक निमुख प्रे दर्श दिखावे ते संतन कहे बल जाई। करो निहोरा बहुत बेनती सेवो दिन रहनाई। मान अपमान हो सगल त्यागो जो प्रे बात सुनाई। देख चरित्र पई हो बिस्मन गुर सदगुर पुरख मिलाई। प्ररंग दयाल हुए गृह में पाया जन नानक तप्त बुझाई। सारग महला पंजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही। नरक कोर में उर तब करता नेमख नेमख गुण गाही। अरहाओ आनक जन्म प्रमतो ही आयो मानस जन्म दुलभाही। गर्भ जोन छोड़ जो निकसेओ तव लागो अनठाही। करे बुराई ठगाई दिन रायन निफल कर्म कमाही। कण नाही तो गान लागे ताए ताए दुख पाही। मिथ्या संग कूड़ लपटायो उर्ज परेओ कुसुमाही। तर मराए जा पगस बगरे तो काल मुखा उड़ जाही। सो मिलया जो प्रभु मिलाया जिस मस्तक लेख लिखाही। कहो नानक तिन जन्म बलिहारी जो अल्प रहे मन माही। सारग महला पंजवा क्यों जीवन प्रीतम बिन माई। जाके बिशरत होत मृत का गृह में रहन न पाई। रघाओ जी ही प्राण को दाता जाके संग सुहाई। करो कृपा संतो मुए अपनी प्रा मंगल गुण गाई। चरण संतन के माथे मेरे ऊपर नैनो तूर बाशाई। जे प्रसाद मिल गए प्रभु।

अपना प्रसिमरन वडभागी हर पाई रखाओ। भलो कबीर दास दासन को ऊतम सैन जन नाई, ऊच ते ऊच नाम दे समदरसी रविदास ठाकुर बने आई। जियो पिंड तान तान साधन का यो मन संतरे नाई, संत प्रताप परम सब नासे नानक मिले गुसाई। सारग महला पंजवा मनोरथ पूरे।

मार्ग चले तिनी सुख पाया, जिनसो गोष्ट से तरे बूढ़त कोर अंधकूप में, ते साधु संग पार परे, जिनके पाग बड़े हैं भाई, तिन साधु संग मुख जुरे।

सुख साध समागम कोड बैकुंठे पाए रघाव दुलाभ दे जब होत पुनीता जंग की त्रास निमारे महापत्ते पादक उतरे हर नामा उतारे जो जो सुने राम जस निर्मल ताका जन्म मरण दुख नासा कहो नानक पाई गे वडपागी मन तन हुए बेगासा सारग महला पंजवा दो पदे कर चौथा एक ओंकार सदगुर प्रसाद मोहन कर आवहो करो जुदरिया मान करो अभिमाने बोलो पूल चूक तेरी प्रेत्रिया रघाओ निकट सुनो अर्पेखो नाही परम परम दुख परिया होए कृपाल गुर लाए पार दो मिलो लाल मन हरिया एक निमक जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिस लख बरिया साध संगत की पीर जो पाई तो नानक हर संग मिरिया सारग महला पनवा अब क्या सोचो सोच बिसारी करना सा सोई कर रहा दे नाओ बलिहारी रखाओ चौ दिस फूल रही बिखिया बिख गुर मंत्र मूख गरड़ारी आ दे राख्यो करे अपना ज्यो जल कमला अलपारी हाओ नाही किस मैं क्या हुसा तब तुम ही कल तारी नानक पाग प्रयोगर पाछे राग संत सदकारी सारग महला पंजवा आप मोहे सर्प पा बिरकाते करण कारण स्मरत स्वामी और एक स्ते मेरी गाते रघाओ देखे नाना रूप हो रंगा अन नाही तुम पाते दे आधार सर्व को ठाकुर जी प्राण सुख दाते प्रम तो हार जो परे हो तो गुर मिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया ए सुख बेगा नहीं राते सारग महला पंजवा अब मोहे लभ देव है घर टेका गुर दयाल पय सुखदाई अंधले मानक देखा रघाओ काटे अज्ञान तेमर निर्मलिया बुद्ध विगास बबेका ज्यो जल तरंग फेन जल हुई है सेव कु ठाकुर पय एका जय ते उठ्यो तय ही आयो सभी एक एका नानक दृष्ट आयो सब ठाई प्राण पति घर समका सारग महला पंजवा मेरा मान एक ही प्रेम मांगे पेख आयो सब थान देश प्रे रोम ना समसर लागे रहाओ मैं नीरे अनक भोजन बहु बिंजन पेसो दिष्ट ना करे रुचांग हरस चाहे प्रे प्रेम कुटेर ज्यो आल कमला लोभांग गुण निधान मन मोहन लालन सुखदाई सरबांग गुरु नानक प्रापाए पठायो मिलो सखा गल लागे सारग महला पंजवा आप मोरो ठाकुर स्यो मन माना साध कृपाल दयाल पय है यो छेद्यो दुष्ट बिगाना रघाओ तुम ही सुंदर तुम्हें सियाने तुम ही सुगर सुजाना सगल जोर अर ज्ञान ध्यान एक निमकन कीमत जाना तुम ही नायक तुम्हें शत्रपात तुम पूर रहे भगवाना पावो दान संत सेवा हर नानक सद कुरबाना।

छूटते गुर की सुहागन हर पायो सुगड़ सुजानी। जे कर में बैसन नहीं पावत तो थान मिलो बासानी। उनके बस आयो भगत बच्छल जिन राखी आन संतानी। कहो नानक हर संग मन मानिया तब चूकी कान लुकानी। सारग महला पंजवा अब मेरो पंचा ते संग टूटा। दर्शन देख पए मन आनंद गुर कृपा ते छूटा रखाओ। बेखम थान बहुत बहुत तरिया अनक राख छूरूटा। बेखम गार कर पहुंचे नाही संत सांत पै लूठा। बहुत खजाने मेरे पाले परिया अमोल लाल आखूटा। जन नांग प्रभु कृपा तारी तो मन में हारस कूटा। सारग महला पंजवा आप मेरो ठाकुर स्यो मन लीना। प्राण दान गुर पूरे दिया उरजायो ज्यो जरमीना। रखाओ काम क्रोध लोभ मद मस्तर ए अर्प

कहो नानक मैं सहज कर पाया अर भगत भंडार खजीना सारग महला पंजवा मोहन सब जी तेरे तू तार है छुट्टे संघार निमक कृपा ते कोट ब्रह्मंड उधार है रघाव करे अरदास बहुत बेनती निमक निमक सा महार है हो कृपाल दीन दुख पंजन हा दे निस्तार क्या ए भूपत बपरे कही है कहो ए किसनू मार है राख राख राख सुख दाते सब नानक जगत तुमार है सारग महला पंजवा आप मोहे तन पायो हर नामा पाए अचिंत तृष्ण सा बुझी है यो लिखियो लेख मथामा रखाओ खोजत खोजत पयो बैरागी फिर आयो दे गिरामा गुर किरपाल सौदा यो जोरियो हथ चिरियो लाल अगामा आन बापार बंज जो करिए तेते दुग सहामा गोविंद भजन के निरपय वापारी हरास नानक राम नामा सारग महला पंजवा मेरे मन मिट लगे प्रे बोला गुर पां पगर प्रसे वाला है सदयाल घर टोला रघाओ प्रभ तू ठाकुर सरप्रद पालक मुए कलत्तर सहित सब गोला मान तान सब तू है एक नाम तेरा मैं ओला ये तख्त बैसल है तो दास तुम्हारे कस बढ़ावे केतक भोला जन नान के प्रापुरख बेधाते मेरे ठाकुर अगे अतोला सारग महला पंजवा रसना राम कैत गुण सोहं एक निमख उपाय सुमावे देख चरत मन मोहं रघाओ जिस सुने मन होए रहस अत हृदय मान दुख जोहं सुख पायो दुख दूर परायो बन आई प्रभ तोहं के लभ गए मन निर्मल होई गए गुर काढे माया द्रोहं कहो नानक मैं सो प्रापाया करण कारण समर्थोहं सारग महला पंजवा नैनो देखो चलत तुमासा सबहु दूर सबहु ते नेरे आगम आगम कटवासा रहाओ अपूल ना भूले लिखियो ना चलावे मता ना करे पचासा खिन में सा सुवार बिनाहे भगत वशल गुण तासा अंध कूब में दीप बलियो गुरदे कियो परगासा कहो नानक दर्श पेग सुख पाया ता पूर्ण होई आसा सारग महला पंजवा चरणे गोविंद मार्ग सुहावा आन मार्ग जेता हिताइए तेतो ही दुखावा रहाओ नेत्र पुनीत पय दर्श पेखे हस्त पुनीत तहलावा हृदय पुनीत हृदय घर बस्यो मस्त पुनीत संत तूरावा सर्बन दान नाम हर हर कहे जिस कर्म लिखिया तिन पावा जन नानक कौ गुर पूरा पेट्यो सुख सहजे अनंद बिहावा सारग महला पंजवा त्यायो अंत बार नाम सखा जे माल पिता सुख भाई ना पहुंचे तहां तहां तू रखा रहाओ अंध कूप गृह में तिन सिमरे हो जिस मस्तक लेख लिखा खुले बंधन मुक्त गुर कीनी सब तू है तू ही दिख अमृत नाम पिया मन तृप्तया आगाए रसन चखा कहो नानक सुख सहज मैं पाया गुर लाही सगल तिखा सारग महला पंजवा गुर मेल ऐसे प्रभु ते आया भयो किरपाल दयाल दुख पंजन लगे न ताती बाया रहाओ जेते सास सास हम लेते एते ही गुण गाया निमक न बिशरे करी न बिसरे

पार ब्रह्म अजूनी संपो सर्व थान कड़ बीटा पयो प्राप्त अमृत नामा बाल बाल प्राप चरणीटा सत संगत की रेन मुख लागी की ये सगल तीर्थ मजनीटा कहो नानक रंग चलूल पय है हर रंग न लय मजीठा सारग महला पंजवा हर घर नाम दियो गुरसाते निमुख बचन प्रेही रे बस्यो सगल भूख मेरी लाथे रगाओ किरपा निदान गुण नायक ठाकुर सब समूह सब नाथे एक आस मोय तेरी स्वामी और द्वितीय आस बेराथे नैन तृप्तासे दिग दर्शावा गुर कर तारे मेरे माथे कहो नारक मैं अतुल सुख पाया जन्म मरण पय लाथे सारग महला पंजवा अरे मूड़े आन कहे कत जाई संग मनोहर अमृत है रे भूल भूल बिखाई रघाओ प्रभ सुंदर चतर अनूप विधाते तिस रुच नहीं राई मोन स्यों बाबर मन मोयो झूठ ठगौरी पाई पयो दयाल किरपाल दुख हरता संतन स्यों बन आई सगल निदान करे मैं पाए कहो नानक जोत समाई सारग महला पंजवा ओ अंग प्रेपीत चीज पै लरिया जो तो बचन दियो मेरे सदगुर तो मैं साज सी गरिया अरगाओ हम भूले तुम सदा अपूला हम पतत तुम पतत उदरिया हम नीच बिरख तुम मैं लागर लाज संग संग बिसरिया तुम गंभीर तीर उपकारी हम क्या बपरे जंतरिया गुर किरपाल नानखर मिलो तो मेरी सूख से जरिया सारग महला पंजवा मन ओए दिनस तन परवाना सबल ते करी संयोग सुहावे सदगुर संग गयाना रगाओ तन सुभाग तन सुहागा तन दिल जिन माना यो मन तुमरा सब गृह तन तुमरा हियो कियो कुर्बाना कोट लाख राज सुख पाए एक निमक पेख दिष्टाना जो कहो मुखो सेव के बैसिए तुग नारग अंत न जाना सारग महला पंजवा आप मोरो सहसा दुख गया और उपाव सगल त्याग छोड़े सदगुर शरण पया अरहाओ सर्व सिद्ध कार्य सब सबरे अंग रोग सगल की खया और पराध खिन में खो पई गए गुर मिल हर हर कहया पंच दास गुर वसगद कीने।

प्रभ मेरो एक पुत सदा सहाई, मनमोर मेरे जी को प्यारो, कमर कहां गुण गाई रहाओ। खेल खिलाए लाड लाडावे, सदा सदा अनदाई, प्रद पाले बारक की न्याई, जैसे मात पिताई, तिस बिन निमख नहीं रह सकिए, बिसर न कब हो जाई। कहो नानक मेल संत संगत ते, मगन पै लिवलाई, सारग महला पंजवां।

कार की प्रभ अपने काढ़ लिया दिख के रहे अमृत नाम औषध मुख दीनो जाए पया गुर पैरे कम उपमा कहो एक मुख निर्गुण के दाते रहे कार सिल्क जो अपना कीनो नानक सुख कन्हेर सारग महला पंजवा प्रसिमरत दुख बिनासी पयो किरपार जी सुखदाता होए सगल खलासी रघाव आवर न को सूजे प्रभिन कौ को किस पै जासी ज्यो जानो त्यो राखो ठाकुर सब कुछ तुम्ही पासी हाथ दे राखे प्रभ अपने सब जीवन अबनासी कहो नानक मन अंध पया है काटी जम की फांसी सारग महला पंजवा।

जब भूखो तब भोजन मांगे हकाए सुख किनारे तब अरोग जब तुम संग बस्तो छुटकत हुए रवारे कवन बसेरो दादासन को

अंधकूपमय पतत होत जग संतो करो परम गत मोरी साध संगत नानक पयो मुक्ता दर्शन पेखत पोरी।

दुख नाठे सुख सहज समाए, आनंद अंध गुण गाया, बां पगर कढ़ लीने अपने, गृह अंध कूबते माया। कहो नानक गुर बंधन काटे, बिशरत आन मिलाए।

मुक्त को दाता एक सस्यों लिवलाओ कहो नानक ताकी शरणाई देत सगल अपयाओ। सारग महला पंजवा होती नहीं कमन कछ करनी ए ओड़ पाई मिल संत गोपाल एक की सरणी रघाओ। पंच दोख शिद्र या तरम है बिखे ब्याध की करनी आस अपार दिनस गण राखे ग्रस्त जात बल जरणी अनाथे नाथ दयाल सुख सागर सर्व दुख पय हरणी मन बांछित चितवत नानक दास।

छोड़ो कपट होए निर्वैरा तो प्रसंग निहारे सतन वंजो सतनक संचो कबून आवो हारे खात खर्चत किश निखुटत नाही।

साध संगत ओहे निर्मल बौड़ जोन ना आओ जियो प्राण आधार तेरा तू निसावे थाओ सास सास समाल हर हर नानक सरबल जाओ सारग महला पनवा बैकुंठ गोविंद चरण नित त्याओ मुगत पदार्थ साधु संगत अमृत हर का नाओ।

प्रभ सेव करत अन सेवा बिरथा काटे काल जा जम आए संघारे प्राणी तब तुमरो कौन होवाल राख लेहो दास अपने को।

शरीर सब हुट्यो, सास गयो तत घाट रहाओ, अनास रियान उधरले पुखे माया गईया हाट, तेल भग करत करत पछतावे, कभू न साके शांत, निंदक जमदूती आए संगारेओ, देवे मूंड ऊपर मटाक, नानक आपन कटारी आपस को लाई, मन अपना कीनू फाट, सारग मोहल्ला पंजवा टूटी, निंदक की अद बीच, जनका राखा आप स्वामी, बेमुख को आए पहुंची मीच रहाओ, उसका कहया कोई न सुनई,

पंजवां तृष्णा जलत बहु प्रकार पूर्ण होत न कतहु बात अंत पर पिहार रगाओ सांत सुख न सहज उपजे ये इस व्यवहार आप पर का कछ न जाने काम क्रोध है जार संसार सागर दुख व्यापे हो।

काम क्रोध निंदा परहरिय काढे साधु के संगमार। जन्म पदार्थ गुरमुख जीतया बौर न जुए हार। आठ पैर प्रभु के गुण गावे

गोविंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञान रघाव साधक सिद्ध सगल मुन लोचे बिरले लागे ध्यान जिसे कृपाल होए मेरा स्वामी पूर्णता को काम जा के हृदय वसे पए भंजन ते जाने सगल जगान खेन पल बिसर नहीं मेरे करते तो नानक मांगे दान सार्ग मोहल्ला पंजवा बूठा सर्वथाई में हो अंध मंगल गाओ हर जस पूर्ण प्रट्यो ने हो रहाओ प्यार कुंट दह दिस जल निध ऊन थाओ ना के हो कृपा निध गोविंद पूर्ण जी दान सब देहो सत सत हर सत स्वामी सत सा संगे हो सत तेजन जिन प्रतीत उपजी नानक नह परम एहो सार्ग मोहल्ला पंजवा गोविंद जियो तू मेरे प्राण आधार ताजन मीत सह।

और जोन ना पाए पय कृपाल दयाल गोविंद पया साधु संग हर चरण रास नानक पाई लगा प्रसो रंग सारग महला पनवा माई री पेख रही बिस्माद अनह तुनी मेरा मन मोयो अचरज ताके स्वाद रहाओ माद पिता बंद पगै सोई मन हर को अहलाद साध संग गाए गुण गोविंद बिनस्यो सब प्रमाद डोरी लपत रही चरणे संग परम पै सगले खाद एक आधार नानक जन किया बौर न जोन परमाद सारग महला पंजवा माई री माती चरण समूह एक बिन हो आन न जानो दुतिया पाओ सब लुह रहाओ त्या गोपाल अवर जो करना ते बिखिया के खूह दर्स प्यास मेरा मन मोयो काढ़ी नरक ते तूह संत प्रसाद मिलो सुखदाता मिर्सी हो में हू आराम रंग राते दास नानक मौल्यो मन तन जूह सारग महला पंजवा बिन से काद के व्योहार आराम पज मिल साध संगत हे जग में सार रगाओ ईत पूतना डोल कतहु नाम हिरदे तार गुर चरण भोजत मिलो भागी उतरे संसार जल थल मैयल पूर रहे हो।

मोह मद मत सिमरत ना गए हरे रगाओ, साध संग जपते नारायण तिनके दुख जरे, सबल दे तन ओए जन्मे प्रभ के संग रले, प्यार पदार्थ अष्ट दिशा सिद्ध

तू बेअंत पार ब्रह्म स्वामी पर तेरी जाए न लाखी। चरण कमल प्रीत मन विद्या कर सर्वस अंतर राखी। वेद पुराण सिमरत साधु जान।

परा पूर्व जिसे लिखया बिरला पाए कोए, रावण को गोपाल करते नानका सजोए। सार्ग मोहल्ला पंजवा, हर के नाम की मत सार, हर विसार जो आन राचे मितन सब स्थार रगाओ। साध संगम बज स्वामी पाप होवत खार, किरनार बिन बसाहिर दे बौर जन्म ना मार।

मोहेली प्रे प्रीत हृदय मेल सरबरी प्रीत दयार प्रसदारी दयार काए आन आन रुचिए हर संग संग खचिए जो साध संग पाए कौ नानक हर ते आए अब रहे जमे मेल सार्ग महला पंजवा तंचना बो दत करा होम दान अर्प तरा मन अनक सोच पवित्र करत ना हीरे नाम तुल मन चरण कमल लागे रघाओ चार वेद जेब पने दस अष्ट खष्ट श्रवण सुने नहीं तुल गोविंद नाम तुने मन चरण कमल लागे परत संद सोच चार किरिया कुंट निराहार।

प्रीत लाए हर त्याए गुण गोबिंद सदा गाए हर जन की रेन बांश दयनगार स्वामी सर्व कुशल सुख विश्राम आन दा आनंद नाम जम की कछ नाहे त्रास तिमर अंतर जामी एक शरण गोविंद चरण संसार सगल ताप हरण नाभ रूप साध संग नानक पार ग्रामी सारग महला पंजवा गुण लाल गावो गुर देखे पंचा ते एक छूटा जो साध संग पग राओ रगाओ दृष्टो का संग न जाए मान त्याग मोह एक घर प्रीत लाए मिल साध संग सोहा पायो है रे गुण दान सगल आस पूरी नानक मन आनंद पए गुर बिखम गार तोरी सारग मोहल्ला पंजवा।

काम करी सब त्याग के हों शरण पर होगी। नानक स्वामी घर मिले हों गुरमनाब होगी। सारग मोहल्ला पंजवा ऐसी होए परी, जानते दयार रगाओ मातर पितर त्याग के मन संत पाए बेचायो। जात जन्म कुल खोइए हों गावो हर हरी, लोक कुटुंब ते टूटिए प्रभ किरत किरत करी। गुरमुख उपदेसिया नानक सेव एक हरी। सारग मोहल्ला पंजवा लाल लाल मोहन गोपाल तू, कीड हस्त पाखान जंत सर्व में प्रतपाल तू रहाओ। ने दूर पूर हजूर संग सुंदर रसाल तू, ने बर्न बर्न ने कुले कुल नान प्रभ कृपाल तू। सारग मोहल्ला पंजवा करत केल बिखे मेल, चंद्र सूर मोहे उपजता विकार दुंदर। नौकरी चुनंत कार सुंदर अनेक पाओ करत फिरत, बिन गोपाल तोहे रगाओ तीन पौने लपटाए रही। काज कर्म ना जात सही ओ मत अंध तंद रचत, जैसे महासागर होहे उधरे हर संत दास। काड दीनी जमकी फास पतत पावन नाम जाको, सिमर नानक ओहे एक ओ अंकार। सतगुर प्रसाद राग सारंग महला नामा, हर बिन तेरो को ना सहाई। कां की माल पिता सुध बनता को काहू को पाई रगाओ, तन धरणी पर संपद सगरी जो मान्यो अपनाई। तन छूटे का संग न चाले कहां ताए लबटाई, दीन दयाल सदा दुख भंजन तस रुचना बढ़ाई। नानक कहत जगत सा मिथया जो सुपना रहे नाई। सारंग महला नामा कहां मन बिखिया स्यों लबटाही, या जग में कू रहन न पावे एक आवे एक जाही। रहाओ कां को तन तान संपद का की का स्यो निहो लगाई, जो दिसे सो सगल बिनासे जो बादर की शाही। तज अवमान शरण संतन गहो मुक्त होए शिन माही। जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने पी नाही। सारंग महला नामा कहा नर अपनो जन्म गवावे, माया माद बिखे रस रचियो आराम सन नहीं आवे। रगाओ यो संसार सगल के सुपनो देख कहां लोभावे, जो उपजे सो सगल बिना से रहन न को उपावे। मितया तान साचो कर मान्यो

कोड़ कल्प के दुख बिनासन, साध दृढ़ाए नंबेरा रखाओ, क्रोध निवार जले हो ममता, प्रेम सदा नवरंगी, अनपो बिसर गए प्रो जात्या, हर निर्मायल संगी, चंचल मत त्याग पव पंजन पाया, एक शब्द लिवलागी, हर अचाख त्रिखा निवारी, हर मेल लहे बड़पागी।

मन मेरे हर की अकथ कहानी, हर अंदर करे सोई जन पाए, गुरमुख विरले जानी रखाओ, हर गैर गंभीर गुणी गहीर, गुर के शब्द पछानिया, बहुविध कर्म करे पाए दूजे, बिन शब्दे बहुरानिया, हर नाम नावे सोई जन निर्मल, फिर मैला मूल न होई, ना बिना सब जग है मैला, दूजे परम पद खोई, क्या दृढ़ा क्या संग्रह त्यागी, मैं ता बूझ न पाई, होए दयाल कृपा कर हर जियो, नम होए सखाई, सच्चा सदाता कर्म विदाता, जिस पावे थे नाए लाए, गुरु द्वारे सोई बूझे, जिसनु आप जाए, देख विस्माद जो मन नहीं चेते, आवा गौण संसारा, सतगुर सेवे सोई बूझे, पाए मोह द्वारा, जेंदर सूझे, से कदे ना बिगाड़े, सतगुर बूझ बुझाई, सत संजम करनी किरत कमावे, आवन जान रखाई, थे दर साचे, साज कमावे, जिन गुरम

नानक से जन थाए पाए गए, जिनकी पद पावे लेख सारग महला पंजवां, अष्टपदियां कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुसाई प्रताप तुहारो डीठा, करन करावन उपाय सुमावन, सगल छत्रपद बीठा रखाओ, राणा राव राज पै रंका, उन झूठे कहन कहायो, हमरा राजन सदा सलामत, ताको सगल कटां जस गायो, उपमा सुनो राजन की संतो, कैद जेद पाहुच, बेसुमार वर्षा दा तारा, ऊचे ही ते ऊचा, पावन परोयो सगल कारा, पावक काष्ट संगे, नीर तरण कर राखे एकत, कोई न किस ही संगे, धड़कड़ कथा राजन की चल है, कर कर तुझे उमाहा, जी जन सब पाछे करया, प्रथम रिजक समाहा, जो कुछ करना तू आपे करना, मसलत काहू दीनी, आनक जिदन का करे दिखाए, साची साखी तीनी, हार भगतां का राखे अपनी, दीनी नाम डाई, जिन जिन करी अवग्या जन की, ते तैं दिए रुड़ाई, मुक्त पय सा संगत कर, तिनके अवगुण सब परखरिया, तिनको देख पय कृपाला, तिन पवसागर तरिया, हम नाने नीच तुम्हें बड़ साहेब, कुदरत कौन बिचारा, मन तन शीतल गुरदर्श देखे, नानक नाम आधारा, सारग महला पंजवां, अष्टपदी कर छेवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आगम अगाध सुनो जन कथा, पार ब्रह्म की अचरज सभा रखाओ, सदा सदा सतगुर नमस्कार, गुर कृपा ते गुण गाए अपार, मन पीतर होवे परगास, ज्ञान अंजन अज्ञान विनाश, मित नाही जाका विस्तार, तो बाता की अपर अपार, अनक रंग जाके गने ना जागे, सोग हरख दोहु मै नागे, अनक ब्रह्मे जाके वेद तुन करे, अनक महेश बैस ध्यान करे, अनक पुरख

अनक सूर ससियर नखियात, अनक देवी देवा बोपात, अनक बजदा अनक काम तेन, अनक पार जात अनक मुखबेन, अनक आकाश अनक पाताल, अनक मुखी जपगे गोपाल, अनक शास्त्र सिमरत पुराण, अनक जुगत होत बखियान, अनक स्रोते सुने निधान, सर्व जी पूर्ण भगवान, अनक धर्म अनक कुमेर, अनक वर्ण अनक कनक सुमेर, अनक शेख नवतन नाम लेहे, पार ब्रह्म का अंत न देहे, अनक पुरिया अनक तैखंड, अनक रूप रंग ब्रह्मांड, अनक बना अनक फल मूल, आपे सूक्ष्म आपे अस्थूल, अनक जुगाद जिनस अररात, अनक परलो अनक उत्पात, अनक जी जाके ग्रे माहे, रम तरा पूर्ण सर्व ठाए, अनक माया जाकी लखी न जाए, अनक कला खेले हर राय, अनक तो

पे आया सारंग की वार महल्ला चौथा हराए महमे हसने की तोन एक ओंकार सदगुर प्रसाद श्लोक महल्ला दूजा।

आधार नानक आप सदीव है। पूरा जिस पंडार वड्डा कर सालाही है। अंत न पारावार पौड़ी हर का नाम निधान है। सेवे सुख पाई नाम निरंजन उच्चरा पत स्यों कर जाई। गुरमुख बाणी नाम है नाम हृदय वसाई। मत पंखे रूवस होए।

दुख च जम्मण, दुख मरण, दुख वर्तन संसार, दुख दुख अगे आखिए पड़ पड़ करे पुकार, दुख या पंडा खुलियां सुख ना निकले हो कोए, दुख जियो जलाया दुखिया चलिया रोए, नानक सिवती रत्या मन तन हरिया होए, दुख की अग्गी मारिए पी दुख दारू होए, मोहल्ला पहला नानक दुनिया पस रंग पसू पस खेहे, पसो पस कमावनी पी पस परिये देह, जा जियो विच्चों कड़िये पसू पर आ जाए, अगे लेखा मंगे होर दसूनी पाए पौड़ी, नाए सुने सुज संजम जम नेड़ न आवे, नाए सुने कड़ चानना आरेर गुवावे, नाए सुने आप बुझिए लाहा नाओ पावे, नाए सुने पाप कटिए निर्मल सच पावे, नानक नाए सुने मुख उजले नाओ गुरमुख त्यावे। श्लोक महला पहला, कर नारायण सभा नाल

नाय मने सुरत उपजे नामे मत होई, नाय मने गुण उच्चरे नामे सुख होई, नाय मने प्रम कटिए फिर दुख न होई, नाय मने साराई है पापा मत तोई, नानक पूरे गुरते नाओ मनिए जिन देवे सोई। श्लोक महला पहला। सत्र वेद पुराण पढ़ंता पूकारंता अजाणंता जां बूझे तां सूझे सोई, नानक आखे कूक ना होई। महला पहला। जा हो तेरा तां सब कुछ मेरा, हो ना ही तू होवे आपे सकता आपे सुरता, सकती जगत परोवे आपे भेजे आपे सदे, रचना रच रच वेखे नानक सच्चा सच्ची नाई, सच पवे तुर लेखे पौड़ी, नाम निरंजन अलख है क्यों लखया जाई, नाम निरंजन नाल है क्यों पाई गे पाई, नाम निरंजन वरतदा रविया सब ठाई, गुरपूरे ते पाई है हिरदे दे दिखाई, नानक नदरी कर्म होए गुर मिलिए पाई। श्लोक महला पहला। कल होई कुत्ते मुही खाज हुआ मुरदार, कूड़ बोल बोल पौंकना।

आप गवाए सतगुरु नो मिले सहजे रहे समाए। नानक तिना नाम ना विसरे सच्चे मेल मिलाए पौड़ी। खान मलूक कहाए दे को रहन न पाई। गढ़ मंदिर गज गिरिया किस साथ न जाई। सोएन सागत पौन वेग त्रिग त्रिग चतुराई। शक्ति अमृत प्रकार करे बहुमहल वधाई। नानक जो देवे तिसे ना जाननी मनमुख दुख पाई। श्लोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके दे संतर पा थके पेख तारी। दूजे पाए नाव कदे ना पाएन दुख लागा अद पारी।

फिर हुए ना बिनासा, हर से तीरंग रव रहे सब सास गिरासा, हर का रंग कभी ना उतरे गुरमुख पर गासा, ओए कृपा करके मेलियन नानक हर पासा। श्लोक महला तीजा, जिच ओ मन लहरी विच है होम में बहुत अहंकार, शब्दे साधन आवई नाम न लगे प्यार, सेवा थाए न पवी तिसकी खब खब होए खुआर, नानक सेवक सोई आखिए जो सिर तरे उतार, सतगुरु का पाणा मान ले शब्द रखे उतार। महला तीजा, सो जापो तब सेवा चाकरी,

लोभ लहर सुध मत गई, सच न लगे प्यार। गुरमुख जिना शब्द मन वसे, दर गए मोह द्वार। नानक आपे मेल लय, आपे बख्शन हार। महला चौथा, नानक जिस बिन कड़ी ना जीवना, विसरे सरय ना बिंद। तेज क्यों मन रूसी है, जिस हमारी चिंद। महला चौथा, सावन आया चिमचिमा, हर गुरमुख नाम ते आए। दुख पुख काड़ा सब चुकाए सी, मीहो मुठा शैबर लाए। सब तरत पई हरियावली, आन जम्या बोहल।

कहां नार गर्भस थोरी बात, मंद नाज टका चार गांठी, आइडो टेडो जात गाओ, बहुत प्रताप गांव सो पाए, दो लख टका बरात, दिस चार की करो साहिबी, जैसे बनघर पात, ना को ले आयो यो तन, ना को ले जात, रावण हूं ते अलक शत्र पा, हर के संत सदा सिर पूजो, जो हर नाम जपात, जिन को कृपा करत है गोविंद, ते सत्संग मिलात, मात पिता बंता सुत संपत, अंत न चलत संगात, कहत कबीर आराम पज बौरे, जन्म

माया कारण श्रम अत करे, सो माया ले गाडे तरे, आत संचय समझे नहीं मूड, तान तरती तन होए गयो तूड़, काम क्रोध तृष्णा अत जरे, साध संगत कबहू नहीं करे, कहत नाम जो ताची आन, निरपय होए पजिए भगवान, बदो की ना होट माधो मोस्यों, ठाकुर ते जान जानते ठाकुर, खेल परयो है तो स्यों रहाओ, आपन देव देवरा आपन, आप लगावे पूजा, जल ते तरंग तरंग ते है जाल, कहन सुन को दूजा, आपे गावे आपे नाचे, आप बजावे तूरा, कहत नाम देव तू मेरो ठाकुर, जन ऊरा तू पूरा, दास अनिम मेरो निज रूप, दर्शन निमख ताप त्रिमोचन, परसत मुक्त करत ग्रे कूप रहाओ, मेरी बंदी भगत छिड़ावे, बंदे भगत न छूटे मोहे, एक समय मोको गए बंद, तौ फुन मैं पो जवाब न होए, मैं गुण बंद सगल की जीवन, मेरी जीवन मेरे दास, नाम देव जाके जी ऐसी, तैसो ताके प्रेम परगास, सारंग एक ओंकार, सदगुर प्रसाद, तय नर क्या पुराण सुन कीना, आन पावनी भगत नहीं उपजी, भूखे दान ना दीना रहाओ, काम ना बिसरयो, क्रोध ना बिसरयो, लोभ ना छूट्यो देवा, पर निंदा मुखते नहीं छूटी, निफल पई सब सेवा, बाट पार कर मूस बिरानो, पेड़ परे अपराधी, जे परलोक जाए अब कीरत, सोई अविद्या साधी, हिंसा तो मन पे नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली, परमानंद सा संगत मिल, कथा पुनीत ना चाली, छाड़ मान हर विमुखन को संग, सारंग महला पंजवा सूरदास, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर के संग बसे हर लोक, तन मन अर्प सर्वस सब अर्प्यो, अंध सहज तुन चोक रगाओ, दर्शन पेख पय निर्भखई, पाए गए सगले थोक, आन बस त्यों काज न कछुए, सुंदर बदन अलोक, श्याम सुंदर तज आन जो चाहत, ज्यो पुष्टि तन जोक, सूरदास मन प्रभत लीनो, दिनो यो परलोक, सारंग कबीर जियो, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, हर बिन कौन सहाई मन का, माल पिता पाई सुध बनता, हित लागो सब फन का, अरहाव आगे कौ किछ तुलखा बंद हो, क्या प्रवासा तन का, कां बिसासा इस पांडे का, इत लग लागे ठनका, सागल तरम पुन फल पाव हो।

निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पंग गुरप्रसाद खाना पीना हसना सौना विसर गया गए मरना खसम विसार खुवारी कीनी त्रिक जीवन नहीं रह।

जियां अंदर जियो तुही, गुरमुख त्यावे से अमृत पावे, से ही सूचे हो ही। आयरस नाम जपोरे प्राणी, मैले खच्चे हो ही। जे ही रुत काया सुख तेहा, तेहो जे ही देही। नानक रुत सुहावी साई, बिन नावे रुत के ही। मलार महला पहला, करो

आवे बरस कना मेरा मन पीना अमृत बूंद सुहानी ही अरे गुरमोही मन गरस लीना रहाओ सह सुखी वर कामन प्यारी जिस गुरबचनी मन मानिया हर वर नार पही सोहागन मन तन प्रेम सुखानिया अवगुण त्याग पई बैरागन अस्थिर वर सुहाग हरी सोग विजोत कदे न व्यापै हर प्रभ अपनी कृपा करी आमन जान नहीं मन निचल पूरे गुर की ओट गही नानक राम नाम जप गुरमुख तन सुहागन।

जिसमें नाम निरंजन अंश दुख रोग सब गया गवाए, नानक छूटस साचै नाय। मलार महला पहला, दुख मोहरा मारन हर नाम, सिला संतोख पीसन हथदान, नित नित लेहो।

प्राप नारायण सोई। गुर प्रसाद परम पद पाया वड्डी वड्याई होई। अन दिन गुण गावे नित साचे सच समावे सोई। मान रे

मन की बिद सतगुर ते जाने अन दिन लागे साधे गर्स्यों ध्यान गुर शब्द रते सदा बैरागी।

माया मोह अज्ञान गुबार, मन मुख मोहे मुग्ध गवार, अनदिन तंदा करत विहाए, मर मर जम्मे मिले सजाए, गुरमुख आराम नाम लिवलाई, कूड़े लालच ना लवटाई, जो किश होवे सहज सुपाए, हरस पीवे रसन रसाए, कोड़ मध्ये किसे बुझाई, आपे बख्शे देव डियाई, जो तुर मिलिया तो विछड़ ना जाई, नानक हर हर नाम समाई।

पाए, यो विछोड़ा सहया ना जाए। सतगुर मिले ता मिले सुपाए, नामहीन बिनसे दुख पाए। तृष्णा जलिया भूख न जाए, बिन भागा नाम न पाया जाए। बहुविध थाका कर्म कमाए, त्रै गुण बाणी वेद विचार। विख्या मैल विख्या व्यापार, मार्जन।

जन के हम हाट बेहाजे जिस हर घर कृपा करे हर जन को मिलिया सुख पाइये सब दुरमत मैल हरे हर जन को हर भूख लगानी जन तृपे जा हर गुण विचरे हर का जान हर जल का मीना हर बिसरत फूट मरे जिन ए प्रीत लाई सो जाने कह जाने जिस मन तरे जन नानक हर देख सुख पावे।

राजा राम रमत सुख पायो, बरस मेघ सुखदाई रहाओ। एक पाल बिसरत नहीं सुख सागर, नाम नवे निद पाई। उदाओत पयो पूर्ण भावी को, पेटे संत सहाई। सुख उपजे दुख सगल बिनासे, पार ब्रह्म लिवलाई। तरयो संसार कठिन पै सागर, हर नानक चरण।

आनंद मंगल सुख पाया रखाओ, मिटे कलेश त्रिसन सा बूझी पार ब्रह्मन त्याया। साध संग जन्म मरने वारे बौर न कतहु ताया, मन तन नाम निरंजन रत चरण कमल लिवलाया। अंगीकार कियो प्रभ अपने नानक दास शरणाया, मलार मोहल्ला पंजवां विशरत क्यों जीवे ओए जीवन, चिते उलास आस मिल।

प्रातन साधु संग उधारे रखाओ। देव कोल दैंत कोल जाख किन्नर नार सागर उतरे पारे। जो जो भजन करे साधु संग ताके दुख बिदारे। काम क्रोध मां बिखिया रस इनते पए निरारे। दीन दयाल जपे करणा मैं नानक सद बलिहारे। मलार महला पंजवा आज मैं बैस्यो हर हाट। नाम रास संजी कर जम स्यो जाओ ना जम कै घाट। रखाओ तार अनुग्रह पार ब्रह्म राखे प्रम के खुले कपाट। बेसुमार साहु प्रापाया लाज चरण निध खाट। शरण गई अच्युत अविनाशी।

सेवक पूर्ण भगत चेरानो रहाओ। ए त्योत डोल डोल शरम पायो, तान तान होत बेरानो। लोग दोराए करत ठगियाई, होतो संग न जानो। मृग पंखी मीन दीन नीच, ए संकट फिर आनो। कहो नानक पान प्रवतार हो, साध संगत सुख मानो। मलार महला पंजवां, दुष्ट मोए बिख खाई रीमा।

मन मोयो हर पंख लगाए मलीजै रहाओ खोजत खोजत मार्ग पायो साधु सेव करीजै तार अनुग्रह स्वामी मेरे नाम महारस।

पंजवां पड़ताल कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर मनार प्रे दयार स्यो रंग किया।

बाजे बजे मृदंग अनाद कोकलरी आराम नाम बोले मदर बैन अत सोईया ऐसी तेरे दर्शन की शोभ अत अपार प्रे अमोग तैसे ही संग संत बने पाव उतार नाम पने राम राम राम माल मन फेरते हर संग संगिया जन नानक प्रयो प्रीतम थिया मलार मगल्ला पंजवा मन कने प्रमे बने ओमक तरस चाले

हू गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गामनी नीकी रहाओ तोनत ललत गुनाग अंक पांत बोविध रूप दिखामनी निकी गिर तार फल जल पावन परपुर कट कट लालन शावनी निकी साध संग रामैया रस पायो नानक जाके पावनी निकी मलार मोहल्ला पंजवां गुरप्रीत प्यारे चरण कमल अंतर तारे रहाओ दर्श सबलो दर्श पेखियो गए किल विख गए मन निर्मल उजियारे बिस्म बिस्मे बिस्म पई अग कोट हरते नाम लई गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही

प्रयो प्रयो करे सबे है जेती, गुर पावे प्रयो पाई। प्रयो नाले सदगी सच संगे, नदरी मेल मिलाई। सब में जियो जियो है सोई, काट काट रहा समाई। गुर प्रसाद कर ही परगासया, सहजे सहज समाई। अपना काज सवार हो आपे, सुखदा ते गोसाई। गुर प्रसाद कर ही पिर पाया, तो नानक तबत बुझाई। मलार महला पहला, जागत जा

अंध नहीं सूझे, बद्धक कर्म कमावै, सदगुर मिले तां सूझस बूझस, सच मन ज्ञान समावै, निर्गुण दे

मान रे सतगुर सेव समाए वडे पागुर पूरा पाया हर घर नाम त्याए रहाओ हर अपने भाणे सृष्ट उपाई हर आपे दे आधार हर अपने भाणे मन निर्मल किया हर स्यों लागा प्यार हर के भाणे सतगुर पेटिया सब जन्म सवारन हार वाहो बाणी सत है गुरमुख बूझै कोए वाह वाह कर प्रसाद आईए तेस जेवड़ अवर न कोए आपे बगसे मेल लय कर्म प्राप्त होए साचा साहेब मारो सतगुर दिया दिखाए अमृत वरसै मन संतोखिए सच रहे लिवलाए हर के नाए सदा हरियावली फिर सुके ना कुमलाए बिन सतगुर किने ना पायो मन वेखो को पतियाए हर कृपा ते सतगुर पाईए भेटे सहज सुपाए मानमुख परम भुलाया बिन पागा हर तन ना पाए त्रै गुण सबा तात है पढ़ पढ़ करे विचार मुक्त कदे ना होवई न पाएन मोह द्वार बिन सतगुर बंधन ना टुट ही नाम न लगे प्यार पढ़ पढ़ पंडित मुनि थके वेदां का अभ्यास हर नाम चित ना आवई न निज कर होवै वास जमकाल सिरो ना उतरै अंतर कपट विनाश हर नावे नू सब को प्रताप दा विण भागा पाया ना जाए नदर करे गुर पेटिए हर नाम से मन आए नानक नामे ही पत उपजे हर सुरहां समाए मलार महला तीजा अष्टपदी।

महा पतत तुम तारे, पतत पावन भगत बच्छल, किरपा सिंध स्वामिया, संत संगे भजन संगे, रौ सदा अंतर जामिया, कोट जन्म परमंत जोनी, ते नाम सिमरत तारे, नानक दर्श प्यास वर जियो, आप लिओ सुमारे, हर चरण कमल मन लीना, प्रभ जल जन तेरे मीना, जल मीन प्रभ जीव एक तू है, पिन आन ना जानिए, गए पूजा लेवो नाम देवो, तौ प्रसादी मानिए, पज साध संगे एक रंगे, किरपाल गोविंद दीना, अनाथ नीच शरणाए नानक, करमया अपना कीना, आपस को आप मिलाया, भ्रम पंजन हराया, आचर्य स्वामी अंतर जामी, मिले गुणित प्यारिया, महामंगल सुह उपजे, गोविंद गुणित सारिया, मिल संग सोहे देख मोहे, पुरब लिखिया पाया, बिनवंत नानक शरण तिनकी।

तिन कामणी जिन कंते स्यो मन भंग पौड़ी दोवें तरफा उपाय एक वरत्या वेद बाणी वरताए अंदर वाद कत्या।

पौड़ी सच्चा सतगुर सेव सच संभालिया अंत खलोआ आए जे सतगुर अगे कालिया हो न सके जमकाल सच्चा रखवालिया गुरसाखी जोत जगाए दीवा बालिया मानमुख विण नावे कूड़ियार।

सच्चे शब्द निहालिया, नानक नाम निधान है पूरे गुरदे खालिया। श्लोक महला तीजा, वाह भी है हुक्म पछाणिया, गुर कै सहज सुपाए, मेघ वरसे दया कर गूढ़ी शैबर लाए। बाबी के कूक पुकार रह गई, सुख वसिया मन आए, नानक सो साल आई है जे देंदा सबना जिया रिजक समाए। महला तीजा, चातरक तू ना जान ही, क्या तुद विच तिखा है किल पीते तिख जाए। दूजे पाए परमया अमृत जल पल्ले ना पाए, नदर करे जे अपनी ना सतगुर मिले सुपाए। नानक सतगुर ते अमृत जल पाया, सहजे गया सुमाए पौड़ी, एक वाणखण बैसे जाए साधना देव ही, एक पाला ककर पन्न शीतल जल हेव ही, एक पसम चिड़ावे अंग मैल ना तोव ही, एक जटा बिगट बिगराल कोल कर खोव ही, एक नगर फिरे दिन रात नींद ना सोवगी, एक अगन जलावे अंग आप विगोवगी, विणनावे तनशार या कह रोवगी, सोहन खसम द्वार जे सदगुर सेवगी।

रूप जात जोबन पंजे ठग एनी ठगी जग ठगया किने न रखी लज एना ठगन ठग से जे

अकल मन गोर न माने, मन कमीन कम तरीन, तू दरिया ओ खुदाया। एक चीज मुझे देहे आवर जहर चीज ना पाया, पुराब खाम कूजे हिकमत खुदाया। मन तुआना तू कुदरती आया, सग नानक दीवान मस्ताना निध चढ़े सवाया।

प्रतहार तो ऐसा राजा श्री गोपाल जांचे कार गान गंधर्व रिखी बपड़े टाडिया गावंत अच्छा

भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद नागर जना मेरी जात बखियात चमारंग हृदय राम गोविंद गुण सारंग हरहाओ सुरसरी सरल किरत बारनी रे संत जन करत नहीं पानंग तुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरसरी मिलत न होए आनंग तर तार अपवित्र कर मानिए रे

सर्व सुख पाया पार ब्रह्म जप पए दयाल। कहो नानक तो छूटे जंजाल, कानड़ा मोहल्ला पंजवां ऐसी मांग गोबिंद ते। तैर संतन की संग साधु का, हर नामा जप परम गते रखाओ। पूजा चरना ठाकुर सरना, तोई कुसल जो प्रभ जी उपरना। सबर होते दुर्लभ देही, जाको सदगुर मया करेही। अज्ञान परम बिन से दुख डेरा, जाके हृदय बसे गुर पाए।

पूर्ण होवे आस। तानड़ा मोहल्ला पंजवां, साध संगत निधर को नाम, तंग सहाई जी के काम रखाओ, संतरेन नित मज्जन करे, जन्म जन्म के किल बिख हरे, संत जना की ऊंची बानी, सिमर सिमर तरे नानक प्राणी। कानड़ा मोहल्ला पंजवां, साधु हर हरे गुण गाए, मान तन तन प्राण प्रभ के, सिमरत दुख जाए रखाओ। ईत ऊत कहां लोभ आवे, एक स्यो मन लाए, महा पवित्र संत आसन, मिल संग गोबिंद त्याय, सगल त्याग शरण आयो, नानक लेहु मिलाए। कानड़ा मोहल्ला पंजवां, पेख पेग बिसाओ साजन, प्रभ अपना एकांत रखाओ। आन दा सुख सहज मूर्त, तिस आन नाही भांत, सिमरत एक बार हर हर, मिट कोट कसमल जांत, गुण रवंत दुख नस है, रिद पय अंत सांत, अमृता रस पीओ रसना, नानक हर अंग रात। कानड़ा मोहल्ला पंजवां, साजना संत आओ मेरे, रहाओ आनदा गुण गाए मंगल, कसमला मिट जाए परेर, संत चरण तरो माथ है, चांदना गृह हुए अंधेर है, संत प्रसाद कमल बिकस, गोविंद भजो पेख नेर, प्रभ कृपा ते संत पाए, वार वार नानक ओ बेर। कानड़ा मोहल्ला पंजवां, चरण शरण गोपाल तेरी, मोह मान तो परम, राख लीजे काट बेरी रखाओ। बूढ़त संसार सागर, उदरे हर सिमर रतनागर, शीतला हर नाम तेरा, पूर्णो ठाकुर प्रा मेरा, दीन दर्द निवार तारन, हर कृपा निध पतत उदारन, कोड़ जन्म दुख कर पायो, सुखी नानक गुर नाम दृढ़ायो। कानड़ा मोहल्ला पंजवां, तन ओ प्रीत चरण संग लागी, कोड़ जापता सुख पाए, आए मिले पूर्ण बड़भागी रहाओ। मुए अनाथ दाह जन तेरा, अबर ओट सगली मुए त्यागी, और परम काटे प्रसिमरत, ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी। तू अथाहो अद बड़ो स्वामी, कृपा सिंध पूर्ण रतनागी, नानक जाचक हर हर नाम मांगे, मस्तक आन तरयो प्रापागी। कानड़ा मोहल्ला पंजवां, कुचल कठोर कपट कामी, ज्यो जाने त्यों तार स्वामी रखाओ। तू समरथ सरण योग, तू राखे अपनी कल तार, जाप ताप नेम सुसंजम, नाही इन विदे छुटकार, गर्त कोर अंध ते काढ़ हो, प्रभ नानक नदर निहार। कानड़ा मोहल्ला पंजवां, कार चौथा एक ओ अंकार, सदगुर प्रसाद,

अनक पांद की एक है जाली, ताकि गंठ नहीं शोर आए, फिरत फिरत नानक दास आयो, संतन ही शरण आए, काटे अज्ञान परम मोह माया, लियो कंठ लगाए, तानड़ा महला पंजवा, आनंद रंग विनोद हमारे, नामो गावन नाम त्यावन, नाम हमारे प्राण आधार है, हरहाओ नामो ज्ञान नाम इसनाना, हर नाम हमारे कार्य सवार है, हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पौजल विखम नाम हर तार है, अगम पदार्थ लाल अमोला,

यार सहज समाज समायो कौन कहे तुम ते कछ नाही तुम समरथ अथायो किरपा निधान रंग रूप रस नाम नानक लै लायो कानड़ा महला पंजवा बूढ़त प्राणी हर जब तीर बिनसे मोह परम दुख पीर अरहाओ सिमरो दिन रैन गुर के चरना जत कद पेखो तुमरी सरना संत प्रसाद हर के गुण गाया गुर पेटत नानक सुख पाया कानड़ा महला पंजवा सिमरत नाम मने सुख पाई है साध जना मिल हर जस गाया।

संतना हर संतना हर संतना की रेन कियो अर्प देन प्रभ पय है किरपेन मान वो त्याग छोड़े हो।

हठ निग्रह अतरैत बिटंगा हौ रोग व्यापे चुके न पंगा काम क्रोध अत त्रिसन जरंगा सो मुक्त नानक जिस सतगुर चंगा कानड़ा महला पंजवां कार सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद तिख बूझ गई गई मेरे साध जना पंच भागे चोर सहज सखनो हरे गुण गावती गावती गावती दर्श प्यार रखाओ जैसी करी प्रा मोस्यो ऐसी हो कैसे करो यो तुम्हारे बल बले बल बले बल गई पहले पै संत पाए त्याए त्याए प्रीत लाए प्रवतान तेरो केरो जित जंतन कर विचार अनक दास कीर्त करे तुहारी सोई मिलो जो पावत जन नानक ठाकुर रहो समाए एक तू ही तू ही तू ही कानड़ा महला पंजवां कर अठवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्यागिए गुमान मान पेखता दयाल लाल हां हां मन चर नरेन रखाओ हर संत मंत गोपाल ज्ञान ध्यान।

गोपाल नानक हरस ना गुण गाए। कानड़ा महला पंजवा वार वार अनक डारो सुख प्रे सुहाग पलक रात रखाओ। कनक मंदर पाठ सेज सखी मोहे नाहे इनस्यो तात। मुक्त लाल अनक भोग बिन नाम नानक हाथ। रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रे संग सुख बिहात।

बहुरंगी सब एकत बचन चलावै गो गुरमुख एको एक पछाता गुरमुख होए लखावै गो गुरमुख जाए मिले निज महली अनहर शब्द बजावै गो जी जंत सब सिट्यो पाई गुरमुख शोभा पावै गो बिन गुर भेटे को मैल न पावै आए जाए दुख पावै गो अनेक जन्म बिछड़े मेरे प्रीतम कर कृपा गुरु मिलावै गो सतगुर मिलत महा सुख पाया।

जप मुख उजला प्रधान नानक गुर गोविंद हर जित मिरघर पाया नाम पौड़ी तू आपे ही सिद्ध साधको।

दुख भुख सब ले जावनी। श्लोक मोहल्ला चौथा, हर घर अमृत नाम रस, हर अमृत घर उरतार, विच संगत घर प्रवर्तदा।

हर प्रसज्जन नाम हर मैं मन तन नाम शरीर सब ऐसा गुरमुख पूरिया जन नानक सुन घर तीर पौड़ी हर उत्तम घरिया नाम है हर पुरख निरंजन मौला जो जपदे हर घर दिन सरात तिन सेवे चरण नित कौला नित सार समाले सब जी जंत हर वसे निट सब जौला सो बूझे जिस आप बुझाए सी जिस सदगुर पुरख प्रसौला सब गावो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समोला सलोक महला चौथा सुत्या हर प्रवचेत मान हर सहज समा समाए जन नानक हर हर चाओ मान गुर तुठा मेले माए महला चौथा हर इकस सेती पिरहड़ी हर इको मेरे चित जन नानक एक आधार हर प्रभ एक सते गत पत पौड़ी पंचे शब्द वजे मत गुरमत वडभागी अनहद वजया आनंद मूल राम सब देखया गुर शब्दी गोविंद गजया आद जुगाद वेश घर एको मत गुरमत घर प्रभ भजया हर देव हो दान दयाल प्रभ जन राखो घर प्रभ लजया सब धन कहो गुर सदगुरु गुर सदगुरु जित मिलघर पड़दा कजया सलोक महला चौथा भगत सरोवर उछल सुबर परे वहन जिन्ना सदगुर मन्या जन नानक वड भाग लहन महला चौथा हर घर नाम असंख हर हर के गुण कथन ना जाहे हर घर अगम अगाध हर जान केत विद मिले मिलाहे हर घर जस जपत जपंत जान एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लेहो लड़लाए पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर हुए सो वर्णिए तिस रूप ना रिखा जिस बुझाए आप बुझाए दे सोई जन दिखा सत संगत सदगुर चढ़ साल है जित हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पांदा सदगुरु जित मिल हर लेखा लिखा सलोक महला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिगे सदगुर पाए हर हर नाम पवित्र है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिनी आराध्या जिन मस्तक लिखिया थुर पाए हर दरगे जन पै नाइयन जिन हर मन वस्या आए जिन नानक ते मुख उजले जिन हर सुनिया मन पाए महला चौथा हर हर नाम निधान है गुरमुख पाया जाए जिन तुर मस्तक लिखिया तिन सदगुर मिलिया आए तन मन शीतल होया सांत वसी मन आए नानक हर घर चौंदया सब दाल दे दुख ले जाए पौड़ी हों वारिया तिन को सदा सदा जिन्ना सदगुर मेरा प्यारा देखिया तिन को मिलिया मेरा सदगुरु जिन को तुर मस्तक लेखिया हर अगम ते आया गुरमती तिस रूप नहीं प्रव रेखिया गुरभजन ते आया जिन्ना

सदगुर प्रसाद ऐसो राम राय अंतरजामी, जैसे दर्पण माहे बदन परवानी रगाव, बसे कटा काट लीपना शीपे, बंधन मुक्ता जात ना दिसे, पानी माहे देख मुख जैसा

रामा राम रामे अंत न पाया। हम बारक प्रदपारे तुमरे तू बड़ पुरख पिता मेरा माया। अरहाव हर के नाम असंग अगम है अगम अगम हर राया। गुणी ज्ञानी सुरत भो कीनी एक तिल ने कीमत पाया। गोविंद गुण गोविंद सद गावे गुण गोविंद अंत न पाया। तू अमित अतोल अपरंपर स्वामी बो जपगे था न पाया। उस्तद करे तुमरी जनमाधो गुण गावे हर राया। तुम जल निध हा मीने तुमरे तेरा अंत न कतहू पाया। जन कहो कृपा करो मसूदन हर देवो नाम जपाया। मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है जन नानक गुरमुख पाया। कल्याण महला चौथा हर जन गुण गावत हसया। हर घर भगत बनी मत गुरमत तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहाओ। गुर के पाग सिमरो दिन राती मन हर घर हर बसया। हर घर हर कीर्त जग सारी घस चंदन जस कसया। हर जन हर घर हर लिवलाई सब सागत खोज पया। ज्यो किरत संजोग चल्यो नर निंदक पग नागन छोए जलया। जन के तुम घर राखे स्वामी तुम जुग जुग जन रखया। कहां पया दायत करीब खीली सब कर कर चर परया। जेते जी जन प्रव किए सब कालय मोह ग्रसया। हर जन हर हर हर प्रव राखे जन नानक सर।

श्रवण सुनिए अंग अंगे सुख प्राण रहाओ एत उत दह दिस रव्यो मेर तिन्हें समान जद कथा तद पेखी है हर पुरख पत प्रधान साध संग भ्रम पै मिटे कथे नानक ब्रह्म ज्ञान कल्याण मोहल्ला पंजवां गुरु नानक।

की वास बनल पसौरे ता चरण लेव रही है। गुरमुख जी प्राण उपजे गुरमुख शिव कर जाई है। गुरमुख नानक सच समाई है। गुरमुख निज पद पाई है। प्रभाती मुखला पहला गुर प्रसादी विद्या विचार है। पढ़ पढ़ पावे मान आपा मध्य आप प्रगासया पाया अमृत नाम करता तू मेरा जजमान।

मांगो हर गुण नानक रब तरह प्रभाती महला पहला आवत करे ना राख्या जावत क्यों राख्या जाए जिते होवा सोई पर जाने जा उस ही माए समाए तू है वाहो तेरी रजाए जो करे सोई पर होए बा अवरण करना जाए रहाओ जैसे हरड़ की माला टिंड लगत है एक सखनी होर फेर भरियत है तैसो ही यो खेल खसम का जो उसकी वड्याई सुरती के मार्ग चल के उल्टी नजर प्रगा।

मत सद पाए भगत गोविंदा, कीर्त कर्म कार निसंदा, अंतर रवतव राज रवंदा, प्रयो प्रयो प्रीत प्रेम उरतारी, दीना नाद पियो बनवारी, आनंद नाम दान व्रतकारी, तृप्त

मनमोहन आतसलार सगूड औरगाव ऊपर कूप गगन पनहारी अमृत पीवनहारा जिसकी रचना शोभित जाने गुरमुख ज्ञान विचारा पसरी किरण रस कमल बेगासे सद कर सूर समाया ताल विध्वंस मनसा मनमारी गुर प्रसाद प्रापाया आतस रंग चलू ले राती दूजा रंग न कोई नानक रसन रसाए राते रव रहया प्रवसोई पसरी किरण रस कमल बेगासे सद कर सूर समाया ताल विध्वंस मनसा मनमारी गुर प्रसाद प्रापाया आतस रंग चलू ले राती दूजा रंग न कोई नानक रसन रसाए राते रव रहया प्रवसोई।

पाई। सदा जल निर्मल मैल ना लागे, सच नाम चित लाई। सुख सीगार सतगुरु दिखाया, नाम वड्डी वड्याई। अखुट भंडार भरे कदे टोट ना आवे, सदा हर सेवो पाई। आपे करता जिसनु देवे, तिस वसे मन आई।

बनाए बहुरंगी सिद्ध उपाए प्रखेल किया कर कर वेख करे कराए सर्ब जिया नू रिजक दिया कली काल में रव्या राम काट काट पूरया प्रभ एको गुरमुख प्रगट हर हर नाम रखाओ गुप्ता नाम वरते विज कल युग काट काट हर भरपूर रहया नाम रतन तिना हिरदे प्रगटया जो गुरसरण आई पज पया इंद्री पंच पंचे वसयाने खिमा संतोख गुरमत पावे तो तन तन हर जनवड़।

जो कुछ करे तो नरक पर है। एको सब एको प्रवर्त है, सब एक स्ते उत्पत चल है। नानक गुरमुख मेल मिलाए, गुरमुख हर हर जाए रले।

उगवे सूर गुरमुख हर बोलहै सवरैन संभालै हर गाल हमरे प्रभ हम लोच लगाई हम करे प्रभु हर पाल मेरा मन साधु तूर रवाल हर हर नाम दृढ़ायो गुर मीठा गुर पग चारे हम्बाल रखाओ सागत कौ दिन रैन अंधारी मोहे फाथे माया जाल खेन पाल हर प्राबर दे ना वस्यो रिन बंदे बहु विद बाल सत संगत मेल मत बुद पाई हाँ छूटे ममता जाल हर नामा हर मीठ लगाना गुर किए शब्द निहाल हम बारक गुर अगम गुसाई गुर कर कृपा प्रतपाल बिख भौजल डुबदे काढ़ लिहो प्रभ गुरु नानक बाल गोपाल प्रभाती मोहल्ला चौथा एक खेन हर प्रभु कृपा तारी गुण गाए रसकर सीक गावत सुनत दो पै मुक्ते जिन्ना गुरमुख खेन हर पीक मेरे मन हर हर राम नाम रस टीक गुरमुख नाम शीतल जल पाया हर हर नाम पिया रस चीक रखाओ जिन हर हृदय प्रीत लगानी तिना मस्तक उजल टीक हर दिन सोभा सब जग ऊपर ज्यों विच पुड़वा सस कीक जिन हर हृदय नाम न वस्यो तिन सब कार्ज फीक जैसे सीगार करे दे मानुख नाम बिना नगटे नग कीक घड़कड़ रमैया रमत राम राय सब वरते सब में ईक जन नानक कौ हर कृपा तारी गुर भजन त्यायो करी मीक प्रभाती महला चौथा आगम दयाल कृपा प्रवतारी मुख हर हर नाम कहे पातद पावन हर नाम तिहायो तब किल बिख पाप लहे जप मन राम नाम रब रहे दीन दयाल दो पंजन गायो गुरमत नाम पदार्थ लहे रहाओ काया नगर नगर हर बस्यो मत गुरमत हर हर सहे शरीर सरोवर नाम हर प्रट्यो कर मंदिर हर प्रव लहे जो नर परम परम उदयाने ते सागत मूड मोहे ज्यों मृग नाभ बसे बास बसना प्रम प्रम्यो चार गहे तौं वट अगम अगाध बोध प्रभ मत देवो हर प्रव लहे जन नानक कौ गुरहा सिर तरयो हर राम नाम रव रहे प्रभाती मोहल्ला चौथा मन लागी प्रीत राम नाम हर हर जप्यो हर प्रभ वडफा सदगुर बचन सुखा ने ही अरे हर तारी हर प्रभ कृपफा मेरे मान भाज राम नाम हर निमुखफा हर हर दान दियो गुरपूरे हर नामा मन तन बसपा रहाओ काया नगर वस्यो कर मंदर जब सोभा गुरमुख करपफा हलत पलत जन पये सुहेले मुख उजल गुरमुख तरफा आन पौ हर हर हर लिव लागी हर उरतारे गुर निमुखफा कोड़ कोड़ के दो सब जन के।

परमेश्वर प्रधान खिन खोवे पाप कोटान मिल नानक हर भगवान प्रभाती मोहला पंजवां विपास एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन हर किया तन सब साजिया पंच तत् रच जोत निवाजिया सेजा धरत बर्तन कौ पानी निमख ना विसार हो सेव ओ सारग पानी मन सतगुर सेव होए परम गते हरक सोग ते रह निरारा तां तू पावे प्राण पते रखाओ कापड़ भोग रस अनक पुंचाए माल पिता कुटुंब सगल बनाए निजक समाहे जल थल मीत सोहर सेवो नीता नीत तां सिखाई जे कोई न होवे कोड़ अपराध एक खिन मैं तोवे दाद करे नी पछोतावे एक का बक्स फिर भौर ना बुला।

आर जेवरी जन लिए छड़ाई रहाओ जोजन राता प्रभ के रंग तिन सुख पाया प्रभ के संग जिन रस आया सोई जाने पेख पेख मन में हैरान सो सुखिया

गुण गावत मन होए आनंद, आठ पैर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कर मल जाहे, तिस गुर की हम चरणी पाहे, सुमत देव हो संत प्यारे, सिमरो नाम मोहे निस्तारे रखाओ, जिन गुर कहया मार्ग सीधा, सगल त्याग नाम हर गीदा, तिस गुर कह सदा बल जाइए, हार सिमरन जि गुर ते पाइए, बूढ़ प्राणी जिन गुरे तराया, जिस प्रसाद मोहे नी माया, हलत पलत जिन गुरे सवारिया।

पार ब्रह्म आराधी अपने सदगुरु कै बल जाय। आगम अगोचर बेअंत स्वामी ताका अंत न पाईए, लहा खाट होइए धनवंता अपना प्रभु ते आईए। आठ पैर पार ब्रह्म ते आई, सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ। पार ब्रह्म गुर पाया प्रभाती मोहल्ला पंजवा, सिमरत नाम किलभ सब नासे, सत नाम गुर दी नीरासे, प्रभ की दरगह शोभा बंते, सेव सेव सदा सोहंते। हर हर नाम जपो मेरे पाई, सगले रोग दोग सा बिनसह, अज्ञान अंधेरा मनते जाई रहाओ, जन्म मरण गुर राखे मीत, हर के नाम से लागी प्रीत, कोट जन्म के गए कलेस, जो तिस भावे सो फल होस, ते गुर कहो हो सद बल जाई, जिस प्रसाद हर नाम ते आई, ऐसा गुर पाईगे वडभागी, जिस मिलते राम लिव लागी, कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी, सगल कठा के अंतर जामी, आठ पैर अपनी लिव लाए, जन नानक प्रभु की शरण आए।

कर जान एहा मत शब्द है सार वे दुविधा माथे पवे शार करणी कीर्त गुरमत सार संत सभा गुण ज्ञान विचार मन मारे जीवित मर जान नानक नदरी नदर पछाण।

जागरण करे होमे मैल उतार सदा जागे कर अपना रख है पंच सकर कढ है मार मन मेरे गुरमुख नाम ते आए जित मार घर पाईए मन से ही कर्म कमाए रखाओ गुरमुख सह तुन उपजे दुख होमे विच हो जाए हर नामा हर मन वसे है जे हर गुण गाए गुरमती मुख सोने

कर स्नान तर चक्र बनाए अंतर की माल तब ही ना जाए। एत संजम प्रभ किन ही ना पाया भगवती मुद्रा मन मोया माया रहाओ। पाप करे पंचा के बसरे तीर्थ नाए कह सब उतरे बौर कुमावे हुए निशंक जमपुर बांध करे कालंक घूंगर बांध

मेरा प्रभ रविया सर बैठा ई रखाओ, माने हाट माने पाठ माने है पासारी, माने बासे नाना भेदी परमत है संसारी, गुर के शब्द इहो मन राता दुबदा सह सुमानी, सब हुक्म हुक्म आपे निरपो समत बिचारी, जो जन जान पदे पुरखोत्तम ताची अवगत बाणी, नामा कहे जग जी मन पाया हिरदे अलख बिडाणी, प्रभाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत न जानिया, सर्व निरंतर राम रविया राव ऐसा रूप बखानिया, गोविंद गाजे शब्द बाजे आनंद रूपी मेरो रामैया, रहाओ बावन बीखू बाने बीखे पालते सुख लागला,

अंत बार संग तेरे यह एक जात है। बिखिया भी ज्यों बिसार प्रभु कहो जसहिए तार, नानक जन कह पुकार अवसर बिहात है। जय जावंती महला नामा रे मन कौन गद होए है तेरी, ए जग में राम नाम सो तो नहीं सुनियो कान। बेखिन सु अत लुभान मत नाहिन फेरी, रहाओ मांस को जन्मलीन।

निमित्त है, प्रवृत्त माया संबंधन है। दयाल एक भगवान पुरख है, नानक सर्व जीव प्रतिपालक है। अनित वितंग अनित चितंग अनित आशा बहुविध प्रकारंग अनित हेतंग अंग बंधंग परम माया मलनंग विकारंग तिरंत जो अनेक जुषरागन न सिमरंत मलिन बुद्धियंग। हे गोविंद कर्तमया नानक पद उदाहरण साध संग में गिरंत गिर पद पातालंग जलंत दे दीप वैश्वंतर महंत अघातोयंग तुरंगंग दुखंत गृह चिंता जन्म तामरण। अनक साधरंग न सिद्ध अते नानक अस्तंभंग अस्तंभंग अस्तंभंग शब्द साध स्वजन घोर दुखियंग अनक हत्यंग जन्म दारिद्रंग महाविखयादंग मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक। जैसे पावक काष्ट पसमं क्रोत अंधकार सिमरत प्रकाशं गुण रमंत आग खंडन रिद्व संत भय पीत दूत है कर्म कर्त महानिर्मल है जन्म मरण रहंत श्रोता तो

पूर्ण पुरख भगवान है, भगत वत्सल करुणामय है, घट घट बसंत वासुदेव है, पार ब्रह्म परमेश्वर है।

गोविंद नाम जपंत मिल साध संग है, नानक से प्राणी सुख बासन है, तैना साध समूह सूर अजितं संग नाहं तान्य मरता आवदे गुण गोविंद रमण ओड गुर शब्द कर चरमण है, आरूढ़ ते अश्वरथ नग है, बुजन ते प्रामार्ग है, विचरते निर्भयं सत्र सैना तायंते गोपाल कीर्तन है, जितते विश्व संसार है, नानक वस्यं क्रोत पंच तस्कर है, मृग तृष्णा गंधर्व नगरं द्रुम छाया रच दुर्मत है, तते कुटुंब मोह मिथ्या सिमरंत नानक राम राम नाम है, नच विद्या निधान निगमं नच गुणग

सत्संग कल पंडित कंठ रमणी आराम राम माला हस ऊच प्रेम धारणी जीपन जो उत्तम श्लोक उदरणंग नयन नंदनी गुरमंत्र हीनस जो प्राणी।

ज्ञानं हम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरण दयालं सर्वत्र जिया पंच दोख विवर्जित है। भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया

नरक विश्रामं भोजोन्नी परमामण चेत हरणं त्रैलोक गम्यं जब तब शील विदारण अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समामण है।

नाना उपर्जते विख्यंत जीवं वस्यं क्रोत नृत्यं क्रोत जथा मरकट है अनक शासन ताड़ंत जम दूत है तब संगे अधवंग नर है दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक सर्ब जी रखया क्रोत ए लोभा लंपट संग सिर मोर है अनक लहरी कलोल

दर्शन है, सर्व दोख परं त्यागी, सर्व धर्म निरंतन है, लब्धेन सा संगेन नानक मस्तक लिखेण है, होयो है होवंतो हरण परण संपूर्ण है, साधु सत्यम जानो नानक प्रीत कारण, सुखेन बैन रत्न अरचनं सुंबरंगण है, रोग सोग वियोगं नानक सुख ना सुपन है, उन्हें मोहल्ला पंजवा एक ओंकार सदगुर प्रसाद आद कलम अगम।

सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचल खोजो ताके चरण कहो कद पाई है हर का सोईज तन बताए सखी प्रयोग पाई है नैन न देखे साध से नैन बेहालया करन न सुनगी नाद करन मुंद कालया रसना जपे ना नाम तेल तिल कर कटी है हर का जब विसरे गोविंद राय दिनो दिन कटी है पंकज फाते पंक महामद गुंफया अंग संग उरझाए बिसरते सुंफया है कोई ऐसा मीत ये तोरे बिखम गांठ नानक एक श्री तरनाथ ये टूटे ले साठ तावो दशा अनेक प्रेम प्रभ कारणे पंच सदावे दूत तमन बिद मारणे तीखण बाण चलाए नाम प्रत्याई है हर का मां बिखा दी तात पूर्ण गुर पाई है सदगुर की नी दात मूल ना निकुटई खावो पुंचो सब गुरमुख छुटई अमृत नाम निधान दिता तुस हर नानक सदा आराध कदे ना जाहे मर जिथे जाए भगत तो थान सुहावना सगले होए सुख हर नाम तिहावना जी करन जयकार निंदक मोए पच ताजन मन आनंद नानक नाम जप पावन पद पुनीत कतहे नहीं सेवी है झूठे रंग खुवार कहां लग खेवी है हर चंदौरी पेख ताहे सुख मानिया हर का हो बलिहारी तिन जे दरगह जानिया कीने कर्म अनेक कवार विकार कान मां दुर्गंधत वास सड़का शार तन फिर तो गर्व गुवार मरण नह जानई हर का हर चंदौरी पेख ताहे सच मानई जिसकी पूजे औध तिसे कौन रखई पैदक अन क्यों पाव कहां लो पखई एको चेत कुवार ताज तेरे आवई हर हां बिन नावे तन शार फिरता सब जावई औखद नाम अपार अमोरक पीचई मिल मिल खावे संत सगल कौ दीजई जिसे प्राप्त होए तिसे ही पावणे हर हां हों बलिहारी तिन जे हर अंग रावणे वैदा संदा संग इकट्ठा होया औख दिया ए रास वित्याप खलोया जो जो ओना कर्म तो कर्म होए पसरिया हर का दुख रो

है तो लूट ले, आराम नाम है लूट। फिर पाछे पछताओगे, प्राण जाएंगे शूट। कबीर ऐसा कोई ना जन्मे हो।

कर करे पीवे निर्मल नीर, बिन हर भगत ना मुक्त होए क्यों कह रमे कबीर, कबीर मन निर्मल भया

एक मरण ते दोए मुए, दोए मरण ते चार, चार मरण ते छह मुए, चार पुरख दोए नार। कबीर देख देख जग ढूंढया, कहूं न पाया ठौर, जिन हर का नाम न चेतेओ, कहां भुलाने और। कबीर संगत करिए साध की, अंत करे निर्वाहो, साकत संग ना कीजिए, जाते हुए बिना हो। कबीर जग में चेत्यो जान कै,

की मौज में रहो अंत अर आद। कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान, कह बे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख के कहो कह ना को पतियाए, हर जैसा तैसा उही रहो हरख गुन गाए।

कबीर दावे दज होत है निर्दावे रहे निसंक, जो जन निर्दावे रहे तो गने इंद्र सो रंक। कबीर पाल समोहा सरवर भरा पी न सके कोई नीर, भाग बड़े ते पायो तू पर पियो कबीर। कबीर प्रभाते तारे खिसे क्यों।

कबीर सतगुर सूर में बायाबान जो एक लागत ही पोए गिर परया परा करे जे शेक। कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर गई पूम बेकार बिन संगत यो मानई होए गई पाठ शार। कबीर निर्मल

फलंत ईर साधु संग प्राप्ति लिखिया होए लिलाट। मुक्त पदार्थ पाई है ठाक न अब घट काट। कबीर एक घड़ी आदि करी आदि।

का पान जो जो प्राणी खाहे तीर्थ वर्त नेम किए ते सबे रसातल जाहे नीचे लोयन कर रखो ले साजन कट माहे सबर खेलो पीसो किसी लखावो नाहे आठ जाम चौसठ करी तो

पीर जाओ तो साध पिरम की शीस काट कर गोए, खेलत खेलत हाल कर जो किश होए ता होए। कबीर जो तो साध पिरम की पाके से ती खेल, काची सरसों पेल के ना खर पई ना तेल। टूट डोले अंध गत हर चींत नही संत, तय नामा क्यों पाई है बेन भगतो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ कह करे आन की आस, ते नर दोज जाएंगे।

निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पंग गुर प्रसाद सवैये श्री मुख बाक महला पंजवा आदि पुरख करतार करण कारण सब आपे सर्ब रहो भरपूर सगल घट रहो बे आपे व्याप्त देखिए जगत जाने कौन तेरी गत सर्व की रखिया करे आपे हर पत अविनाशी अवगत आपे आपे उत्पत एक तू ही एक आन नाही तुम पत हर अंत नाही पारावार कौन है करे विचार जगत पिता है सर्व प्राण को आधार जन नानक भक्त दार तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाने हां के बाल बाल बाल बाल सद बलिहार अमृत प्रवाह सार अतुल भंडार पार परे ही ते परे अपर अपार पार अपनो भावन कर मंत्र ना दूसरो धर उपद परलो एक नेमक तो कर आन नाही समसर उजियारो निर्मार कोट प्राशित जागे नाम लीगे हर हर जन नानक भक्त दार तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार सगल पवन तारे एक ते की ए बिस्तारे पूरे ओ सर्व में आप है निरारे हर गुण नागी अंत पारे जी जंत सब थारे सगल को दाता एक के अलख मुरारे आप ही धारण तारे कुदरत है देखारे वर्ण चेन नाही मुख नाम सारे जन नानक भक्त दार तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार सर्व गुण निधान कीमत न ज्ञान ध्यान ऊचे ते ऊचो जा नीजे प्रभ तेरो थान मन तन तेरो प्राण एक सूत है जहान कम उपमा दे बड़े ते बडान जाने कौन तेरो पेओ अलख अपार देओ अकल कला है प्रभ सर्व को तान जन नानक भक्त दार तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार निरंकार आकार अशल पूर्ण अविनाशी हरखवंत अनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी जा को होए कृपाल सोजन प्रभ तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जान जे कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जिन परसयो छे जन्म मरण दो ते रहो सत सत हर सत सत सते सत पणिये दूसर आनना आवर पुरख पौरा तन सुनिए अमृत हर को नाम लयत मन सब सुख पाए जे रसन चाख्यो ते जन तृप्त अघाए जे ठाकर सो प्रसन्न पयो सर संगत ते प्यार हर गुरु नानक जिन परसयो तेन सब कुल कियो उधार सच सभा दी बाण सच सच्चे पै तरयो सच्चे तख्त निवास सच तपावस करयो सच सिरजो संसार आप अफुल न फुल्लो रतन नाम अपार कीम न पवे अमुल्लो जे कृपाल होयो गोविंद सर्व सुख तिन हु पाए हर गुरु नानक जिन परसयो ते बौड़ फिर जोन न आए कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन बिद उस्तत करिए सिद्ध साधक ते तीस कोर तिर कीम न परिये ब्रह्माद कसन काद सिख गुण अंत न पाए आगो गयो नहीं जाए पूर सर्व रहो समाए ये काटी सिलक दयाल प्रभ हे जन लगे भगते हर गुरु नानक जिन परसयो ते एत उत सदा मुगते प्रभ दाताओ दातार परयो जाच एक सरना मेरे दान संतरेन जे लग पौजल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देव दर्श मन चाओ भगत हो मन ठहरावे बलयो चिराग अंधियार में सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सगल घर पावन में
जन नानक गुर पार ब्रह्म सवैये श्री मुख बाक महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद काची दे मोहन बांधी सड़ कठोर कुचील कुग्यानी तावत प्रमत रैन नहीं पावत पार ब्रह्म की गत नहीं जानी जो बिन रूप माया बद माता विचरत विकल बडो अभमानी पर थान पर अपवाद नार निंदा यह मीठी जी माए हेतानी बलवंच शब कर त्यो पाव पेखत सुनत प्रवेंतर जामी शील धर्म दया सुच नास्त आयो शरण जी के दानी कारण करण समर्थ श्री धर रख लिहो नानक के स्वामी कीर्त करन सरन मन मोहन जो हुन पाप विदारन कहो हर तारन तरन समरत सबे बेद कुले समूह उदाहरण सो चित चेत अचेत जान स संगत परम अंधेर मोहयो कद तो मूर्त करी तसा पर सिमरन राम नाम रसना संग लो होशो काज अल्प सुख बंधन कोड़ जन्म कहां दुख पाओ सिखिया संत नाम पज नानक राम रंग आत्म स्यो रो रंचक रेत खेद तन निर्मत दुर्लभ दे सुवार तरी खान पान सुधे सुख पुंचत संकट काट बिपत हरी मात पिता भाई अर बंधप बूजन की सब सूझ परी वर्धमान हो दिन प्रतनित आपत निकट बिखम जरी रे गुण हीन दीन माया क्रिम सिमर स्वामी एक करी कर गए लो किरपाल किरपा निध नानक काट प्रम परी रे मन मूस बिला में गर्भत करतब करत महामुगना संपद दोल चोल संग चूलत माया मगन प्रमत खुगना सुध बंता साजन सुख बंधप तास्यो मुह बड़े सो खना बोयो बीज अंग मम अंकर बीत औद करत अगना मृत मजार सारमुख निरखत उंचत पुगत पूख पुखना सिमर गोपाल दयाल सत्संगत नानक जग जानत सुपना एहन गेहन नेना नीता माया मत कहां लो गारो शतरन पतरन चौर न चावर बैती जात हृदय ना बिचारो रतन असवन गज सिंघासन छिन में त्यागत नांग सिधारो सूर्न बीरन मीर न खान संग न को दृढ़ निहारो कोटन ओटन कोसना छोट करत विकार दू कर चारो मित्र ना पुत्र कलत्र साजन साख उल्टत जात बिरग की शारो दीन दयाल पुरख प्रापूरन छिन छिन सिमरो अगम अपारो श्री पदनाथ शरण नानक जान हे भगवंत कृपा करता रहो प्राण मान दान मग जो हुन हीत चीत दे ले ले पारी साजन सैन मी सुद पाई ताहू तेले रखी नरारी तामन पामन कूर कमावन एवद करत औत तन जारी कर्म तर्म संजम सुच नेमा चंचल संग सगल बिदहारी पश पंखी बिरक अस्थावर बोबद जोन प्रम्यो अदपारी खिण पचसा नामनी सिमरयो दीना नाथ प्राण पसारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कदकारी नानक संत चरण संग उदरे होर माया मगन चले सबडारी ब्रह मादक शिव छंद मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरख तारण गगन आतफुन तावत सिद्ध मानुख देव अर दानव एक तिलता को मर मन पावत प्रे प्राप्रीत प्रेम रस भक्ति हर जनता के दर्श समावत जिसे त्याग आन को जाच है मुख दंत रस सगल कह जावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत माया रंग बिरंग करत भ्रम मुख कूप गुबार परयो है एता गब आकाश ना मावत विष्टा अस्त क्रिम उदर परयो है दैद ताए महा बिखिया कौ परतन छीन अज्ञान हरयो है जो बन बीत जरा रोग रस्यो जम दूतन डन मृत मरयो है अनक जोन संकट नरक पुंचत शासन दुख गर्त गरयो है प्रेम भगत उदरे से नानक
कर कृपा संत आप करो है। गुण समूह फल सगल मनोर पूर्ण होई आस हमारी। औखद मंत्र तंत्र पर दुखवर सर्व रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध माद मसर तृष्णा बिन सजाए हर नाम उचारी। इसनान दान तपन सुज किरिया चरण कमल हृदय प्रतारी। साजन मीत सखा हर बंधप जी तान प्राण आधारी। ओढ़ गई स्वामी समर्थ है नानक दास सदा बलिहारी। आवद कट्यो ना जात प्रेम रह चरण कमल संग। दावन बंध्यो ना जात विदे मन दर्श मग। पाप कजरो ना जात अरेओ जन तूर लग। नीर न साक्ष बोर चले घर पंथ पाग। नानक रोग दोख आग मोह छिदे घर नाम खग। उदम कर लागे बो भाती विचरे अनक सात्र बो खटुआ। पसम लगा तीर्थ बो प्रमते सूखम दे बंदे बो जटुआ। बेन घर भजन सगल दो पावत जो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ। पूजा चक्कर करत सोम पाका अनक पांत हाटे कर थटुआ। सवाईगे महले पहले के एक ओंकार सदगुर प्रसाद। एक मान पुरख त्याए बरदाता संत सहार सदा बिखियात। ताज चरण ले हृदय बसावो तो परम गुरु नानक गुण गावो। गावो गुण परम गुरु सुख सागर दुर्त निवारण शब्द सरे। गावे गंभीर तीर मसागर योगी जंगम ध्यान तरे। गावे इंद्राद भगत प्रहलादक आत्मराजन जान्यो। तब कल सुजद गावो गुरु नानक राज योग जिन मान्यो। गावे जिन काद जुगत जोगेसर हर्ष पूर्ण सर्व कला। गावे सनकाद साध सिधाधक मुन जन गावे अशरशला। गावे गुण तोम अटल मंडल वै भगत पाए रस जान्यो। काब काल सुजस गावो गुरु नानक राज योग जिन मान्यो। गावे कपलाद आद जोगेसर अपरंपर अवतार वरो। गावे जम दगन परसरामेसर कर कुठार रग तेज हरे हो। उदो अक्रूर बेदर गुण गावे सर्वात्म जिन जान्यो। काब काल सुजस गावो गुरु नानक राज योग जिन मान्यो। गावे गुण वर्ण चार खड़ दर्शन ब्रह मादक सिमरंथ गुणा। गावे गुण शेष सहजे बारस आद अंतले लाग तुना। गावे गुण महान देव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जान्यो। काब कल सुजस गावो गुरु नानक अराज योग जिन मान्यो। अराज योग मान्यो बस्यो निर्वैर हृदंतर सिट सगल उदरी। नाम ले तरयो निरंतर गुण गावे सनकाद आज जिन काद जुग गए लग। तन तन गुर तन जन्म सक्यथ पलो जग। पाताल पुरी जय कार तुन तब जन कल वखाण्यो। हर नाम रसक नानक गुर राज योग तय मान्यो। सजुग तय मान्यो छल्यो बल बावन पायो। त्रेत तय मान्यो राम रघुवंश कहायो। द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो। उग्र सैन कौ राज अपहे भगते जन दियो। कल युग प्रमाण नानक गौर अंगद अमर कहायो। श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुरमायो। गुण गावे रविदास भगत जय देव त्रिलोचन। नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन। भगत बेण गुण रवे सहज आत्म रंग माने। योग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर ना जाने। सुख देओ प्रीखित गुण रवे गौतम रिख जस गायो। काब कलस जस नानक गुर नित नवतन जग छायो। गुण गावे पायाल भगत ना गाद पोयंगम। महादेव गुण रवे सदा जोगी जत जंगम। गुण गावे मुन व्यास जिन वेद व्याकरण विचार। ब्रह्मा गुण उचरे जे हुकुम सब सिट सवारी। ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण समझाण्यो। जब कल सुजस नानक गुर सहज योग जिन मान्यो। गुण गावे नवनाथ तन गुर सास समायो। मां धाता गुण रवे जेन चक्र वह कहायो। गुण गावे बलराव
ਸਬਦ ਪਾਤਾਲ ਬਸੰਤੋ ਭਰਤਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਸਦਾ ਗੁਰ ਸੰਗ ਰਹੰਤੋ ਦੂਰਬਾ ਪਰੂਰੋ ਅੰਗਰੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ ਕਾਬ ਕਾਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੜ ਕੜ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ ਸਵਾਈਏ ਮਹੱਲੇ ਦੂਜੇ ਕੇ ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਤਨ ਕਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮਰਥੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਨ ਨਾਨਕ ਮਸਤਕ ਤੁਮ ਤਰਿਓ ਜਿਨ ਹੱਥੋ ਤਾਂ ਤਰਿਓ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਸਹਿਜ ਅਮਿਓ ਉਠੋ ਛੱਜ ਸੁਰ ਨਰ ਗਾਣ ਮੁਨ ਬੋਜ ਅਗਾਜ ਮਾਰੋ ਕੰਟਕ ਕਾਲ ਗਰਜ ਤਾਪਤਲੀਓ ਬਰਜ ਪੰਚ ਪੂਤ ਏਕ ਕਰ ਰਾਖ ਲੇ ਸਮਾਜ ਜਗਜੀਤੋ ਗੁਰਦੁਆਰ ਖੇਲੇ ਸੰਤਸਾਰ ਰਾਥ ਉਨ ਮਨ ਲੇਵ ਰਾਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਉ ਕੀਰਤ ਕਲਸਹਾਰ ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ ਲੈਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ ਜਾ ਕੀ ਦਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਕਾਲ ਖਣ ਉਤਾਰ ਤੇਮਰ ਅਗਿਆਨ ਜਾਗੇ ਦਰਸ ਦੁਆਰ ਓਏ ਜੋ ਸੇਵੇ ਸਬਦ ਸਾਰ ਗਾਖੜੀ ਬਿਖਮਕਾਰ ਤੇ ਨਰ ਪਵ ਉਤਾਰ ਕੀਏ ਨਿਰਭਾਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਹਿਜ ਸਾਰ ਜਾਗੀ ਲੇ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਿਮਰੀ ਭੂਸ ਦੀਵ ਪਰਮ ਪਿਆਰ ਕਉ ਕੀਰਤ ਕਲਸਹਾਰ ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ ਲੈਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ ਤੈ ਤੋ ਦ੍ਰਿੜਿਓ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਬਿਮਲ ਜਾਸ ਬਥਾਰ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸੋ ਜਾਨ ਜੀਆਂ ਕੋ ਆਧਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਅਵਤਾਰ ਸਬਦ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰ ਰਹਿ ਜਗਤਰ ਜਲ ਪਦਮ ਵਿਚਾਰ ਕਲਪ ਤਾਰ ਰੋਗ ਬਿਦਾਰ ਸੰਸਾਰ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰ ਆਤਮਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਤੇਰੇ ਏਕ ਲਿਵਤਾਰ ਕਉ ਕੀਰਤ ਕਲਸਹਾਰ ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ ਲੈਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ ਤੈ ਤਾਂ ਹਦਰਤ ਪਾਇਓ ਮਾਨ ਸੇਵਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਾਧ ਅਜਗਰ ਜਿਨ ਕੀਆ ਉਨਮਾਨ ਹਰ ਘਰ ਦਰਸ ਸਮਾਨ ਆਤਮਾਵੰਤ ਗਿਆਨ ਜਾਣੀ ਅਕਲਗਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਾ ਕੀ ਦਿਸ਼ਟ ਅਚਲ ਠਾਣ ਬਿਮਨ ਬੁੱਧ ਸੁਥਾਨ ਪੈਰ ਸੀਲ ਸੁਨਾਹੋ ਸਖਤ ਬਿਦਾਰ ਕਉ ਕੀਰਤ ਕਲਸਹਾਰ ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ ਲੈਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ ਦ੍ਰਿਟ ਧਰਤ ਤਮ ਹਰਨ ਦੈਨ ਅਗਪਾ ਪ੍ਰਨਾਸਨ ਸਬਦ ਸੂਰ ਬਲਵੰਤ ਕਾਮ ਅਰ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਨਾਸਨ ਲੋ ਮੂਵਸ ਕਰਨ ਸਰਨ ਜਾਚਕ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣ ਆਤਮ ਰਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਕਹਿਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਢਾਲਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਲਕ ਸਤ ਲਾਗੇ ਸੋ ਪੈਤਰ ਗੁਰ ਜਗਤ ਫਿਰਨ ਸੀ ਅੰਗਰੋ ਰਾਜ ਯੋਗ ਲੈਣਾ ਕਰੇ ਸਦਾ ਆਕਲ ਲਿਵ ਰਹੇ ਕਰਨ ਸਿਉ ਇੱਛਾ ਚਾਰ ਹੈ ਦ੍ਰਮ ਸਪੂਰ ਜਿਉ ਨਿਵੇ ਖਵੇ ਕਸ ਬਿਮਨ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਏ ਤਤ ਜਾਣਿਓ ਸਰਬਗਤ ਅਲਖ ਬਿੜਾਣੀ ਸਹਿਜ ਪਏ ਸੰਚਿਓ ਕਿਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਬਾਣੀ ਗੁਰਗਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੇ ਪਾਇਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਰਾਜ ਲਇਓ ਹਰ ਪਰਸਿਓ ਕਲ ਸੁਮੁਲਵੈ ਜਨ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਪਇਓ ਮਨ ਵਿਸਾਸ ਪਾਇਓ ਗੈਰ ਗੋ ਹਦਰਥ ਦੀਓ ਗਰਲ ਨਾਲ ਤਨ ਨੱਠਿਓ ਅਮਿਓ ਅੰਤਰਗਤ ਪੀਓ ਰਿਧ ਵਿਗਾਸ ਜਾਗਿਓ ਅਲਖ ਕਲ ਤਰੀ ਜੁਗੰਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਰਵਿਓ ਸਾਮਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਉਦਾਰੋ ਚਿੱਤ ਦਾਰਦ ਹਰਨ ਪੇਖਨ ਤੇ ਕਮਲ ਤ੍ਰਸਨ ਸਦ ਰੰਗ ਸਹਿਜ ਕਲ ਉਚਰੈ ਜਾ ਜੰਪੋ ਲੈਣੇ ਰਸਨ ਨਾਮ ਅਵਖਦ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਅਰ ਨਾਮ ਸਮਾਧ ਸੁਖ ਸਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੋਹ ਹੈ ਰੰਗ ਰਤੋ ਨਾਮ ਸਿਉ ਕਲ ਨਾਮ ਸੁਰ ਨਰੇ ਬੋਹ ਹੈ ਨਾਮ ਪਰਜਨ ਪਾਇਓ ਸਭ ਪ੍ਰਟਿਓ ਰਵ ਲੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਗੁਰੂ ਕੈ ਆਸੜ ਮੱਜਨ ਹੋਏ ਸਚ ਤੀਰਥ ਸਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਰ ਭੋਜਨ ਭਾਓ ਸਚ ਸਦਾ ਸਚ ਪਾਖੰਤ ਸੋਹ ਹੈ ਸਚ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਚ ਨਾਮ ਸੰਗਤੀ ਬੋਹ ਹੈ ਜਿਸ ਸਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਸਚ ਕਬਜਨ ਕਲ ਵਖਾਣ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਗੁਰੂ ਕੈ ਸਚ ਜਨਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਅਮੇਦ ਰਿਟ ਸੁਭ ਕਰੇ ਹਰੇ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੇ ਸਭੇ ਬਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰ ਖੋਵੈ ਗੁਰ ਨਾਮ ਨਦਰੀ ਆਓ ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਖ ਤੋਵੈ
ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹੇ ਨਿਸ ਸਹੇ ਸੁਭਾਏ।

पास साध संगत हो तको तेरे हुम पवे निशान तो करो साहिब की सेवा जब गुर देखे शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो फुरमावे सो कहो गुर अमरदास कारण करण जिव तू रखे तिव रहो पिखे के गुर ज्ञान अर ध्यान तत स्यों तत मिलावे साचे सच जानिए एक चित्त है लिवलावे काम क्रोध वस करे

अपर परे सदगुर मत गूढ़ बिमल सत्संगत आत्म रंग चिलूल पया जाग्या मन कवल सहज प्रकाशया अपय निरंजन करे लहा सदगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया इस प्रसाद पंच करे कब काल ठगर हर दास तने गुर रामदास सार अपर परे आन पो उन्मान अगले लागी पारस फेटिया सहज करे सदगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए पंडार परे मिट्या जिन मात मरण पो भागा चित लागा संतोख सरे कब काल ठकर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे अपार परे पायो अपार निध अंतर तारयो दो पंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारयो सदा चाहे हर पाए प्रेम रसया पे जाने सदगुर कै प्रसाद सहज से तीरंग मान नानक प्रसाद अंगद सुमत गुर अमर अमर वरतायो गुर रामदास कल उच्चरै ते अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बस अमे रस रसन प्रकाश मिलत सा उपजै

सदगुर प्रमाण बिद न सिरयो जग जस दूर बजायो। गुरु रामदास कल उचरै तै अपाए अमर पद पायो। जग जितौ सदगुर प्रमाण मन एक तिहायो। तन तन सदगुर अमरदास जिन नाम दिरड़ायो। नाम रिद नाम निधान रिद सिता की दासी। तै सरोवर मिलयो पुरख भेट्यो अविनासी। आदले भगत जित लग तरे।

सदगुर शब्द अथाहो अमे तारा रस गुट मत माता संतोख पिता सर सहज समायो आजो नी संभव्यो जगत गुर भजन तरायो अवगत अगोचर अपरपार मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कल उचर तै जगत उदाहरण पायो जगत उदाहरण नव निधान भगते पौतारण अमृत बूंद हर नाम बिस्की बिहे निवारण सहज तरोवर फल्यो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड़ भागे ते मुक्ते भय सतगुर शब्द

पै काटे सो पाप तिन नरों के गुर रामदास जिन पायो छत्र सिंहासन पृथ्वी गुर अर्जुन कौ दे आयो। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंग गुर प्रसाद सलोक वारा ते वधीक महला पहला उतंगी पै ओरी गहरी गंभीरी ससर सुइया किव करी निम्न न जाए थनी गच जे लगा गिड़बड़ी सगिए तौल हरी चे पीटन दे डिठ मैं मुंद न गर्भ थनी सुन मुंदे हरनाकिए गूड़ा वैण पार पहला वत स्ञान कै ताकी तेवा पार दोही दिते दुर्जना मित्रा को जयकार जित दोही सज्जन मिलन लो मुंदे विचार तन मन दी जय सज्जना ऐसा हसन सार तेसो न्यो ना कीचई जे दिसे चलन हार नानक जिन्नी इव कर बुझ्य तिना बिटो कुर्बान जे तू तारू पान ताहू पुछ तिड़न कल ताहू खरे सुजान वन्या एनी कपरी झाड़ झखड़ ओ

राम तुरे दल मेलव अंतर बल अधकार बंतर की सेना सेवी है मन तन जोज अपार। सीता लह गया देसरो लक्ष्मण मुगो सराप नानक करता करनहार कर वेखे थाप थाप। मन में चूरे राम चंद सीता लक्ष्मण जोग हनुमंतर आराध्या आया कर संजोग। उला दैत न समझई इन पग की ये काम नानक वे

ना पदार्थ पाया अतुट परे भंडार हर गुरबाणी उच्चर है अंत न पारावार नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़िया दसवें आकाश इथे ऊंग ना पुख है हर अमृत नाम सुखवास नानक दुख सुख व्याप्त नहीं जिथे आत्म राम प्रगास काम क्रोध का चोलड़ा सब गलिया ए पाए एक उपजे एक बिन सजावे हुक्मे आवे जाए जमन मरण न चुकई रंग लगा दूजे पाए बंधन बंद पवाईयन करना कछु न जाए जिनको कृपा तारियन तिना सतगुर मिलिया आए सतगुर मिले उल्टी पई मर जीव्या सहज सुपाए नानक भगती रत्या हर हर नाम सुमाए मानमुख चंचल मत है अंतर बहुत चतराई कीता करत्या बिरथा गया एक तिल साए न पाई पुन दान जो बीज दे सब धर्म राय कह जाई बिन सतगुरु जम काल न छोड़ई दूजे पाए खुवाई जो मन जानदा नदर न आवई जर पहुंचे मर जाई पुत कलत मोहित गए अंत बेली को न सखाई सतगुर सेवे सो सुख पाए नव से मन आई नांग से वड्डे वडभागी जे गुरमुख नाम समाई मनमुख नाम ना चेतनी बिन नावे दुख रोए आत्मा राम ना पूजनी दूजे क्यों सुख होए होमे अंतर मैल गए शब्द न काढे धोए नानक बिन नावे मैलिया मोए जन्म पदार्थ खोए मनमुख बोले अंधले जिसमें अग्नि का वास बाणी सुरत ना बुझनी शब्द ना करे प्रगास ओ ना अपनी अंदर शुद्ध नहीं गुर भजन न करे विश्वास ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है नित हर लिवसदा विगास हर ज्ञानिया की रखदा हम सब बलिगारी तास गुरमुख जो हर सेम दे जन नानकता का दास माया पुहंगम सर्प है या केरिया बिखमाए देखा मारण हर नाम गए गुर गारड़ शब्द मुख पाए जिनको पूर्व लिखया तिन सतगुर मिलया आए मिले सतगुर निर्मल होया बेखो में गया बिलाए गुरमुखां के मुख उजले हर दरगे सोभा पाए जन नानक सदा कुर्बान तेन जो चाले सतगुर पाए सतगुर पुरख निर्वैर है नित हिरदे घर लिव लाए निर्वैरे नाल वैर रचाएद अपने कर लू की लाए अंतर क्रोध अंकार है अन दिन जले सदा दुख पाए कूड़ बोल बोल नित पौक दे बिख खादे दूजे पाए बिख माया कारण परम दे फिर घर घर पत कवाए बेसवा केरे पूत ज्यो पिता नाम तुझ जाए हर घर नाम ना चेतनी करते आप खुवाए हर गुरम कृपा तारियन जन विछड़े आप मिलाए जन नानक तस बलिहारण जो सतगुरु लागे पाए नाम लगे से उबरे बिन नावे जम पुर जावे नानक बिन नावे सुख नहीं आए गए पछतावे चिंता ताप तरह गए तामन पया आनंद गुर प्रसादी बुझिए सातन सुती नचिंद जिनको पूर्व लिखया तिना पेटिया गुर गोविंद नानक सहजे मिल रहे हर पाया परमानंद तद गुर सेवन अपना गुर सबदी विचार सतगुर का पाणा मन लैन हर नाम रखे उरतार एथे उथे मनियन हर नाम लगे व्यापार गुरमुख शब्द संजाप दे इत साचे दरबार सच्चा सौदा खर्च सच अंतर प्रेम प्यार जम काल नेड़ ना आवई आ बख्शे करतार नानक नाम रते चेतनवंत हैन निरतन होर संसार जन की टेक हर नाम हर बिन नावे ठवर न ठाओ गुरमती नाओ मन मसे सहजे सह समाओ वडभागी नाम त्याया ऐस लागा पाओ जन नानक मंगे तूड़ तेन तो सद कुरबाने जाओ लग चौरासी मेदनी तिसना जलती करे पुकार यो मोह माया सा पसरिया नाल चले न अंती वार बिन घर सांत न आवई किस आगे करी पुकार
ਵਡਭਾਗੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਬੂਝਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸਨਾ ਅਗਨ ਸਭ ਬੁਝ ਗਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਉਰ ਧਾਰ ਅਸੀਂ ਖਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਨ ਦੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਹੋ ਪਾਪੀ ਵੱਡ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹਰ ਜੀਓ ਲੇਖੇ ਵਾਰ ਨ ਆਵਈ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ ਗੁਰ ਤੁੱਠੇ ਗਰਪੜਾ ਮੇਲਿਆ ਸਭ ਕਿਲਵਖ ਕੱਟ ਵਿਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜੈਕਾਰ ਵਿਛੜ ਵਿਛੜ ਜੋ ਮਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਏ ਪਾਏ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹਿਚਲ ਭਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਲਭਨ ਨਾਨਕ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਕਾ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਲਹਨ ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਤਿਗ ਜੀਵਨ ਤਿਗ ਵਾਸ ਜਿਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਤੋ ਮਾਨਾ ਵਸਿਓ ਗੁਣ ਤਾਸ ਤਿਉ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭੇਦਿਓ ਤਿਉ ਹੋਵੇ ਕਰਵਾਸ ਮਨਮੁਖੀਆ ਦੋਹਾ ਗਣੀ ਆਵਣ ਜਾਣ ਮੁਈ ਆਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸੁਹਾਗ ਹੈ ਮਸਤਕ ਮਣੀ ਲਿਖਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਉਰ ਤਾਰਿਆ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਉ ਸਦ ਬਲਿਗਾਰੀ ਤਾਸ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਸਿੱਜੈ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ ਏ ਕਰੇ ਬੋ ਕਰਮ ਵਿਗੁੱਤੇ ਪਾਏ ਦੂਜੇ ਪਰਜ ਵਗੋਈ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਉ ਨਾ ਪਾਈਏ ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੈ ਕੋਈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਉ ਆਤਵੜ ਉੱਚਾ ਉੱਚੀ ਹੂਈ ਉੱਚਾ ਹੋਈ ਅੱਪੜ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕਈ ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੈ ਕੋਈ ਮੁਖ ਸੰਜਮ ਖੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵਈ ਤਰ ਪੇਖ ਪਵੇ ਸਭ ਕੋਈ ਗੁਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਜਾਏ ਚੜੈ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅੰਤਰ ਆਏ ਵਸੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਮਨ ਮਾਨੀਏ ਸਾਚੇ ਸਾਚੀ ਸੋਏ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੁਖ ਸਾਗਰ ਹੈ ਬਿਗਦ ਉੱਤਰ ਤਰਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਪਚਮੋਏ ਹਉਮੈ ਕਰਤ ਵਿਹਾਏ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ ਹੈ

जगत्यो पाए हर रंग किया तिस विटों कुर्बान आप छोड़े ता सौ मिले सच्चा यो विचार होमे फिका बोलना बुझ न सका कार वाण प्रेण तिर पवन तुझे ते आएगा अन दिन सदा विहान बिन सतगुर के ने ना पाया कर कर थके विचार नदर करे जे अपनी ताँ आप

जे अन दिन रहे लिवलाए, जिन्ना प्री प्यार बिन दर्शन क्यों तृप्ती है, नानक मिले सो पाए, गुरमुख एओ मन रहसी है, जिन्ना प्री प्यार क्यों जीवन पिर बहारे, जा सो देखने अपना नानक थीवन पी हरे, जिन्ना गुरमुख अंदर ने हो तै प्रीतम सच्चे लाया, राती अत डे हो नानक प्रेम समाया, गुरमुख सच्ची आस की जिद प्रीतम सच्चा पाई है, आन देना रह आनंद नानक सहज समाई है।

आस मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कह पिछे पछताए। कागद कलम ना लिखन हार, मन्ने का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की सुध। मन्ने मोहे चोटा ना खाए, मन्ने जम कै साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने मार्ग ठाग ना पाए, मन्ने पास्यों प्रगट जाए। मन्ने मगन चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए।

असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख है सिर पार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलन बाण वखरा सिर संजोग वखाण जिन एह लिखे।

उठ जाहे। एते कीते होर करे हे ताख न सकै के ही के, जेवड़ पावै तेवड़ होए, नानक जाने साचा सोए, जे को आखै बोल विगाड़, तां लिखिए सिरगा वारांगा वार। सो दर केहा सो कर केहा, जित पै सर्ब समाले, वाजे नादा नेका संखा, केते वावन हारे, केते राग परि सो कहियन, केते गावन हारे, गावै तुहनो पौन पानी बैसंतर, गावै राजा धर्म दुआरे, गाव है चित गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे, गाव है ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे, गाव है इंद इंद आसन बैठे देवत्या दर नाले, गाव है सिर समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी, गाव है वीर करारे, गावन पंडित पन्न रखी सर जो युग वेदा नाले, गाव है मोहनिया मन मोहन सुरगा मश पयाले, गावन रत्नो पाए तेरे अठसल तीर्थ नाले, गाव है जोत महाबल सूरा, गाव है खानी चारे, गाव है खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे, सही तुदनो गाव है जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले, होर केते गावन से मैं चितना यावन, नानक क्या विचारे, सोई सोई सदासा साहेब साचा साची नाई, है पी होसी जाय न जासी रचना जिन रचाई, रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी, माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना, जिव तिस दी वडियाई जो तिस पावै सोई करसी, हुक्म ना करना जाई सो पात साहो सहा पात साहेब, नानक रह नरजाई, मुंदा संतोख सरन पर झोली, ध्यान की करै बिभूत, खिंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत, आदेश उत सह आदेश आदा नीला नादा नाहत, जुजगु एको वेश पोत गया दया भंडारण, कड़कड़ वाजै नाद, आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिदवरा साध, संजोग विजोग दो कार चलावै लेखे आवै भाग, आदेश उत सह आदेश आदा नीला नादा नाहत, जुजगु एको वेश एका माई जुगत व्याई, तिन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी,

गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानो लिख लिख धर्म विचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्र आसन बैठे देवत्यां दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़ रखीसर जो जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुर्ग मश पयाले गावन तुदनो रतनो पाए तेरे अठसठ तीर्थ नाले गावन तुदनो जोत महाबलसूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सही तुदनो गावन जोत पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चितना आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई हैपी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिस दी वड्याई जो तिस पावै सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पात साहो सहा पत साहेब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखै सब कोए केवड़ वड्डा डीठा होए कीमत पाए ना।

तेरी अनक तेरी अनक करे हर पूजा जी, तब तापै जपै बेअंता, तेरे अनेक पढ़े बो सिमरत शास्त्र जी। कर किरिया खड़ कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता, तू मात पुरख अपरंपर करता जी, तू जेवड़े अवर ना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निश्चल करता सोई, तू द्यापे पावै सोई वरतै जी, तू आपे करै सो होई, तू द्यापे सृष्ट सब उपाई जी, तू द्यापे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई, आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैंडा साई, जो तो पावै सोई थीसी, जो तू देह सोई हाँ पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करह तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुद बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेख

आओ जप तप संजम धर्म ना कुमाया सेवा साधना जान्या हर राया कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की रखो शर्मा सोहेला राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर की

बिन गुण कामना आवई टह टेरी तनखे हे, मेरे मन लै लाहा कर जाहे। गुरमुख नाम सलाही है हमें निवरी पाहे रहाओ। सुन सुन गंडन गंडी है लिख पढ़ बुझै पार, तृष्णा अहनस अगली हमें रोग बेकार। ओह वे प्रवाहो अतोलवा गुरमत कीमत सार, लक्ष्य आण पजे करी लक्ष्यों प्रीत मिलाप। बिन संगत साधना त्रापिया बिन नावै दुख संताप। हर जप जी अरे छुट्टी है गुरमुख जी न आप, तन मन गुर पै वेचिया मन दी असर नाल। त्रिपवन खोज टंडोलिया गुरमुख खोज निहाल, सतगुर मेल मिलाया नानक सो प्रभ नाल। श्री राग महला पहला, मरण की चिंता नहीं जीवन की नहीं आस, तू सर्व जिया प्रतपाल ही लेखे सास गिरास।

मन मानक निर्मोल है, राम नाम पत पाए, मिल सत संगत हर पाई है, गुरमुख हर लिवलाए, आप गया सुख पाया, मिल सलल सलल समाए, जिन हर हर नाम ना चेते हो सो अवगुणे आवै जाए, जिस सतगुर पुरख ना भेटे हो सो पौजल पचै पचाए, एहो मानक जियो निर्मोल है, इउ कौडी बदलै जाए, जिन्ना सतगुर रस मिलै से पूरे पुरख सुजान, गुर मिल पौजल लंगी है, दरगह पत प्रवान, नानक ते मुख उजले तुन उपजै शब्द निशान, श्री राग महला पहला, वणज करो वणजारियो वखर लेहो समाल, तैसी वस्त विसाही है जैसी निभ नाल, अगे साहो सुजान है लैसी वस्त समाल, पाई रे राम कहो चितलाए, हर जस वखर लै चलो सहो देखे पति आए, रहाओ जिन्ना रास ना सच है क्यों तिन्ना सुख होए, खोटे वणज वणजे है मन तन खोटा होए, फाही फाथे मिर्ग ज्यो दुख कणो नितरोए, खोटे पोते ना पवै तिन हर गुर दर्श ना होए, खोटे जात ना पात है खोट ना सी जिस कोए, खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए, नानक मन समझ आई है गुर कै शब्द सलाह, राम नाम रंग रतिया पारना परम तिनाह, हर जप लाह अगला निरपव हर मन माह, श्री राग महला पहला कर दूजा, तन जोबन अर फुलड़ा नाठी अड़े दिन चार, पबन केरे पत ज्यो टल टुल जुम्मन हार, रंग मान लै प्यारिया जा जोबन नौ हुला, दिन थोड़े थके पया पुराना चोला, रहाओ सज्जन मेरे रंगले।

ऐसा सतगुर लोड लहो, जिद्दू पाई है सच सोए, असर संगार है सुख वसै, ज्योतिष पावै सो होए। जिहा सतगुर कर जानिया तेहो जिहा सुख होए, एहो सहसा मूले नाही भाव लाए जन कोए। नानक एक जो दोई मूर्ति शब्द में लावा होए। श्री राग महला तीजा। अमृत छोड़ बिख्या लोभाने, सेवा करे विडाणी, अपना धर्म गवावै बूझै नाही, अनजन दुख विहानी। मन मुखे अंध न चेतही, डूमोए बिन पानी, मन रे सदा पजो हर सरनाई, गुर का शब्द अंतर वसै ता हर विसर ना जाई। रहाओ एहो शरीर माया का पुतला, विच मैं दुष्टि पाई, आवन जाना जमन मरना मन मुख पत गवाई। सतगुर सेव सदा सुख पाया, ज्योति ज्योत मिलाई, सतगुर की सेवा यत सुखाली, जो इच्छा है सो फल पाए। जप जत सत तप पवित शरीरा, हर हर मन वसाए, सदा आनंद रह दिन राती, मिल प्रीतम सुख पाए। जो सतगुर की शरणागति, हों तन कै बल जाओ, दर सच्चा।

पूरा पाग सतगुर मिलै फिर पाया सच समाए से सहिया सोहागनी जिनको नजर करे खसम पछाणै अपना तन मन आगै दे घर वार पाया अपना हो मैं दूर करे नानक सो बावंतियां सोहागनी अनदिन भगत करे श्री राग महला तीजा एक पिर रावै अपना हो कह दर पूछो जाए सतगुर सेवी भाव कर मैं पर देह मिलाए सब पाए आपे वेखै किस नेड़े किस दूर जिन पिर संगे जानिया पिर रावे सदा हदूर मुंदे तू चल गुर कै पाए आंदन रावे पिर अपना सहजे सच समाए रहाओ शब्द रतिया सोहागनी सच्चा शब्द सिंगार हर वार पायन घर अपना गुर कै हित प्यार से सुहावी हर रंग रवै भगत भरे भंडार सो प्रभु प्रीतम मन वसै जे सब सह दे आधार पिर सालाहन अपना तिन कै हो सद बलिहारे जाओ मन तन अर्पी सिर दई तिन कै लागा पाए जिन्नी एक पछाणिया दूजा पाव चुकाए गुरमुख नाम पछाणिया नानक सच समाए श्री राग महला तीजा हर जी सच्चा सच तू सब किस तेरे चीरे लख चौरासी तरस दे फिरे बिन गुर भेटे पीरे हर जी ओ बख्से बख्स लए सुख सदा शरीरे गुर प्रसादी सेव करी सच गहर गंभीर है मन मेरे नाम रते सुख होए गुरमति नाम सलाही है दूजा अवर ना कोए रहाओ धर्म राय नो हुक्म है बह सच्चा धर्म विचार दूजे पाए दुष्ट आत्मा ओह तेरी सरकार अध्यात्मी हर गुण तास मन जप है एक मुरार तिनकी सेवा धर्म राय करे धन सवारन हार मन के बेकार मने तजै मन चूकै मोह अभमान आत्म राम पछाणिया सहजे नाम समान बिन सतगुर मुक्त ना पाईऐ मन मुख फिरै दीवान शब्द ना चीनै कथनी बदनी करे बिख्या माहे समान सब कुछ आपे आप है दूजा अवर ना कोए ज्यों बुलाए त्यों बोलीऐ जाय आप बुलाए सोए गुरमुख बाणी ब्रह्म है शब्द में लावा होए नानक नाम समाल तू जित सेवै सुख होए श्री राग महला तीजा जग हौ मैं मैल दुख पाया मल लागी दूजे पाए मल हौ मैं धोती किवै न उतरै जे सौ तीर्थ नाए बहुविध कर्म कमावंदे दूनी मल लागी आए पढ़िया मैल न उतरै पुछो ज्ञानिया जाए मन मेरे गुर शरण आवै ता निर्मल होए मन मुख हर हर कर थके मैल न सकी धोए रहाओ मन मैले भगत न होवई नाम ना पाया जाए मन मुख मैले मैले मुए जासन पत गवाए गुर प्रसादी मन वसै मलहों मैं जाए समाए ज्यों अंधेरा दी

कुदम करे पसपंखिया दिसै नाही काल ओतै साथ मनुख है फाथा माया जाल। मुक्ते से ही पाली है जे सच्चा नाम संभाल जो कर छड़ गवावना सो लगा मन माहे जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता नाहे फाथे से ही निकले जे गुर की पैरी पाहे कोई रख ना सके दूजा को ना दिखाए चारे कुंडा पाल के आए पया सरनाए नानक सच्चे पात साहे डुबदा लिया कढ़ाए श्री राग महला पंजवा। घड़ी मुहत का पाहुना काय सवार नहार माया काम व्यापिया समझे नाही गावार उठ चलिया पछताया परिया वस जंदार अंधे तू बैठा कंदी पाहे जे होवी पूर्व लिखिया ता गुर का बचन कमाहे रहाओ। हरी नाही नह डडरी पक्की वडन हार लै लै दात पहुतिया लावे कर तैयार जां होवा हुक्म किरसान दा ता लुण मिणिया खेतार पहला फैर धंद गया दूजे पर सोया तीजे चाख चखाया चौथे पोर पया कदी चेत ना आयो जिन जियो पिंड दिया साध संगत को वारिया जियो किया कुर्बान जिस ते सोजी मन पई मिले।

जिन मन वसिया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान, तिन की शोभा निर्मली प्रगट पई जहान। जिनी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान। श्री राग महला पंजवा, मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वसिया मन आए, अंतर जोत प्रगासिया एक सो लिवलाए। मिल साधु मुखी उजला पूर्व लिखिया पाए, गुण गोविंद नित गावणे निर्मल साचै नाए। मेरे मन गुर शब्दी सुखोए, गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए ना कोए। रहाओ मन किया इच्छा पूरिया, पाया नाम निधान, अंतर जम इसदा संग करना हर पिछान। गुर प्रसादी मुखी उजला जप नाम दान इसनान, काम क्रोध लोभ बिनसया तजया सब मान। पाया लाहा लाभ नाम पूर्ण होए काम, कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम। आवन जाना रह गया आप हुआ मेहरबान, सच महल कर पाया गुर का शब्द पहचान। भगत जना को राखदा अपनी कृपा तार, हालत पलत मुखी उजले साचे के गुणसार। आठ पहर गुणसार दे रते रंग अपार, पार ब्रह्म सुख सागर नानक सद बलिहार। श्री राग महला पंजवा, पूरा सतगुर जे मिले पाइये शब्द निधान, कर कृपा प्रभ अपनी जपिए अमृत नाम। जन मरण दो काटिए।

माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसै कोए रहाओ। दाना दाता सीलवंत निर्मल रूपया पार, सखा सहाय अत वड्डा ऊंचा वड्डाया पार। बालक बिरद ना जानिए निचल तिस दरबार, जो मंगिए सोई पाइए नेदारा आधार। जिस पेखत किल विखे हरै मन तन होवै सांत, एक मन एक ते आइए मन की लहे परांत। गुण निदान नव तन सदा पूर्ण जा की दात, सदा सदा आराधी।

कर संगत नित साध की गुर चरणी चित लाए रहाओ। नाम निधान त्याई है मस्तक होवै पाग, कार्य सब सवारी है गुर की चरणी लाग। हौं मैं रोग भ्रम कटी है ना आवै ना जाग, कर संगत तू साध की अड़ सड़ तीर्थ नाओ। जियो प्राण मन तन हरे साचा एहो सवाओ, ऐथे मिले वडियाईयां दरगे पावे थाओ। करे कराए आप प्रभ सब किछ तिसही हाथ, मारा पे जीवालदा अंतर बाहर साथ। नानक प्रभ सरनागति सर्ब कटां के नाथ। श्री राग महला पंजवा, शरण पए प्रभ अपने गुरु होवा कृपाल। सतगुर कै उपदेसे है बिनसे सर्ब जंजाल, अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल। मन मेरे सतगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी एक

सर्व को आधार। गुर के चरण मन मैं त्याए, छोड़ सगल सियाण पा सास शब्द लिव लाए रहाओ। दुख कलेस ना पौ वे आपै, गुरमंत्र हृदय होए। कोट जतना कर रहे गुरबिन तरियो ना कोए। देख दर्शन मन साधारै, पाप सगले जाहे। हाँ तिल कै बलिहारणै, जे गुर की पैरी पाहे। साध संगत मन वसै, साच हर का नाओ। सेवट पागी नानका, जिन्ना मन एहो पाओ। श्री राग महला पंजवां। संच हर तन पूज सतगुर, छोड़ सगल विकार। जिंतु साज सुवारिया, हर सिमर होए उदार। जप मन नाम एक अपार, प्राण मंतन जिने दिया। हृदय का आधार रहाओ। काम क्रोध अहंकार माते, व्यापिया संसार। पव संत सरणी, लाग चरणी, मिटै दुख अंधार। सत संतोख दया कमावै, एहे करनी सार। आप छोड़ सब होए रेणा, जिस दे प्रभ निरंकार। जो दिसै सो सगल तू है, पसरिया पासार। कहो नानक गुर परम काटिया, सगल ब्रह्म विचार। श्री राग महला पंजवां। दोकृत सुकृत मंदे, संसार सगलाना। दोहू ते रहत भगत, है कोई विरला जाना। ठाकुर सर्वे समाना, क्या कहो सुनो स्वामी। तू वड पुरख सुजाना रहाओ। मान अभमान मंदे, सो सेवक नाही। तत्सम दर्शी संतो, कोई कोट मंदा ही। कहन कहावन एहो कीर्त करला, कथन कहन ते मुक्ता। गुरमुख कोई विरला, गत अवगत कश नजर ना आया। संतन की रेण नानक दान पाया। श्री राग महला पंजवां, कर सतवां। तेरा

श्री राग महला पहला कर पहला अष्टपदियां एक ओवंकार सतगुर प्रसाद आख आख मन वावना ज्यों ज्यों जापै वाए जिसनों वाए सुनाई है सो केवड़ कित थाए आखण वाले जेतड़े सब

तेरा हुक्म ना जापी के तड़ा लिख ना जाने कोए जे सौ सायर मेली है तिल ना पुजावै रोए कीमत कने ना पाईया सब सुन सुन आखे सोए पीर पै कामर सालक साधक सोंदे और शहीद शेख मसायक काजी मुल्ला दर दर वे सरसीद बरकत तिनको अगली पर्दे रहन दरूद पुछ ना साजे पुछ ना टाहे पुछ ना दे वैले अपनी कुदरत।

गणत गण आवने आईया सुभा वे स्वीकार पाखंड प्रेम ना पाई है खोटा पाज खुवार हर जियो इउं प्रलावे नार तुद पावन सोहागणी अपनी कृपा लह सवार रहाओ गुरसबदी सिंगारिया तन मन पिर कै पास दोए कर जोड़ खड़ी तक सच कह अरदास लाल रती सच पै बस।

कथनी झूठी जग पवै रहनी शब्द सोसार केते पंडित जोत की बेदा करै विचार वाद विरोध सलाहने वादे आवन जान बिन गुर कर्म ना छुटसी कह सुने आख बखान सब गुणवंती आखी है मैं गुण नाही कोए हर वर नार सुहावनी मैं भावे प्रभ सोए नानक शब्द मिलावड़ा नावे छोड़ा होए श्री राग महला पहला जप तप संजम साधी है तीर्थ की चैवास पुन दान चंगियाईया बिनसा चे क्या तास जिहा राधे तिहा लुणै बिन गुण जन्म विनाश मुंदे गुण दा सिस होए अवगण त्याग समाई है गुरमत पूरा सोए रहाओ विण राशी वा पारिया तके कुंडा चार मूल ना बूझै अपना वस्त्र ही कर बार विण वखर दुख अगला कूड़ मुठी कूड़ यार लाहा अहन सनौतना परखे रतन विचार वस्त लहै कर अपने चलै कारज सार वणजा रिया स्यो वणज कर गुरमुख ब्रह्म विचार संता संगत पाई है जे मेले मिलन हार मिलिया होए ना विछड़ै जिस अंतर ज्योत अपार सच्चा आसन सच रहै सच्चा प्रेम प्यार जिनी आप पछाणिया घर मैं महल सो थाए सच्चे से तीरतिया सचो पल्ले पाए त्रिपवन सो प्रभ जानिया साचो सचै नाए सातन खरी सुहावनी जिन पर जाता संग महली महल बुलाई है सोपर रावे रंग सच सुहागण सा भली पिर मोही गुण संग पूली पूली थल चढ़ा थल चढ़ डूंगर जाओ बन मैं पूली जे फिरा बिन गुर बूझ ना पाओ नामो पूली जे फिरा फिर आवो जाओ पुछो जाए पदाऊआ चले चाकर होए राजन जाने अपना दाकर ठाक ना होए नानके को रव रहे आ दूजा अवर ना कोए श्री राग महला पहला गुरते निर्मल जानिए निर्मल देह शरीर निर्मल साचो।

होए। पाई रे भगतहीन काहे जग आया, पूरे गुर की सेवना कीनी, वृथा जन्म गवाया रहाओ। आपे हर जग जीवन दाता, आपे बस मिलाए, जी जनते क्या विचारे, क्या को वक सुनाए। गुरमुख आपे दे वड़ियाई, आपे सेव कराए, देख कुटांब मोहे लोभाना, चल दिया नाल ना जाई। सतगुर सेव गुण निधान पाया, तिस दी कीम ना पाई, प्रभ सखा हर जियो मेरा, अंते होए सखाई। पेई अड़ै जग जीवन दाता, मनमुख पत गवाई, बिन सतगुर को मग न जाने, अंधे ठौर ना काई। हर सुख दाता मनी वसिया, अंत गया पछताई। पेई अड़ै जग जीवन दाता, गुरमत मन वसाया, अन दिन भगत करै दिन राती, हों मैं मोह चुकाया। जिस स्यों राता तै सो होवै, सच्चे सच समाया, आपे नदर करे भाव लाए, गुर सबदी बीचार। सतगुर सेवे सहज उपजाय, हमें तृष्णा मार। हर गुण दाता सद मन वसै, सच रखिया उर धार। प्रभ मेरा सदा निर्मला, मन निर्मल पाया जाए, नाम निदान हर मन वसै, हमें दुख सब जाए। सतगुर शब्द सुनाया, हम सद बलिहार जाओ, अपने मन चित कहे कहाई, अपने मन चित कहे कहाए, बिन गुरे आप ना जाई। हर जियो भगत मच्छर सुखदाता, कर कृपा मन वसाई, नानक शोभा सुरत दे प्रभ, आपे गुरमुख दे वड़ियाई। श्री राग महला तीजा, हमें कर्म कमावंदे, जम डंड लगे तिन आए, जे सतगुर सेवन से उबरे, हर से ती लिवलाए। मन रे गुरमुख नाम ते आए, तुर पूर्व करत लिखिया, तिन्ना गुरमत नाम समाए रहाओ। विण सतगुर प्रतीत ना आवई, नाम ना लागा उपाओ, सुपने सुख ना पावई, दुख में सवै समाए। जे हर हर कीचै बहुत लुचिया, कीर्तना मिटिया जाए, हर का पाना भगति मन्या, से भगत पय दर थाए। गुर शब्द दृढ़ावै रंग स्यों, बिन कृपा लया ना जाए, जे सौ अमृत नीरी है, पी बिख पल लागै ताए। से जन सच्चे निर्मले, जिन सतगुर नाल प्यार, सतगुर का पाना कमाम दे, बिख हमै तज विकार। मन हठकतै उपाय ना छूटी है, सिमरत शास्त्र सोधो जाए, मिल संगत साधु उबरे, गुर का शब्द कमाए। हर का नाम निधान है, जिस संत ना पारा वार, गुरमुख से ही सोह दे, जिन कृपा करे करतार। नानक दाता एक है, दूजा और ना कोए, गुर प्रसादी पाई है, कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा, पंखी बिरख सुहावड़ा, सच उगै गुर पाए, हर रस पीवै सहज रहै, उड़ै न आवै जाए।

आए से प्रमाण है सब कुल का करे उधार। सब नदरी कर्म कमाम दे नदरी बाहर ना कोए। जैसी नदर कर देखे सच्चा तैसा ही को होए। नानक नाम वडाइया कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा गुरमुख नाम ते आई है मनमुख बूझ ना पाए। गुरमुख सदा मुखी उजले हर वस्या मन आए। सहजे ही ते सुख पाई है सहजे रह समाए। पाई रे दासन दासा होए। गुर की सेवा गुर भक्त है विरला पाए कोए। रहाओ सदा सुहाग सुहागनी जे चले सतगुर पाए। सदा पर नहीं चल पाई है ना ओह मरे ना जाए। शब्द मिली ना विछड़े पिरके अंक समाए। हार निर्मल अतुजला बिन गुर पाया ना जाए। पाठ पढ़े ना बूझई पेखी परम पुलाए। गुरमति हर सदा पाया रसना हर रस माए। माया मोह चुकाया गुरमति सह सुभाए। बिन शब्द जग दुखिया फिराए मन मुखा नो गई खाए। शब्दे नाम ते आईए शब्दे सच समाए। माया पूले सिद्ध फिरे समाध ना लगे सुभाए। तीने लो व्यापत है अद कही लपटाए। बिन गुर मुक्त ना पाई है ना दुबदा माया जाए। माया किसनो वाखिए क्या माया कर्म कमाए। दुख सुख एहो जियो बद है अहो मैं कर्म कमाए। बिन शब्द परम ना चुकई ना विचो हो मैं जाए। बिन प्रीति भक्त ना हो वई बिन शब्द थाए ना पाए। शब्द हो मैं मारी है माया का परम जाए। नाम पदार्थ पाई है गुरमुख सह सुभाए। बिन गुर गुण ना जापनी बिन गुण भगत ना होए। भगत वछल हर मन वसिया सहज मिलिया प्रभ सोए। नानक शब्दे हर साला ही है कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा माया मोह मेरे प्रभ की ना आपे परम पुलाए। मन मु कर्म करे नहीं बूझे बिरथा जन्म गवाए। गुरबाणी इस जग में चानन कर्म वसे मन आए। मन रे नाम जपो सुख होए। गुरपूरा साला ही है सहज मिले प्रभ सोए। रहाओ परम गया पौ पा गया हर चरणी चित लाए। गुरमुख शब्द कमाई है हर वसै मन आए। कर महल सच समाई है।

ब्रह्म के बेते शब्द पछाण है होमै जात गवाई सुर नर तिन की बाणी गावै कोई न मेटै भाई दैत पुत कर्म धर्म किछ संजम ना पड़ै दूजा भाव न जाणै सतगुर भेटै निर्मल होवा अंदन नाम वखाणै एको पड़ै एको ना बूझै दूजा अवर न जाणै खड़ दर्शन जोगी सन्यासी बिन गुर परम भुलाए सतगुर सेवै तां गत मित पावै हर जियो मन वसाए सच्ची बाणी सो चित लागै आवन जान रहाए पंडित पढ़ पढ़ वाद वखाणै बिन गुर परम भुलाए लख चौरासी फेर पया बिन शब्द मुक्त ना पाए जां ना चेतै तां गत पाए जां सतगुर मेल मिलाए सत संगत में नाम हर उपजै जां सतगुर मिलै सुभाए मन तन अर्पी आप गवाई चला सतगुर पाए सतबलिहारी गुर अपने विटाओ जे हर से ती चित लाए सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे हर से ती रंग राता प्रभ निकट वसै सबना घट अंतर गुरमुख वर लै जाता नानक नाम मिलै वडियाई गुर कै शब्द पछाता श्री राग महला तीजा सहजै नौ सब लोई दी बिन गुर पाया ना जाए पढ़ पढ़ पंडित जोत की थके भेखी परम भुलाए गुर भेटे सहज पाया अपनी कृपा करे रजाए भाई रे गुर बिन सहज ना होए शब्दै ही ते सहज उपजै हर पाया सच सोए रहाओ सहजे गाव्या थाए पवै बिन सहजै कथनी बाद सहजे ही भगति उपजै सहज पैर प्यार बैराग सहजे ही ते सुख शांत होए बिन सहजै जीवन बाद सहज सलाही सदा सदा सहज समाध लगाए सहजे ही गुणी उचरै भगत करे लिवलाए शब्दे ही हर मन वसै रसना हर रस खाए सहजे काल विडारिया सशरण आई पाए सहजे हर नाम वसिया सच्ची कार कमाए सेवड़ भागी जिनी पाया सहजे रहे समाए माया विच सहजन उपजै माया दूजै पाए।

स्वार्थ स्वाओ ना को करे ना किश होवै काज चित आवै ओस पार ब्रह्मो ता निचल होवै राज। जा कहो चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग ग्रस्त कुटुंब पलेटिया कदे हरख कदे सोग। गौण करे चहो कुंटका कड़ी ना बैसन सोए चित आवै उस पर ब्रह्म तन मन शीतल होए। काम क्रोध मोहे वस किया किरपन लोग प्यार चारे किलवख उन अग किए होवा असर संघार। पोथी गीत कवित किश कदे ना करन धरिया चित आवै उस पर ब्रह्म तन निमख सिमरत तरिया। शास्त्र सिमरत वेद चार मुखागर बिचरे तपित पीसर जोगिया। तीर्थ गमन करे खटकर में खटकर माते दुगने पूजा करता नाए रंग ना लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए। राज मिलक सिकदारिया रस भोगन विस्तार बाग सुहावे सोहने चले हुक्म अफार। रंग तमासे बहु विधि चाए लग रहया चेतना आयो पार ब्रह्म ता सर्व की जून गया। बहुत तनाड्या चारवंत शोभा निर्मल रीत मात पिता सुत भाइया साजन संग प्रीत। लश्कर तरकस बंद बंद।

भगवती रहत जुगता, योगी कहत मुक्ता, तपसी तप है राता, मोनी मोन धारी, सन्यासी ब्रह्मचारी, उदासी उदास राता, भगत नम है प्रकारा, पंडित वेद पुकारा, ग्रस्ती ग्रस्त धर्माता, एक शब्दी बहुरूप अवधूता, कापड़ी कौते जागूता, एक तीर्थ नाता, निरहार वर्ती आपरसा, एक लूकना देव दर्शा, एक मन ही ज्ञाता, काटना किन ही कहाया, सब कहते हैं पाया, जिस मेले सो भगता, सगल उगत उपावा, त्यागी शरण पावा, नानक गुर चरण पराता, एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, श्री राग महला पहला कर तीजा, जोगी अंदर जोगिया, तू भोगी अंदर

जिस पावै तिसै बुझाए जियो, गुर प्रसादी पाया तिथे माया मोह चुकाया, कृपा करके अपनी आपे ले समाए जियो। गोपी ने गोवा लिया, तुद आपे गोए उठा लिया, हुक्मी पांडे साजिया तू आपे भन सवार जियो। जिन सतगुर सिओ चित लाया, तिन्नी दूजा भाव चुकाया, निर्मल जोत दिन प्राणिया ओए चले जन्म सवार जियो। तेरियां सदा सदा चंगियाईया, मैं रात है वड़ियाईया, अनमंगया दान देवना, कहो नानक सच संभाल जियो। श्री राग महला पंजवा, पै पाए मनाई सोए जियो, सतगुर पुरख मिलाया, तिह जेवड़े अवर ना कोए जियो। रहाओ गोसाई महिंडा इठड़ा, आमे अबे था वो मिठड़ा, भैन भाई सब सज्जना, तुद जिहा नाही कोए जियो। तेरे हुक्मे सामने आया, मैं सतका हर जो आया, नाव बीजन लगा आस कर, हर बोहर बख्श जमाए जियो। हाँ गुरमिल एक पछाणदा, दुया कागल चेतना जानदा, हर एक तय कार

जैसी कलम वुड़ी है मस्तक तैसी जी अड़े पास। कहो नानक प्राणी पहले पहरे हुकुम पया गर्भास, दूजे पहरे रह।

मात पिता सुत ने हो कनेरा माया मोह सबाई संजोगी आया किरत कमाया करनी कार कराई राम नाम बिन मुक्त ना होई बुढ़ी दूजा हेत कहो नानक प्राणी पहले पहरे छूटे गार चेत दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा पर जोबन मैं मत अहनस काम व्यापिया मन जा रहा मित्रा अंदले नाम ना चित राम नाम कट अंतर नाही होर जाने रसकस मीठे ज्ञान ध्यान गुण संजम नाही जनों मरोंगे झूठे तीर्थ वर्त सुच संजम नाही कर्म धर्म नहीं पूजा नानक भाए भगत निस्तारा दुबदा व्यापै दूजा तीजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा सरहंस अलथड़े आए जोबन कटै जरुआ जनैवन जा रहा मित्रा आव कटै दिन जाए अंत काल पछतासी अंदले जां जम पकड़ चलाया सब किश अपना कर कर राखिया खिनमै पया पराया बुद्ध विसरजी गई सियाणप कर अवगण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभचे तो लिवलाए चौथे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा बिरद पया तन खीण अखी अंध ना दी सही बन जा रहा मित्रा कन्नी सुने ना वैण अखी अंध जीव रस नाही रहे परा को ताना गुण अंतर नाही क्यों सुख पावे मन मुख आवन जाना खड़ पक्की कुड़ भजै बिनसै आए चले क्या मान कहो नानक प्राणी चौथे पहरे गुरमुख शब्द पछाण ओढ़ के आया तिन साहयावन जा रहा मित्रा जर जर वाणा कन एक रती गुण ना समाण आवन जा रहा मित्रा अवगण खड़सन बन गुण संयम जावै चोट ना खावै ना तिस जमण मरना काल जाल जम जोहे ना साकै पाए भगत पै तरना पत सेती जावै सहज समावै सगले दुख मिटावै कहो नानक प्राणी गुरमुख छूटै साचे ते पत पावै श्री राग महला चौथा पहले पहरै रहन कैवन जा रहा मित्रा हर पाया उदर मझार हर त्यावै हर उचरै बन जा रहा मित्रा हर हर नाम समार हर हर नाम जपया राधे विच अग्नि हर जप जीवया बाहर जन्म भया मुख लागा सरसे पिता मात थीवया जिसकी वस्तु ते चेतो प्राणी कर हृदय गुरमुख विचार कहो नानक प्राणी पहले पहरे हर जपिए कृपा तार दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा मन लागा दूजे पाए मेरा मेरा कर पाली एवन जा रहा मित्रा ले

तार पाए ता उदरै माहे दसी मासी मानस की आवन जारिया मित्रा कर मोहलत कर्म कमाहे मोहलत कर दीनी कर्म कमाने जैसा लिखत तुर पाया मात पिता भाई सुत बनता तिन पीतर प्रभु संजोया कर्म सुकर्म कराए आपे इस जनता वस किश नाहे कहो नानक प्राणी पहले पहरै तर पाए ता उदरै माहे दूजे पहरै रहन कैवन जा रहा मित्रा पर जवानी लहरी दे बुरा भला ना पछाणी बन जा रहा मित्रा मन मता अहुमे बुरा भला ना पछाणै प्राणी आगे पंथ करारा पूरा सतगुर कबू ना सेवया सिर ठांडे जम जंदारा धर्म राय जप क्रस बवरे तब क्या जवाब करे कहो नानक दूजे पहरे प्राणी पर जोबन लहरी दे तीजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा बिक संचय अंध ज्ञान पुत्र कलत्र मोहे लपटे आवन जा रहा मित्रा अंतर लहर लोवान अंतर लहर लुभान प्राणी सुप्रभ चेतना आवै साध संगत स्यों संग ना किया बहजो नी दुख पावै सृजन हार विसारिया स्वामी एक निमख ना लगो ध्यान कहो नानक प्राणी तीजै पहरै बिक संचे अंध ज्ञान चौथे पहरै रहन कैवन जा रिया मित्रा दिन नेड़ै आया सोए गुरमुख नाम समाल तू मन जा रहा मित्रा तेरा दरगह बेली होए गुरमुख नाम समाल प्राणी अंते हरना अंते होए सखाई एहो मोह माया तेरा संग ना चल झूठी प्रीत लगाई सगली रैन गुदरी अंधारी।

सुंदर स्वामी धाम भगत विश्राम आसा लग जीवते जियो मन तन गलतान सिमरत प्रभ नाम हर अमृत पीवते जियो अमृत हर पीवते सदा थिर थीवते बिखै बन फीका जानिया भय किरपाल गोपाल प्रभ मेरे साध संगत निद मानिया सर्ब सो सुख आनंद घन प्यारे हर तन मन अंतर सीवते एक तिल नहीं विसरै प्राण आधारा जप जप नानक जीवते डखणा जो तौ कीने अपने तिन्ना को मिले ओहे आपे ही आप मोए ओहो जस नानक आप सुने ओहे संत प्रेम ठगौरी पाए री जाए गोविंद मन मोया जियो संतन कै प्रसाद आगाद कंठे लग सोया जियो हर कंठ लग सोहया दुख सब जोहया भगत लखन कर वस भए मन सर्व सुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए सखी मंगलो गाया इच पुजाया बौन ना माया होया कर गए लीने नानक प्रप्यारे संसार सागर नहीं पोहया डखना साई नाम अमोल कीम ना कोई जान दो जिन्ना पाग मथा है से नानक हर रंग मान दो संत कहते पवित्र सुनते सब धन लिखती कुल तारिया जियो जिन कौ साधु संग नाम हर रंग तिन्नी ब्रह्म विचारिया जियो ब्रह्म विचारिया जन्म सवारिया पूर्ण कृपा प्रभ करी कर गै लीने हर जसो दीने जो ना तावै नह मरी सतगुर दयाल कृपाल भेटत हरे काम करो लो मारिया कथ ना जाय अकथ स्वामी सत कह जाय नानक वारिया श्री राग महला चौथा वणजारा एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद हर हर उत्तम नाम है जिन सरिया सब कोय जियो हर जी सबे प्रतपालदा घट घट रमैया सोए सो हर सदा त्याई है तिसबिन अवर ना कोए जो मोहे माया चित लाएं दे से छोड़ चले दुख रोए जन नानक नाम त्याया हर अंत सखाई होए मैं हर बिने अवर ना कोए हर गुरसरण आई पाई है वन जारिया मित्रा वड भाग प्राप्त होए रहाओ संत जनामिन पाईया हर किने ना पाया नाओ विच

तोर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम ते आए। मन हर हर प्रीत रंग लगाए वडभागी गुर पाया गुर शब्दी पार लंघाए रहाओ। हर आपे आपो पाएंदा हर आपे दे वैले हर आपे परम भुलाएंदा हर आपे ही मत दे। गुरमुखा मन परगास है से विरले के हम बलिहारी तिन कहो जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल परगासिया मन हर हर उठड़ाओ है मन हर हर जपन करे हर गुरसरण आई भज पाओ जिंदु। सब किल विख दुख पर हरे रहाओ घट घट रमैया मन वसै क्यों पाईऐ कित भत। गुरपुरा सतगुर भेटियै हर आए वसै मन चित। मैं तर नाम आधार है हर नामै ते गत मत। मैं हर हर नाम विसहो है हर नामै ही जत पत। जन नानक नाम ते आया रंग रतड़ा हर रंग रत। हर त्यावो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत। रहाओ जिन कहो पूर्व लिखिया से आए मिले गुरपास। सेवक पाए वन जा रहा मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास। तन तन वन जवा पारिया जिन वखर लद्याड़ा हर रास। गुरमुखा दर मुख उजले से आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिना पाया जिन्ना आप तुठा गुणतास। हर त्यावो सास गिरास मन प्रीत लगी तिना गुरमुखा। हर नाम जिन्ना रहरास रहाओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्री राग की वार महला चौथा श्लोका नाल श्लोक महला तीजा। रागा विच श्री राग है जे सच तरे प्यार। सदा हर सच मन वसै निश्चल मत अपार। रतना मूलक पाया गुर का शब्द विचार। जेवा सच्ची मन सच्चा सच्चा श्री रियाकार। नानक सच्चा सतगुर सेवे है सदा सच वापार महला तीजा। होर बिरहा सब धात है जब लग साहिब प्रीत ना होए। एहो मन माया मोहया वेखण सुन ना होए। सह देखे बिन प्रीत ना उपजै अंधा क्या करे। नानक जिन अखी लीतिया सोई सच्चा दे पौड़ी। हर इको करता इको दी बाण हर। हर इक सह दा है अमर इको हर चित तार। हर तिस बिन कोई नाहे डर भ्रम पौ दूर कर। हर तिसै नो सालाहे जे तुद रखे बाहर घर। हर जिसनो होए दयाल सो हर जप पौ बिखमतार। श्लोक महला पहला। दाती साहेब संधियां क्या चलै तिस नाल। एक जा गंदे ना लहन एक ना सुत्यां दे उठाल। महला पहला। सिदक सबूरी साधका सबर तो सा मलाए का। दीदार पूरे पाए सा थाओ नाही खाए का। पौड़ी सब आपे तो दियो पाए कै आप कर लाई। तू आपे वेख वेखदा अपनी वड्याई। हर तुदो बाहर किश नाही तू सच्चा साई। तू आपे आवरदा सबनी थाई। हर तिसै त्यावो संत जनों जो ले छड़ाई। श्लोक महला पहला। फकड़ जाती फकड़ नाओ सबना जिया इका शाओ। आपो जे को पला कहाए नानक ता पर जापै जा पत लेख पाए। महला दूजा। जिस प्यारे स्यो ने हो तिस आगे मर चलिए। त्रिग जीवन संसार ता कै पाछै जीवना। पौड़ी तुद आपे धरती साजी है चंद सूरज दुए दीवे। दस चार हट तुद साजे वापार करीवे। इकना नो हर लाभ दे जो गुरमुख थीवे। तिन जम काल ना वे आपै जिन सच अमृत पीवे। ओए आप छुटे परवार स्यों तिन पिछे सब जगत छुटीवे। श्लोक महला पहला। कुदरत करके

सरै सरैयत करै विचार, बिन बूझे कैसे पावै पार। सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद, जेह तिर देखा ते तिर मौजूद। महला तीजा, गुरसभा एव ना पाई है, ना नेड़ै ना दूर। नानक सतगुर ता मिलै, जा मन रहै हदूर। पौड़ी सप्त दीप सप्त सागरा, नव खंड चार वेद दस अष्ट पुराणा। हर सबना वे तू वरदा, हर सबना पाणा। सब तुझे ते आवै जी जंत, हर सारंग पाणा। जो गुरमुख हरिया राध दे, तिन्हौ कुरबाणा। तू आपे आ वरदा, कर चोज विडाणा। श्लोक महला तीजा। कलो मसाजनी क्या सदाई है, हृदय ही लिख ले हो। सदा साहेब कै रंग रहै, कऊ न तूट सने हो। कलो मसाजनी जाए सी, लिखिया पी ना ले जाए। नानक सह प्रीत ना जाए सी, जो तुर छोड़ी सचै पाए। महला तीजा। नदरी आमदा नाल न चलई, वेखो को वे उपाए। सतगुर सच दृढ़ाया, सच रहो लिवलाए। नानक सबदी

वै दरखड़िया नाल खसमै रतियां माणे सुख रलियां होंदे तान नितानियां रह निमाननियां नानक जन्म सकार था जेतन कै संग मिला पौड़ी। तू आपे जल मीना है आपे आपे ही आप जाल तू आपे जल वताएंदा आपे विसे बाल तू आपे कमल अलिपत है सह हथां विच गुलाल तू आपे मुक्त कराएंदा एक निमख घड़ी कर ख्याल हर तुद्दों बाहर किश नहीं गुरसबदी वेख निहाल। श्लोक महला तीजा हुक्म ना जा

पाए सुभाए गुरविन सहज ना आवई लो मैलां विचों जाए खिन पल हर नाम मन वसै सब अड़सठ तीर्थ नाए सच्चे मैलां लगई मल लागै दूजे पाए धोती मूल ना उतरै जे अड़सठ तीर्थ नाए मनमुख कर्म करे अहंकारी सब दुखो दुख कमाए नानक मैला उजल ता थीऐ जा सतगुर महे समाए महला तीजा मनमुख लोक समझाईऐ कदों समझाया जाए मनमुख रलाया नार लै पै किरत फिराए लिवता दुए रहा है हुक्मी कार कमाए गुरमुख अपना मन मारिया शब्द कसवटी लाए मन ही नाल झगड़ा मन ही नाल साथ मन ही मंज समाए मन जो इच्छे सोल है सच्चे शब्द सुभाए अमृत नाम सत पुंची है गुरमुख कार कमाए विण मनै जे होरी नाल लुजना जासी जन्म गवाए मन मुखी मन हठहारिया कूड़ कसत कमाए गुर प्रसादी मन जड़ै हर से तील विलाए नानक गुरमुख सच कमावै मनमुख आवै जाए पौड़ी हर के संत सुनो जन पाई हर सतगुर की एक साखी जिस तुर भाग होवै मुख मस्तक तिन जन लै हृदय राखी हर अमृत कथा श्रेष्ठी उत्तम गुरबचनी सहजे चाखी तै भया प्रगास मिटया अंधियारा ज्यो सूरज रहण के राखी आ दिष्टा गोचर लख निरंजन सो देख्या गुरमुख आखी सलोक महला तीजा सतगुर सेवे अपना सो सिर लेखे लाए विचों आप गवाए कै रहन सच लिवलाए सतगुर जिनी ना सेवे ओ तिन्ना बिरथा जन्म गवाए नानक जोत पावे।

जिस तू देहे सो तृप्त्या गावै सोई भगत मारा जियो सबको वासै तेरी बैठा घट घट अंतर तू है उठा सबे सांझी वाल सदाएन तू किसै न दिसै बारा जियो तू आपे गुरमुख मुक्त कराए तू आपे मनमुख जन्म पवाए नानक दास तेरा बलिहार है सब तेरा खेल दसहरा जियो माज महला पंजवा अनहद वाजै सहज सुहेला सबदा आनंद करे सदकेला सहज गुफा मैं ताड़ी लाई आसन ऊ सवारिया जियो फिर घेरे अपने गृह मैं आया जो लोड़ींदा सोई पाया तृप्ता गाए रहा है संतो गुर अनुभव पुरख दिखा रहा जियो आपे राजने आपे लोगा आप निर्वाणी आपे भोगा आपे तख्त भय सच न्याई सब चूकी कूक पुकारिया जियो जिहा डिठा मैं तेहो कहया तिस रस आया जिन भेद लहया ज्योति ज्योत मिली सुख पाया जन नानक एक पसारिया जियो माज महला पंजवा जित घर पिर सोहाग बनाया तित कर सखिए मंगल गाया आनंद बिनोद तित कर सोहै जो तन कंत सिंगारी जियो सा गुणवंती सावड भागण पुत्रवंती सीलवंत सुहागण रूपवंत सा सुगड़ पचखण जो तन कंत प्यारी जियो आचारवंत साई प्रधाने सब सिंगार बने तिस ज्ञाने सा कुलवंती सा सबराई जो पिर कै रंग सवारी जियो महिमा तिसकी कहन न जाए जो पिर मेल लई अंग लाए थिर सुहाग वारग मैं गोचर जन नानक प्रेम सधारी जियो माज महला पंजवा खोजत खोजत दर्शन चाहे भांत भांत बन बन अवगाहे निर्गुण सरगुण हर हर मेरा कोई है जियो अण मिला वै जियो खट सास्त विचरत मुख ज्ञाना पूजा तिलक तीर्थ इशनाना निवली कर्म आसन चौरासी इनमें सातना आवै जियो अनक बरख किए जब तापा गमन किया तरती परमाता एक खिन हृदय सांतना आवै जोगी बहुड़ बहुड़ उठत आवै जियो कर कृपा मुए साध मिलाया मन तन शीतल तीर जपाया प्रभ अबनासी बसिया कट पीतर हर मंगल नानक गावै जियो माज महला पंजवा पार ब्रह्म परंपर देवा अगमा गोचर लाख्या पेवा दीन दयाल गोपाल गोविंदा हर त्यावो गुरमुख गाती जियो गुरमुख मधसूद निस्तारे गुरमुख संगी कृष्ण मुरारे दयाल दमोदर गुरमुख पाई होरत कितै ना पाती जियो निरहारी केसव निरवैरा कोट जना जाके पूजे पैरा गुरमुख हृदय जाके हर हर सोई भगते एकाती जियो अमोघ दर्शन बेअंत अपारा वट समरस दादा तारा गुरमुख नाम जपिए तित तरिए गत नानक विरली।

वन त्रिण त्रि पवन की तोन हरिया, करण हार खिन पीतर करिया। गुरमुख नानक तसै अरादे, मन की आस पुजाए जियो। माज महला पंजवां, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंदप तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई, ता पौ केहा काड़ा जियो। तुमरी कृपा ते तुद पछाणा, तू मेरी ओट तू है मेरा माणा, तुझ बिन दूजा और ना कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। जी जंत सब तो देव पाए, जिजत पाना तित तलाए, सब किश कीता तेरा होवै, नाही किश असाड़ा जियो। नाम ते आए महा सुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन सीत लाया। गुरपूरे वजी वाधाई, नानक जिता बिखाड़ा जियो। माज महला पंजवां, जी प्राण भ्रम ने अधारा, भग जीवै गुण गाए अपारा। गुण निदान अमृत हर नामा, हर त्याय त्याय सुख पाया जियो। मनसा तार जो करते आवै, साध संग जन मरण मिटावै। आस मनोरथ पूर्ण होवै, भेटत गुरदर साया जियो। आगम्या गोचर किशमित नहीं जानी, साधक सिद्ध ते आवै ज्ञानी। खुदी मिट्टी चूका पोलावा, गुरमन ही मह प्रगटाया जियो। आनंद मंगल कल्याण निधाना, सुख सहज हर नाम वखाना। हुए कृपाल स्वामी अपना, ना ओ नानक कर मैं आया जियो। माज महला पंजवां, सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, तू प्रीतम ठाकरियत पारी। तुमरे कर्तव तुम ही जाना, हो तुमरी ओट गोपाला जियो। गुण गावत मन हरिया होवै, कथा सुनत मन सगली खोवै। भेटत संग साध संतन कै, सदा जपो दयाला जियो। प्रभ अपना सास सास सुमारो, एह मत गुर प्रसाद मन धारो। तुमरी कृपा ते होए परगासा, सर्व मया प्रतपाला जियो। सत सत सत प्रभ सोई, सदा सदा सद आपे होई। चलत तुम्हारे प्रगट प्यारे, देख नानक पए निहाला जियो। माज महला पंजवां, हुक्मी वरसन लागे मेहा, साजन संत मिल नाम जपेहा। शीतल सांस है सुख पाया, ठांड पाई प्रभ आपे जियो। सब किश बहुतो बहुत उपाया, कर कृपा प्रभ सगल रजाया। दात करो मेरे दातारा, जी जंत सब तरापे जियो। सच्चा साहेब सच्ची नाई, गुर प्रसाद तिस दाते आई। जन्म मरण पै काटे मोहा, बिनसे शोक संतापे जियो। सास सास नानक साला हे, सिमरत नाम काटे सफा हे। पूर्ण आस करी खिन पीतर, हर हर हर गुण जापे जियो। माज महला पंजवां, आओ साजन संत मीत प्यारे, मिल गावै गुण अगम्या पारे। गावत सुनत सबे ही मुक्ते, सो त्याईये जिन हम किए जियो। जन्म जन्म के किल बिख जावै, मन चिंदे से ही फल पावै। सिमर साहिब सो सच स्वामी, रिजक सब सकौ दिए जियो। नाम जपत सर्ब सुख पाईऐ, सब पो बिनसै हर हर त्याईऐ। जिन सेव्या सो पार ग्रामी, कार्ज सगले थीए जियो। आए पया तेरी सरनाई, जो पावै त्यों लह मिलाई। कर कृपा प्रभक्ति लावो, सच नानके अमृत पीए जियो। माज महला पंजवां, पहे कृपाल गोविंद गोसाई, मेघ वरसै सबनी थाई।
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲਾ ਠਾਂਡ ਪਾਈ ਕਰਤਾਰੇ ਜੀਉ ਆਪਣੇ ਜੀ ਜੰਤ ਪ੍ਰਤਪਾਰੇ ਜੋ ਬਾਰਕ ਮਾਤਾ ਸੁਮਾਰੇ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸਵਾਮੀ ਦੇਖ ਸਗਲ ਆਹਾਰੇ ਜੀਉ ਜਲ ਥਲ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਸੋ ਤਿਸ ਦਾ ਧਿਆਈ ਜੇ ਖਿਨ ਮੈਂ ਸਗਲੋ ਉਦਾਰੇ ਜੀਉ ਰਾਖ ਲੀਏ ਸਗਲੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਉਤਰ ਗਏ ਸਭ ਸੋਖ ਸੰਤਾਪੇ ਨਾਮ ਜਪਤ ਮੰਤਨ ਹਰੀਆਵਲ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਨਿਹਾਰੇ ਜੀਉ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਅਸਥਲ ਸੋਇਨ ਚੌਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੀਐ ਮੇਰੇ ਗੋਇੰਦਾ ਸੇਈ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜੀਉ ਹਰ ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਖਾਏ ਸੰਭਾਲੇ ਹਰ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੇ ਖਾਏ ਖਾਏ ਕਰੇ ਬਦ ਫੈਲੀ ਜਾਣ ਵਿਸੂ ਕੀ ਵਾੜੀ ਜੀਉ ਸੰਤਾਂ ਸੇਤੀ ਰੰਗ ਨਾ ਲਾਏ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਵਿਕਰਮ ਕਮਾਏ ਦੁਲੱਭ ਦੇਹ ਖੋਈ ਅਗਿਆਨੀ ਜੜ ਆਪਣੀ ਆਪੋ ਪਾੜੀ ਜੀਉ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਰਾਖੋ ਸਰਮਿਆ ਸਾੜੀ ਜੀਉ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚਰਨ ਠਾਕਰ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਣੇ ਕਲ ਕਲੇ ਸਭ ਦੂਰ ਪਿਆਣੇ ਸਾਂਤ ਸੂਖ

अमृत वर्ष है अनहद बाणी मंत्र अंतर सांत समाणी तृप्ता गाय रहे जन तेरे सदगुर किया दिलासा जियो जिसका साव तिस्ते फल पाया कर कृपा प्रभ संग मिलाया आमन जान रहे वडभागी नानक पूर्ण आसा जियो माज महला पंजवा मीहो पया परमेसर पाया जी जंत सब सुखी वसाया गया कलेस पया सुख साचा हर हर नाम समाली जियो जिसके सेत नहीं प्रतपारे पार ब्रह्म प्रपय रखवारे सुनी बेनंती ठाकुर मेरे पूर्ण होई काली जियो सर्ब जिया को देवन हारा गुर प्रसादी नगर निहारा जल थल महियल सब त्रिपताने साधु चरण पखाली जियो मन की इच्छ पुजावन हारा सदा सदा जाई बलिहारा नानक दान किया दुख भंजन रते रंग रसाली जियो माज महला पंजवा मन तन तेरा तन पी तेरा तू ठाकर स्वामी प्रभ मेरा जियो पिंड सब रास तुम्हारी तेरा जोर गोपाला जियो सदा सदा तू है सुखदाई निव निव लागा तेरी पाई कार कमावा जे तुद पावा जा तू देह दयाला जियो प्रभ तुम ते लहना तू मेरा गहना जो तू देह सोई सुख सहना जिथे रखे बैकुंठ तथाई तू सबना के प्रतपाला जियो सिमर सिमर नानक सुख पाया आठ पहर तेरे गुण गाया सगल मनोरथ पूर्ण होए कदे न होए दुखाला जियो माज महला पंजवा पार ब्रह्म प्रग मेघ पठाया जल थल मैयल उदय दिस वरसाया सांत पई बुझी सब तृष्णा अनद भया सब ठाई जियो सुखदाता दुख पंजन हारा आपे बख्श करे जी सारा अपने कीते नो आप प्रतपाले पै पैरी तसै मनाई जियो जाकी सरन भयांगत पाई है सा सा सर नाम ते आई है तिस बिन होर ना दूजा ठाकर सब तसै किया जाई जियो

माज महला पंजवा सबे सुख पए प्रभ तुठे गुरपुरे के चरण मन मुठे सह समाद लगी लवे अंतर सोरा सोई जाने जियो आगमा गोचर साहिब मेरा कड़कड़ अंतर वरतै नेरा सदा लिप्त जिया का दाता को बिरलाया पछाणै जियो प्रभ मिरने की है निशानी मन को सच्चा हुक्म पछाणी सह संतोख सदा तृप्ता से अंध खसम कह पाणे जियो हथी दित्ती प्रभ देवन हारे जन्म मरण रोग सब निवारे नानक दास किए प्रभ अपने हर कीर्तन रंग माणे जियो माज महला पंजवा कीनी दया गोपाल गुसाई गुर के चरण वसे मन माही अंगीकार की आतन करता दुखा डेरा टाहया जियो मंतन वसिया सच्चा सोई बिखड़ा थान न दिसै कोई दूत दुश्मन सब सज्जन होए एको स्वामी आया जियो जो किश करे सो आपे आपे बुद्ध सियाणप किछु ना जापै अपने संता नो आप सहाई प्रभ भरम भुलावा लाया जियो चरण कमल जन काया धारो आठ पहर राम नाम वापारो सहज आनंद गावे गुण गोविंद प्रभ नानक सर्ब समाया जियो माज महला पंजवा सो सच मंदर जे सच त्याई है सोरदा सुहेला जित हर गुण गाई है सा तरत सुहावी जित वसै हर जन सच्चे नाम विटो कुर्बानो जियो सच वडाई कीम ना पाई कुदरत कर्म ना कहना जाई त्याय त्याय जी वै जन तेरे सच शब्द मन मानो जियो सासा लाहन वडपागी पाई है गुर प्रसादी हर गुण गाई है रंग रते तेरा तुद भावै सच नाम निशानो जियो सच्चे अंत न जाणै कोई थान थन अंतर सच्चा सोई नानक साहित्य आई है सदही अंतर जामी जानो जियो माज महला पंजवा रैन सुहावड़ी दिन सुहेला जप अमृत नाम संत संग मेला घड़ी मूर्त सिमरत पल वन्या जीवन सफलत थाई

पर मन मारे अपना मुक्ति का दर पावणया। केल विख काटे क्रोध निवारे, गुर का शब्द रखे उर तारे। सच रते सदा बैरागी हम मैं मार मिलावणया। अंतर रतन मिले मिलाया, त्रिविध मनसा त्रिविध माया। पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके, चौथे पद की सारना पावणया। आपे रंगे रंग चढ़ाए, सेजन राते गुर शब्द रंगाए। हर रंग चढ़िया त्या पारा, हर रस रस गुण गावणे आ। गुरमुख रिद सिद्ध सच संजम सोई, गुरमुख ज्ञान ना मुक्त होई। गुरमकार सच कमावै, सचे सच समावणे आ। गुरमुख थापे थापो थापे, गुरमुख जात पास सब आपे। नानु गुरमुख नाम ते आए, नामे नाम समावणे आ। माज महला तीजा, उत्पत परलो सबदे होवै, सबदे ही फिर उपत होवै। गुरमुख वरतै सब आपे सच्चा, गुरमुखो पाए समावणे आ। हों वारी जियो वारी, गुरपूरा मन वसावणे आ। गुर ते सांत भगत करे दिन राती, गुण कै गुणी समावणिया रहाओ। गुरमुख तरती गुरमुख पाणी, गुरमुख पवन बैसंतर खेलै विडाणी। सो निगुरा जो मरमर जमै, निगुरे आवण जावणिया। तिन करतै खेल रचाया, काया शरीरै वे सब किछ पाया। शब्द भेद कोई महल पाए, महले महल बुलावणिया। सच्चा साहो सच्चे वणजारे, सच वणजै गुर हे त्या पारे। सच विहाजै सच कमावै, सचो सच कमावणे आ। बिन रासी को वथ क्यों पाए, मनमुख पूले लोक सवाए। बिन रासी सब खाली चले, खाली जाए दुख पावणे आ। एक सच वणजै गुर शब्द प्यारे, आप तरह सगले कुल तारे। आए से प्रवान होए, मिल प्रीतम सुख पावणे आ। अंतर वस्त मूड़ा बाहर पाले, मनमुख अंधे फिरै बेताले। जिथे वत होवै तिथो कोई ना पावै, मनमुख परम भुलावणे आ। आपे देवै शब्द बुलाए, मैली महल सहे सुख पाए। नानक नाम मिलै वडियाई, आपे सुन सुन त्यावणे आ। माज महला तीजा, सतगुर साची सिख सुनाई। हर चेतो अंत होए सखाई, हर अगमा गोचर नाथ अजूनी। सतगुर कै पाए पावणिया, हम वारी जियो वारी आप निवारणिया। आप गवाए ता हर पाए, हर सो सह समावणिया रहाओ। पूर्व लिखिया सो कर्म कमाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया। बिन भागा गुर पाईए नाही, सब दे मेल मिलावणिया। गुरमुख अलिप्त रहै संसारे, गुर कै तकियै नाम आधारे। गुरमुख जोर करे क्या तिसनो, आपे खप दुख पावणिया। मनमुख अंधे सोध ना काई, आत्म काती है जगत कसाई। निंदा कर कर बहु पार उठावै, बिन मजूरी पार पहुंचावणिया। इहो जगवाड़ी मेरा प्रमाली, सदा समाले को नाही खाली। जेही वासना पाए ते ही वरतै, वासु वाह जनावणे आ। मनमुख रोगी है संसारा, सुखदाता विसरिया अगम अपारा। दुखिए नित फिरै बिल लांदे, बिन गुर सांत ना पावणे आ। जिन कीते सोई बिद जाणै, आप करे ता हुकम पछाणै। जिहा अंदर पाए तिहा वरतै, आपे बाहर पावणे आ। तिस बाजौ सच्चे मैं होर ना कोई, जिस लाए लै सो निर्मल होई। नानक नाम वसै घट अंतर, जिस देवै सो पावणे आ। माज महला तीजा, अमृत नाम मन वसाए। हों मैं मेरा शब्दो गवाए, अमृत बाणी सदा सलाहे। अमृत अमृत पावणे आ, हां वारी जियो वारी। अमृत बाणी मन वसावणे आ, अमृत बाणी मन वसाए। अमृत नाम ते आवणे आ रहाओ। अमृत बोलै सदा मुख वैणी, अमृत वेखै परखै सदा रैणी। अमृत कथा कहै सदा दिन राती, अवरा आख सुनावणे आ। अमृत रंग रता लिव लाए, अमृत गुर प्रसादी पाए। अमृत रसना बोलै दिन राती, मन तन अमृत पी आवणे आ। सो किश

पूर्ण पूर रहया सब आपे गुरमत नदरी आवणिया आपे आप निरंजन सोई जिन सिर जीतन आपे गोई नानक नाम समाल सदा तू सहजे सच समावणिया। माज महला तीजा से सच लागे जो तुद पाए सदा सा सेवै सह सुभाए सच्चे शब्द सच्चा सा लाही सच्चे मेल मिलावणिया। हाँ वारी जियो वारी सासा लाहणिया सच ते आए न से सच राते सच्चे सच समावणिया। रहाओ जह देखा सच सबनी थाई गुर प्रसादी मन वसाई तन सच्चा रसना सच राती सच सुन आख वखानणिया। मनसा मार सच समाणी इन मन डीठी सब आवण जानी सतगुर सेवे सदा मन ने चलो निज कर वासा पावणिया। गुर कै शब्द हृदय दिखाया माया मोह सब जलाया सचो सच्चा वेख सालाही गुर शब्दी सच पावणिया। जो सच राते तन सच्ची लिव लागी हर नाम समालै से वड भागी सच्चे शब्द आप मिलाए सतसंगत सच गुण गावणिया। लेखा पढ़िया जे लेखे विच होवै ओह अगम्या गोचर शब्द शुद्ध होवै आन दिन सच शब्द सालाही होर कोई ना कीमत पावणिया। पढ़ पढ़ थाके सांत ना आई तृष्णा जाले शुद्ध ना काई बिख विहाजै बिख मोह प्यासे कूड़ बोल बिख खावणिया। गुर प्रसादी एको जाना दूजा मार मन सच समाणा नानक एको नाम वरतै सब अंतर गुर प्रसादी पावणिया। माज महला तीजा वर्ण रूप वरतै सब तेरे मर मर जमै फेर पवै कनेरे तू एको नेह चलो अगम्या पारा गुरमती बूझ बुझावणिया। हाँ वारी जियो वारी राम नाम मन वसावणिया जिस रूप ना रेखिया वर्ण ना कोई गुरमती आ बुझावणिया। रहाओ सब एका जोत जाने जे कोई सतगुर सेवे प्रगट होई गुप्त प्रगट वरतै सब थाई ज्योति ज्योत मिलावणिया। तिसना यगन जलै संसारा लोभ अवमान बहुत हंकारा मर मर जन्मै पत गवाए अपनी बिरथा जन्म गवावणिया। गुर का शब्द को विरला बूजै आप मारे तांत्र पवन सूजै फिर ओह मरै ना मरना होवै सहजे सच समावणिया। माया मह फिर चेतना लाए गुर कै शब्द सद रह समाए सच सा लाहे सब घट अंतर सचो सच सुहावणिया। सच सा लाही सदा हजूरे गुर कै शब्द रहया परपूरे गुर प्रसादी सच नदरी आवै सच्चे ही सुख पावणिया। सच मन अंदर रहया समाए सदा सच निह चलो आवै ना जाए सच्चे लागै सो मन निर्मल गुरमती सच समावणिया। सच सालाही अवरना कोई जित सेवै सदा सुख होई नानक नाम रते विचारी सचो सच कमावणिया। माज महला तीजा निर्मल शब्द निर्मल है बाणी निर्मल जोत समहे समाणी निर्मल बाणी हर सा लाही जप हर निर्मल मैल गवावणिया। हाँ वारी जियो वारी सुखदाता मन वसावणिया हर निर्मल गुर शब्द सा लाही शब्दो सुनत सा मिटावणिया। रहाओ निर्मल नाम वसिया मन आए मन तन निर्मल माया मोह गवाए निर्मल गुण गावै नित साचे के निर्मल नाद बजावणिया।
ਨਿਰਮਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਮੁਵਾ ਤਿੱਥੈ ਮੋਹ ਨਾ ਮਾਇਆ। ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਅਤਿ ਨਿਰਮਲ, ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ, ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਸੇਵੇ ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗੁਰਸਬਦੇ ਧੋਵੈ। ਨਿਰਮਲ ਵਾਜੈ ਅਨਹਤੁਨ ਬਾਣੀ, ਦਰ ਸੱਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਸਭ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ, ਨਿਰਮਲ ਮਨੁਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਪਰੋਵੈ। ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਵਡਭਾਗੀ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵਣਿਆ। ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਸ਼ਬਦੇ ਸੋ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਮਨ ਤਨ ਮੋਹੈ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਮਲ ਕਦੇ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਮੁਖੀ ਉਜਲ ਸੱਚ ਕਰਾਵਣਿਆ। ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਦੂਜੈ ਪਾਏ, ਮੈਲਾ ਚੌਕਾ ਮੈਲਾ ਥਾਏ, ਮੈਲਾ ਖਾਏ ਫਿਰ ਮੈਲ ਵਧਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਮੈਲ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਮੈਲੇ ਨਿਰਮਲ ਸਭ ਹੁਕਮ ਸਵਾਏ, ਸੇ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਹਰ ਸਾਚੇ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਅੰਤਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੈਲ ਚੁਕਾਵਣਿਆ। ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਗੋਵਿੰਦ ਉਜਲ ਉਜਲ ਹੰਸਾ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਮੇਰੀ ਮਨਸਾ। ਮਨ ਉਜਲ ਸਦਾ ਮੁਖ ਸੋ ਹੈ, ਅਤ ਉਜਲ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਣਿਆ। ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਣਿਆ। ਰਹਾਉ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਪੈ ਉਜਲ ਹਉਮੈ ਮਲ ਜਾਏ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ। ਮਨੁਆ ਨਾਚੈ ਭਗਤ ਦਿਰੜਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ

माया मोहे जोहया जमकाले, माया मोह इस मने निचाए अंतर कपट दुख पावने आ। गुरमुख भगत जा आप कराए तन मन राता सही सुभाए, बाणी वजाए शब्द वजाए।

लिख दिया कागद मस खोई, दूजे पाए सुख पाए ना कोई। कूड लिखे तै कूड कमावे, जल जावे कूड चित लावणिया। गुरमुख सचो सच लिखे विचार, सेजन सच्चे पावे मोख द्वार। सच कागद कलम मसवाणी, सच लिख सच समावणिया। मेरा प्रभ अंतर बैठा वेख, गुरप्रसादी मै सोई जन लिख। नानक नाम मिले वड्याई, पूरे गुरते पावणिया। माज महला तीजा, आत्म राम प्रगास गुरते होवे। हम मैं लागी गुरसबदी खोवे। मन निर्मलो अंदन भगति राता, भगत करे हर पावणिया। हाँ वारी जियो वारी, आप भगत करन अवरा भगत करावणिया। तिना भगत जना कहो, सद नाम सकार की जय। जो अंदन हर गुण गावणिया, रहाओ आपे करता कारण कराए। जित पावे तत्कार लाए, पूरे पा

हर जेठ जुड़न दा लोड़िया जिस अगे सब निवान हर सज्जन दावन लग्या किसे ना देई बन माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन रंग सबे नारायण जेते मन पावन जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन जो प्रभ कीते अपने से ही कहिए तन अपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रोवन साधु संग प्राप्ते नानक रंग माणन हर जेठ रंगीला तिस धनी जिसकै भाग मथन आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर ना हो ना जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संदियास दुया पाए विगुची है गल पई सो जम की फास जिहा बीजै सो लुण मथे जो लिखे आस रैण विहानी पछतानी उठ चली गई निरास जिन कौ साधु भेटिया सो दरगह होए खलास कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आसार सुहंदा तिस लगै जिस मन हर चरण निवास सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ा व्या दिसन सबे शार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वन तेन प्रभ संग मौलिया समरथ पुरखिया पार हर मिलने नो मन लोचदा करम मिलावन हार जिनी सखिए प्रभ पाया हों तिनकै सबर हार नानक हर जी माया कर शब्द सवारन हार सावन तिना सुहाग।

नानक मंगे दर्श दान, कृपा करो हरे। माज महला पंजवां, दिन रहन एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सेवी सतगुर अपना हर सिमरी दिन सब रहन, आप त्याग सरनी पवा मुख बोली मिठड़े वैण, जन्म जन्म का विछड़िया हर मेलो सज्जन सैन, जो जी हर ते विछड़े से सुख न वसन पैण, हर पिर बिन चैन न पाईए खोज डिठे सब गैण, आप कमाणे विछड़ी दोस न काहू देण, कर कृपा प्रभ राख लेहो होर नाही करन करेण, हर तुद बिन खाकू रूलना कहिए किथे वैण, नानक की बेनंतिया हर सुरजन देखा नैण, जी की बिरथा सो सुने हर समर्थ पुरख अपार, मरण जीवन आराधना सबना काया धार, ससरे पईए तिसकंत की वड्डा जिस परवार, ऊंचा अगम्या गाद बोध किशंतना पारावार, सेवा सा तिस पावसी संता की होए शार, दीना ना दयाल देव पत ते उदारण हार, आज जुगा दी रखदा सच नाम करतार, कीमत कोई न जाने को नाही तोलन हार, मंत्र अंतर वस रहे नानक नहीं सुमार, दिन रहन जे प्रभ को सेव दे तिन कै सत बलिहार, संत आराधन सत सदा सबना का बख्शेंद, जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दिती निजिंद, गुर शब्दी आराधिए जपिए निर्मल मंत, कीमत कहन न जाइए परमेश्वर बेअंत, जिस मन वसै नारायण सो कहिए भगवंत, जी की लोचा पूरी है मिले स्वामी कंत, नानक जीवे जप हरि दोख सबे ही हंत, दिन रहन जिस ना विसरै सो हरिया होवै जंत, सर्व कला प्रभ पूर्ण मन ने माणी थाओ, हरे ओट गही मन अंदरे जब जब जीवान आओ, कर कृपा प्रभ अपनी जंतूड़ी संग समाओ, जो तू राख्या त्यो रहा तेरा दिता पैना खाओ, उद्यम सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ, दूजी जाए न सुजई किथे कूकण जाओ, अज्ञान बिनासन तम हरण ऊंचे अगम्या माओ, मन विछड़िया हर मेली है नानक हो सवाओ, सर्व कल्याणा तित देनो हर परसी गुर के पाओ, वार माज की तथा श्लोक महला पहला, मलक मुरीद तथा चंद्रहड़ा सुहिया की तुनी गावनी, एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद, श्लोक महला पहला। गुरदाता गुर है वै कर गुर दी

गए से कीत पुकारिता उड़िया हंस दसायरा आया गया मोया नाओ पिछे पतल सद्यो का नानक मनमुख अंध प्यार बाजगुरु डुबा संसार महला पहला दस बाल तन बी श्रवण तीसा का सुंदर कहावे चालीसी पर होए पचासी पग खिसै।

डिठ मैं नानक जगत हुए का तवलहार पौड़ी। तू करता पुरख्या कम है आप सृष्टि उपाती रंग परंग उपार जना बहु बहु विद पाती। तू जाने जिन्हें उपाई है सब खेल तुमाती एक आवे खजाए उठ बिन्ना में मर जाती। गुरमुख रंग

रंग हर रंग राती सो सेवो सत निरंजनो हर पुरख बिदाती तू आपे आप सुजान है वड पुरख वडाती जो मन चित तुद ध्याय दे मेरे सच्चे आ बल बल हों तिन जाती श्लोक महला पहला।

क्या पैदा होए जामन नाही सच्चा सोए, क्या मेवा क्या क्यों गुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मास, क्या कपड़ क्या से सुखाली की जय भोग बिलास, क्या लश्कर क्या नेवखवासी आवे महली वास, नानक सच्चे नाम विण सबे टोल विनाश पवड़ी, जाति रह के हाथ सच परखी है, मवरा होवे हाथ मरिया चखी है, सच्चे की सरकार जुग जुग जानी है, हुक्म ने सरदार दर दीवानी है, फरमानी है कार खसम पठाया, तबल बाज विचार शब्द सुनाया, एक होए असवार एक ना साखती, एक नी बदे पार एक ना ताकती, श्लोक महला पहला, जा पक्का ता कटिया रही सो पलरवाड़, सन की सारा चिथिया कर लया तन झाड़, दोए पुड़ चक्की जोड़ के पीसने आए बैठ, जो दर रहे सो बरे, नानक अजब डेठ महला पहला, वेख जे मिठा कटिया कट कुट बदा पाए, खुंडा अंदर रख के दिन सो मल सजाए, रस कस टटर पाइए तपै तैवल लाए, पीसो फूक समालिए दिचै विजा लाए, नानक मिठै पतरिया वेखो लोका आए, पवड़ी एक ना मरना चेत आस कनेरिया, मर मर जमै नित किसै ना केरिया, आपन रह मन चेत कहन चंगेरिया, जबरा जै नित नित मन मुख हेरिया, मन मुख लून हराम क्या ना जानिया, बदे करन सलाम खसम ना पाणिया, सच मिलै मुख नाम साहिब पावसी, करसन तख्त सलाम लिखिया पावसी, महला पहला।

करे असगा, कीड़ा थाप दे पातशाही, लश्कर करे सोवा, जेते जी जीवे लै साहा, जीवा ले तां के असा, नानक ज्यों ज्यों सच्चे पावे त्यों त्यों दे गिरा। महला पहला, एक मांसाहारी एक तृण खाए, एक नाशक्ति अमृत पाहे, एक मिटिया मैं मिटिया खाहे, एक पौण सुमारी पौण सुमार, एक निरंकारी नाम आधार। जीवे दाता मरे ना कोए, नानक मुठे जाहे नाही मन सोए। पौड़ी पूरे गुर की कार, कर्म कमाई है गुरमति आप गवाए, नाम ते आई है। दूजी कार लग जन्म गवाई है, वेणा में सब वेस पैजै खाई है। सच्चा शब्द सलाहे सच समाई है, विण सतगुर सेवे नाही सुख निवास, फिर फिर आई है। दुनिया खोटी रास कूड़ कमाई है, नानक सच खरा साला है, पत स्यों जाई है। सलोक महला पहला, तुद पावे ता वावे गावे, तुद पावे जल नावे, जा तुद पावे ता करे बेपूता, सिंगी नाद वजावे। जा तुद पावे ता पड़े कतेबा, मुला सेह कहावे, जा तुद पावे ता होवे राजे, रस खस बहुत कमावे। जा तुद पावे तेग वगावे, सिर मुंडी कट जावे, जा तुद पावे जाए दसंतर, सुन गल्ला कर आवे। जा तुद पावे ना इरचावे, तुद पाने तू पावे, नानके कह बेनंती होर सगले कूड़ कमावे। महला पहला, जा तू वड्डा सब वड्याईया, चंगे चंगा होई, जा तू सच्चा ता सब को सच्चा, कूड़ा कोई ना कोई। आखण वेखण बोलण चलण, जीवन मरना तात, हुक्म साज हुक्मै विच रखै, नानक सच्चा आप। पौड़ी सतगुर सेवन संग भरम चुकाई है, सतगुर आखै कार सो कार कमाई है, सतगुर होए दयाल ता नाम ते आई है। लाहा भगत सो सार, गुरमुख पाई है मनमुख कूड़ गुबार, कूड़ कमाई है सच्चे दह दर जाए, सच चमाई है। सच्चा अंदर महल सच बुलाई है, नानक सच सदा सच्यार, सच समाई है। श्लोक महला पहला, कलकाती राजे का साई, धर्म पंख कर उडरिया, कूड़िया मावस सच चंद्रमा, दिसै नाही कह चढ़िया। हाँ पाल विकुन्नी होई, अंधेरे राहो ना कोई, विच हम मैं कर दुख रोई, कहो नानक किन बेदगत होई। महला तीजा, कल कीरत प्रगट चानन संसार, गुरम कोई उतरे पार, जिसनो नदर करे तिस देवै, नानक गुरमुख रतन सो लेवै। पौड़ी भगता तै सह सारिया, जोड़ कदे ना आया, करता आपा भुल है ना भुलै किसै दा भुलाया। भगत आपे मेलिया न, जिन्नी सचो सच कमाया, संसारी आप खोआया न, जिन्नी कूड़ बोल बोल बिख खाया। चलन सार ना जाननी, काम क्रोध विस वधाया, भगत करन हर चाकरी, जिन्नी अंदर नाम ते आया। दासन दास होए कै, जिनी विचों आप गवाया, उना खसमै कै दर मुख उजले, सच्चे शब्द सुहाया। सलोक महला पहला, साबाही सालाहा, जिनी त्याया एक मानो, सेई पूरे साहा, वक्त उपर लड़ मोए।

गौड़ी महला पहला माता मत पिता संतोख सत भाई कर एहो विशेख कहना है किस कहन ना जाए तो कुदरत कीमत नहीं पाए रहाओ सरम सुरत दुए ससर पहे करनी कामण कर मन लए साहा संयोग वियाह वियोग सच संतत।

जय कारण तट तीर्थ जाही, रतन पदार्थ कट ही माही। पड़ पड़ पंडित बाद वखाण है, पितर होंदी वस्त न जाण है। हो ना मुआ मेरी मुई बलाए, ओहो ना मुआ जो रया सुमाए। कहो नानक गुरब्रह।

तीन अवस्था कह वखियान, तुरियावस्था सतगुर ते हर जान, राम भगत गुर सेवा तरना, बहुड़ जन्म ना होए है मरना रहाओ। चार पदार्थ कह सब कोई, सिमरत शास्त्र पंडित मुख सोई, बिन गुरे अर्थ विचार ना पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया, जा कह हृदय वसया हर सोई, गुरमुख भगत प्राप्त होई। हर की भगत मुक्त आनंद, गुरमत पाए परमानंद, जिन पाया गुर देख दिखाया, आसा महे निरास बुझाया, दीना नाथ सर्व सुखदाता, नानक हर चरणी मन राता, गौड़ी चेती महला पहला, अमृत काया रहे सुखाली, बाजी हो संसारो लब लोभ मुच कूड़ कमावे, बहुत उठावे पहारो, तू काया मैं रुल दी देखी, ज्यो तारी ऊपर इशारो, सुन सुन सिख हमारी, सुकिरत कीता रहसी मेरे जियड़े, बहु नया व्यवारी रहाओ। हाँ तुझे आखा मेरी काया, तू सुन सिख हमारी, निंदा चिंदा करे पराई, झूठी लाए तबारी, वेल पराई जो है जियड़े, करे चोरी बुरियारी, हंस चलिया तू पिछे रही है, छुट्टड़ हुई है नारी, तू काया रही है सुपनंतर, तुद क्या कर्म कमाया, कर चोरी मैं जाकश लिया, ता मन भला पाया, हालत ना सोबा पलत ना टोई, अहला जन्म गवाया, हाँ खरी दोहेली होई, बाबा नानक मेरी बात ना पुछे कोई रहाओ। ताजी तुरकी सोई ना रूपा, कपड़ केरे पारा, किसी नाल न चले नानक, चढ़ चढ़ पे गवारा, कूजा मेवा मैं सब किस चाखिया, एक अमृत नाम तुम्हारा, देन दे नीम दिवालो सारी, पस मंदिर की टेरी, संचे संचना देई किस ही, अंध जाने सब मेरी, सोइन लंका सोइन माड़ी, संपै किसे न केरी, सुन मूर्ख मान्या जाना, होग तिसे का पाना रहाओ, शव हमारा ठाकुर पारा, हम तिसके वन जारे, जियो पिंड सब रात से की, मारे आपे जी वाले, गौड़ी चेती महला पहला, अवर पंच हम एक जना, क्यों राखो कर बार मना, मारे लूटे नीत नीत, किसे आगे करी पुकार जना, श्री राम नामा उचिर मना, आगे जम दल बिखम कना रहाओ, उसार मडोली राखे द्वारा, पीतर बैठी साधना, अमृत केल करे नित कामण, अवर लुटेन सो पंच जना, टाहे मडोली लूटिया देहरा, सा तन पकड़ी एक जना, जम डंडा गल संगल पड़िया, भाग गए से पंच जना, कामण लोड़े सोयना रूपा, मित्र लोड़ेन सोखा दाता, नानक पाप करे तन कारण, जासी जमपुर बादाता, गौड़ी चेती महला पहला, मुंद्रा ते कट पीतर मुंद्रा, काया की जय खिंचाता, पंच चेले वस की जय रावल, एहो मन की जय डंडाता, जोग जुगते पावस्ता, एक शब्द दूजा होर नास्त, कंद मूल मन लावस्ता रहाओ, मूंड मुड़ाया जे गुर पाईए, हम गुर कीनी गंगा ता, त्रिपवन तारण हर स्वामी, एक न चेतस अंधाता, कर पटंब गली मन लावस, संसा मूल न जावस्ता, एक चरणी जे चित लावै, लब लोभ की तावस्ता, जपस निरंजन रचस मना, काहे बोले जोगी कपट कना रहाओ, काया कमली हंस याना, मेरी मेरी करत बिहानीता, प्रणवत नानक नांगी दाजै, फिर पाछा पिछतानीता, गौड़ी चेती महला पहला,
ਔਖਦ ਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮਨ ਏਕੈ ਜੇ ਕਰ ਦ੍ਰਿੜ ਚਿਤ ਕੀ ਜੈ ਰੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੇ ਕਟਨ ਹਾਰਾ ਲੀ ਜੈ ਰੇ ਮਨ ਏਕੋ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰੇ ਤੇਰੇ ਤੀਨ ਗੁਣਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਵੈ ਲਖਣਾ ਲਖਣਾ ਜਾਈ ਰੇ ਰਹਾਓ ਸੱਕਰ ਖੰਡ ਮਾਇਆ ਤਨ ਮਿੱਠੀ ਹਮ ਤੋ ਪੰਡੋ ਚਾਈ ਰੇ ਰਾਤ ਅਨੇਰੀ ਸੂਜਸ ਨਾਹੀ ਲਜ ਟੁਕ ਸਮੂਸਾ ਭਾਈ ਰੇ ਮਨਮੁਖ ਕਰੈ ਤੇਤਾ ਦੁਖ ਲਾਗੈ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ ਰੇ ਜੋ ਤਨ ਕੀਆ ਸੋਈ ਹੋਵਾ ਕਿਰਤਨਾ ਮੇਟਿਆ ਜਾਈ ਰੇ ਸੁਬਰ ਭਰੇ ਨਾ ਹੋਵੈ ਊਣੇ ਜੋ ਰਾਤੇ ਰੰਗ ਲਾਈ ਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਪੰਕ ਹੋਵੈ ਜੇ ਨਾਨਕ ਤਉ ਮੂੜਾ ਕਿਛ ਪਾਈ ਰੇ ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਤ ਕੇਰਾ ਕਿਦੂ ਥਾਵੋਂ ਹਮ ਆਏ ਅਗਨ ਬਿੰਬ ਜਲ ਪੀਤ

एक गावत रहे मन साध ना पाए, हम मैं विच गावे बिरथा जाए। गावन गावे जिन नाम प्यार, साची बाणी शब्द विचार। गावत रहे जे सतगुर पावे, मन तन राता नाम सुभावे रहाओ। एक गावे एक भगत करे, नाम ना पावे बिन असने। सच्ची भगत गुर शब्द प्यार, अपना पर राखिया सदा उतार। भगत करे मूर्ख आप जनावे, नच नच टपे बहुत दुख पावे। नचे टपे भगत ना होए, शब्द मरे भगत पाए जन सोए। भगत वछल भगत कराए सोए, सच्ची भगत विचों आप खोए। मेरा प्रभ साचा सब जाने, नानक बख्शे नाम पछाणे। गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा,

असंता नाड़ी कदे ना बूझै, कथनी करे तै माया नाल लूझै। अंध अज्ञानी कदे ना सीजै, इस युग में राम नाम निस्तारा। विरला को पाए गुर शब्द विचारा, आप तरह सगले कुल उधारा। इस कल युग में कर्म धर्म ना कोई, कली का जन्म चंडाल कह कर होई। नानक नाम बिना को मुक्त ना होई, गौड़ी महला तीजा गुवारे री। सच्चा अमर सच्चा पातशाह हो, मन साचै राते हर वे प्रवाह हो। सच्चै महल सच नाम समा हो, सुन मन मेरे शब्द।

आप भुला के प्रभ आप भुलाया, एहो जियो वडाणी चाकरी लाया, महा दुख हटे बिरथा जन्म गवाया, किरपा कर सतगुरु मिलाए, को नाम चेते विचों भरम चुकाए, नानक नाम जपे नाव नौ निध पाए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, जिन्ना गुरमुख ते आया तिन पूछो जाए, गुर सेवा ते मन पति आए, से तनवंत हर नाम कमाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, हर हर नाम जपो मेरे पाई, गुरमुख सेवा हर काल थाई पाई रहाओ, आप पछाणे मन निर्मल होए, जीवन मुक्त हर पावे सोए, हर गुण गावे मत उत्तम होए, सहजे सही समावे सोए, दूजे पाए ना सेव्या जाए, हमें माया महा बिख खाए, पुत कुटुंब गृह मोया माए, मन मुखियंदा आवै जाए, हर हर नाम देवै जन सोए, अंदर भगत गुर सबदी होए, गुरमत विरला बूझे कोए, नानक नाम समावै सोए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, गुर सेवा जुग चारे होई, पूरा जनकार कमावे कोई, अखुट नाम तन हर तोट ना होई, ऐथे सदा सुख दर सोभा होई, ए मन मेरे परम ना कीजै, गुरमुख सेवा अमृत रस पीजै रहाओ, सतगुर सेवै से महापुरख संसारे, आप उदरे कुल सगल निस्तारे, हर का नाम रखे और तारे, नाम रते भौजन उतरे पारे, सतगुर सेवै सदा मन दासा, हमै मार कमल प्रगासा, अनहद वाजै निकर वासा, नाम रते कर माहे उदासा, सतगुर सेवै तिन की सच्ची बाणी, जो जुग भगती आख वखाणी, आन दिन जपै हर सारंग पाणी, नानक नाम रते नेह केवल निर्बाणी, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, सतगुर मिलै वडभाग संजोग, हृदय नाम नित हर रस भोग, गुरमुख प्राणी नाम हर त्याए, जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ, ज्ञान ध्यान गुर शब्द है मीठा, गुर कृपा ते किने विरलै चख डीठा, कर्म कांड बहु करै आचार, बिन नामै त्रिग त्रिग हंकार, बंदर बांधे हो माया फास, जन नानक छूटै गुर प्रगास, महला तीजा गौड़ी बैरागण, जैसी धरती उपर मेघला बरसत है, क्या धरती मध्य पानी नाही, जैसे धरती मध्य पानी परगासिया, बिन पग्गा वरसत फिराही, बाबा तू ऐसे परम चुकाही, जो किश करत है सोई कोई है रे, तैसे जाय समाही रहाओ, स्त्री पुरख होए कै क्या वे कर्म कमाही, नाना रूप सदा है तेरे, तुझी मैं समाही, इतने जन्म भूल परे से, जा पाया ता भूले नाही, जा का कार्ज सोई पर जाने, जे गुर कै शब्द समाही, तेरा शब्द तू है आपे परम कहाही, नानक तत् तत् सो मिलिया, पुनरप जन्म ना आही, गौड़ी बैरागण महला तीजा, सब

जब गुर मिलया तब मन वस आया, तावत पंच रहे हर त्याया, अंदर नगरी हर गुण गाया। सतगुर पग तूर जिन्ना मुख लाई, तन कूड़ ते आगे हर लिवलाई, ते हर दरगह मुखी उज्जल पाई। गुर सेवा आप हर पावै, कृष्ण बल भद्र गुर पग लगत आवै, नानक गुरमुख हर आप तरावै।

नित दिन सरात लालच करे भरमै भरमाया वे गार फिरै वे गारिया सिर पहाड़ उठाया जो गुर की जन सेवा करे सो कर कै कम हर लाया मेरे राम तोड़ बंधन माया कर कै कम लाए नित हर गुण गावै हर नाम समाए रहाओ नर प्राणी चाकरी करे नरपत राजे हर सब माया कह बंदे कह डान ले कह नरपत मर जाया तन तन सेवा सबल सतगुरु की जित हर हर नाम जप हर सुख पाया नित सौदा सूद कीच बहु भांत कर माया कह ताई जा लाहा दे ता सुख मने तोटे मर जाई जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाई जितनी भूख अनरस साध है तितनी भूख फिर लागे जिस हरे आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आगे जन नानक हर रस तृप्त आ फिर भूख ना लागे गौड़ी बैरागण महला चौथा हमरे मन चित हर आस नित क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा जन प्रीत लाई सो जानता

सगल कडाके अंतरजामी, सर्व सुखा सुख साचा ए हो, गुर उपदेश मन में ले हो। जा कहो राम नाम लिव लागी, कहो नानक सो धन वड भागी। गौड़ी गुआरेरी महला पंजवा।

हर हर नाम जपत जन तारियो, अग्न सागर गुर पर उतारियो रहाओ। कर कीर्तन मन शीतल भय, जन्म जन्म के किल विख गए। सर्व निदान पेखे मन माहे, अब टूंडन काहे कौ जाए। प्रभ अपने जपै दयाल, पूर्ण होई सेव काल। बंधन काट किए अपने दास, सिमर सिमर सिमर गुणतास। एको मन एको सब ठाए, पूर्ण पूरे ओ सब जाए। गुर पूरे सब परम चुकाया, हर सिमरत नानक सुख पाया। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, अगले मोए से पाछे परे। जो उबरे से बंद लक खरे, जे तंदे मैं ओए लपटाए। उनते दुगड़ दिड़ी उन माए, ओह बेला का चीत न आवे। बिनस जाए ताहू लपटावे रहाओ। आशा बंदी मूर्ख देहे, काम क्रोध लपटे वसने हे। सिर ऊपर ठंडो धर्म राए, मीठी कर कर बिख्या खाए। हों बंदा हों साधो बैर, हमरी भूम कौन काले पैर। हों पंडित हों चतर सियाणा, करने हर न बुझै बिगाना। अपनी गत में ते आपे जानै, क्या को कह क्या आख बखान। जित जित लावै तित लगना, अपना भला सब काहू मंगना। सब किश तेरा तू करने हार, अंत नाही किश पारावार। दास अपने कौ दी जैदान, कबू ना विसरै नानक नाम। गौड़ी गुआरे री महला पंजवां, आनक जतन नहीं होत छुटारा। बहु सियाण पे अगल पारा, हर की सेवा निर्मल हेत। प्रभ की दरगह सोभा सेत, मन मेरे गहो हर नाम का उला। तुझे ना लागे ताता झोला रहाओ। जो बोहित पैसा गरमाहे, अंधकार दीपक दीपाहे। अग्न सीत का लास दुख, नाम जपत मन होव सुख। उतर जाए तेरे मन की प्यास, पूर्ण होवे सगली आस। डोले नाही तुमरा चीत, अमृत नाम जप गुरमुख मीत। नाम औखद सोई जन पावे, कर कृपा जिसे आप देवावे। हर हर नाम जाके हृदय वसै, दुख दर्द तेह नानक नसै। गौड़ी गुआरेरी महला पंजवा, बहुत दर्ब कर माना या गाना। अनक रूप देखने पतियाना, पुत्र कलत्र उर जो जान मेरी। ओ बिनसै ओ पसमै टेहरी, बिन हर भजन देखो बिल्लाते। त्रिगतन त्रिगतन माया संग्राते रहाओ। जो बिगारी कैसर दी जय दाम, ओए खसमै कै गृह उन दुख सहाम। ज्यो सुपने होए बैस्त राजा, नेत्र पसारै तन निरार्थ काजा। ज्यो राखा खेत उपर पराए, खेत खसम का राखा उठ जाए। उस खेत कारण राखा कड़ै, तिसकै पालै कछु ना पड़ै। जिसका राज तिसै का सुपना, जिन माया दीनी तिन लाई तृष्णा। आप बिनाहे आप करे रास, नानक प्रभया गए अरदास। गौड़ी गुआरेरी महला पंजवा, बहुरंग माया।

साध संकै नाही नेर, लख चौरासी ब्रह्मता फेर, एक जल फहाए पंखी, रस रस को करे बोरंगी। कहो नानक जिस पय कृपाल, गुरपुरै ताके काटे जाल। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, तौ कृपा ते मार्ग पाई है, प्रभ कृपा ते नाम ते आई है। प्रभ कृपा ते बंधन छुट है, तौ कृपा ते हम मैं तुट है। तुम लावाओ तौ लागे सेव, हम ते कछु न होवे देव रहाओ। तुद भावै ता गावा बाणी, तुद भावै ता सच बखाणी। तुद भावै ता सतगुर मया, सर्व सुखा प्रभ तेरी दया। जो तुद भावै सो निर्मल कर्मा, जो तुद भावै सो सत धर्मा। सर्व निधान

मान कर जाता। गौड़ी ग्वारेरी महल्ला पंजवा आन रसा जेते तै चाखे निमखना तृष्णा तेरी लाथे। हर रस का तू चाखे साधो चाखत होए रह बिस्माद अमृत रसना पियो प्यारी एह रस राती होए तृपतारी रहाओ। हे जेहवे तू राम गुण गाओ निमख निमख हर हर हर त्याओ आन न सुनिए कत हूं जाइए साध संगत वडभागी पाइए। आठ पहर जेहवे आराध पार ब्रह्मो ठाकरे आगाद इहां उहां सदा सुहेली हर गुण गावत रसन अमोली। बनस्पत मौली फल फुल पेडे एह रस राती बहुर ना छोड़े आन ना रस कस लवे ना लाई कहो नानक गुर पै है सहाई। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा मन मंदर तन साजी बार इस ही मदे बस्त्या पार इस ही पीतर सुनियत साहो कौन बापारी जां कहुआ विसाहो। नाम रतन को ब्योहारी अमृत भोजन करे आहारी रहाओ मन तन अर्पी सेव करी जय कवन सो जुगत जित कर पी जय।

संचारे खोजत खोजत नहीं कर पाया, अमोल रतन साज दिखलाया। कर कृपा जा मिले साहे, कहो नानक गुर कै वेसाहे। गौड़ी महला पंजवां ग्वारेरी, रैन दिन सो रहे करंगा। प्रभ को जाने सधी संगा, ठाकर नाम कियो उन वर्तन। तृप्ता गवन हर कै दर्शन, हर संग्राते मंतन हरे। गुर पूरे की सरनी परे रहाओ, चरण कमल आत्म आधार। एक निहार आज्ञाकार, एको बनजो एको व्यवहारी। अवर न जाने बिन रंकारी, हरख सोग दहूते मुक्ते। सदा अलिपत जोग हर जुगते, दिसे सब मैं सब ते रहते। पार ब्रह्म का हो ध्यान तरते, संतर की महिमा कमन बखाना। आगाध बोध किस्मत नहीं जानो, पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय। तूर संतन की नानक दी जय। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवां, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत। तू मेरा प्रीतम तुम संगहीत, तू मेरी पात।

अमृत दृष्ट संच जीवाए, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक कौ दीनी अपनी सेव रहाओ, मिट गई चिंत पुनी मन आसा, करी दया सदगुर गुणतासा, दुख नाठे सुख आए समाए, ढील ना परी जा गुर फरमाए, इच पुनी पूरे गुर मिले, नानक तेजन सफल फले, गौड़ी महला पंजवां, ताप गए पाई प्रभ सात, शीतल पए कीनी प्रभदात,

सहे सुभाए बोले हर बाणी, आठ पहर प्रभ सिमरो प्राणी। दुख दर्द जम नेड़ न आवै, कहो नानक जो हर गुण गावै। गौड़ी महला पंजवां, भले दिन स

प्रभ के चरण मन माहे ध्यान, सगल तीर्थ मजन इशनान, हर दिन हर सिमरन मेरे भाई, कोट जन्म की मन लै जाई रहाओ, हर की कथा रिद माहे बसाई, मन बाहित सगले फल पाई, जीवन मरण जन्म परवान, जा कर दै वसै भगवान, कहो नानक सही जन पूरे।

तिसनो जो है दूत धर्म राय, तिस्यो बेमुख जिन जियो पिंड दीना, कोट जन्म पर मैं बोजूना रहाओ। सागत की ऐसी है रीत, जो कुछ करे सगल विपरीत, जियो प्राण जिन मन तन धारिया, सोई ठाकर मनो बिसारिया। बदे बिकार लिखे बहु कागर, नान कुदर कृपा सुख सागर, पार ब्रह्म तेरी सरनाए, बंधन काट हरनाए। रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा, अपने लोभ को कीनो मीत, सगल मनोरथ मुक्त पादीत, ऐसा मीत करो सबको, ए जाते बिरथा कोई ना होए। रहाओ अपने स्वायर दल धारिया, दुख दर्द रोग सगल बिदारिया, रसना गिद्धी बोलत राम, पूर्ण होए सगले काम, अनक बार नानक बलिहारा, सफल दर्शन गोविंद हमारा, गौड़ी महला पंजवा। कोट बिगन हिरे खिनमाहे, हर हर कथा साध संग सुनाहे, पीवत राम रस अमृत गुण जास, जप हर चरण मिटी खोतास। रहाओ सर्व कल्याण सुख सहज निदान, जा कर दैवसै भगवान, औखद मंत्र तंत सब शार, करने हर दे मैं तार, ताज सब परम पजो पार ब्रह्म, कहो नानक टाल्यो धर्म, गौड़ी महला पंजवा। कर कृपा भेटे गुर सोई, तित बल रोग ना व्यापै कोई, राम रमण तरन पै सागर, सरन सूर फारे जमकागर। रहाओ सतगुर मंत्र दियो हर नाम, एह असर पूर्ण पय काम, जप तप संजम पूरी वड्याई, गुर कृपाल हर पय सहाई, मान मोह खोए गुर भरम, पेख नानक पसरे पार ब्रह्म। गौड़ी महला पंजवा, बिखै राज ते अंदला भारी, दुख लागै राम नाम चितारी, तेरे दास को तुही वड्याई, माया मगन नरक लै जाई। रहाओ रोग ग्रस्त चितारे नाओ, बिख माते का ठौर ना ठाओ, चरण कमर स्यों लागी प्रीत, आन सुखा नहीं आवै चीत, सदा सदा सिमरो प्रभु स्वामी, मिल नानक हरे अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा, आठ पहर संगी बटवारे, कर कृपा प्रभु ले निवारे, ऐसा हरस रमो सब कोए, सर्व कला पूर्ण प्रभ सोए। रहाओ महातपत सागर संसार, प्रभ खिन मैं पारो तारण हार, अनक बंधन तोरे नहीं जाए, सिमरत नाम मुक्त फल पाए, उगत सियानप इस्ते कछ नाहे, कर कृपा नानक गुण गाहे। गौड़ी महला पंजवा, थाती पाई हर को नाम, बिचर संसार पूर्ण सब काम, वड़ भागी हर कीर्ति।

साधु संग करो सब कोए, सदा कल्याण फिर दुख ना होए। प्रेम भगत पज गुणी निधान, नानक दरगह पाईए मान। गौड़ी महला पंजवा, जल थल महियल पूर्ण हरमीत। प्रांबिन से गाए गुणनीत, उठत सोवत हर संग पहरुआ। जाके सिमरन जमने डरुआ, रहाओ चरण कमल प्रवृदय निवास। सगल दुख का होया नास, आसा मान तान तन एक। साचे साह की मन में टेक, महागरीब जन साध्या नाथ। नानक प्रभ राखे दे हाथ, गौड़ी महला पंजवा। हर हर नाम मजन कर सूचे, कोट ग्रहण पुन फल मुचे। रहाओ हर के चरण हृदय में बसे, जन्म जन्म के किलबख नसे। साध संग कीर्तन फल पाया, जम का मार्ग दृष्ट न आया। मन बच क्रम गोविंद आधार, ताते छुट्यो बिख संसार। कर किरपा प्रभ कीनो अपना, नानक जाप जपे हर जपना। गौड़ी महला पंजवा, पौ शरण आई जिन हर जाते। मन तन शीतल चरण हर राते, पै पंजन प्रभ मना बसाही। डरपत डरपत जन बहुत जाही, रहाओ जा कर दे बस्यो हर नाम। सगम नोरथ ताके पूर्ण काम, जन्म जरा मृत जसवास। सो समरथ सिमर सास गिरास, मीत साजन।

गई ब्याद उबरे जनमीत, मन बच कर्म प्रव अपना त्याई, नानक दास तेरी सरनाई। गौड़ी महला पंजवा। नेत्र प्रगास किया गुरुदेव, परम गए पूर्ण पई सेव रहाओ, शीतलाते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी। नानक नाम जपै सो जीवै, साध संग हर अमृत पीवै। गौड़ी महला पंजवा, तान्यो मस्तक।

दर्शन देख शीतल मन भये, जन्म जन्म के किलबिख गए, कहो नानक कहां पै भाई, अपने सेवकी आपै जरखाई। गौड़ी महला पंजवा, अपने सेवको आप सहाई, नित प्रत पारे बाप जैसे माई, प्रभ की शरण उबरे सब कोए, करन करावन पूर्ण सज सोए, रहाओ आप मन बसिया करना हारा, पै बिरसे आत्म सुख सारा, कर कृपा अपने जन राखे, जन्म जन्म के किल बिखलाथे, कह ना जाए प्रभ की वडियाई, नानक दास दा सरनाई। राग गौड़ी चेती महला पंजवा, दो पदे एको अंकार सतगुर प्रसाद, राम को बल पूर्ण भाई, ताते बिरथा ना व्यापै काई, रहाओ जो जो चितवै।

नानक मांगत नाम आधारे। हरा गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कवन गुण प्राण पात मिलो मेरी माई, रहाओ रूपहीन बुद्ध बलहीनी, मोहे परदेसन दूर ते आई। नाहन दर्ब ना जोबन माती, मोहे अनाथ की करो समाई। खोजत खोजत पई बैरागन, प्रभ दर्शन कहो फिरत तसाई। दीन दयाल किरपाल प्रभ नानक, सा संग मेरी जलन बुझाई। गौड़ी महला पंजवा, प्रभ मिलबे को प्रीत मन लागी, पाए लगो मोहे करो बेनती। को संत मिलै वड भागी, रहाओ मन अर्पो तन राखो आगै। मन की मत मोहे सगल त्यागी, जो प्रभ की हर कथा सुनावै। आन दिन फिराओ तिस पिछे वैरागी, पूर्व कर्म अंकर जब प्रगटे। पेट्यो पुरख रसक बैरागी, मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक। जन्म जन्म की सोई जागी, गौड़ी महला पंजवा। निकसरे पंखी सिमर हर पांख, मिल साधु शरण गहो पूर्ण। राम रतन हियरे संग्राख, रहाओ भ्रम की कुई तृष्णा रस पंकज। आतीखण मोकी फास, काटन हार जगत गुरु गोविंद। चरण कमल ताके करो निवास, कर कृपा गोविंद प्रप्रीतम। दीना ना सुनो अरदास, कर गै लेहो नानके स्वामी। जियो पिंड सब तुमरी रास, गौड़ी महला पंजवा। हर पेखन को सिमरत मन मेरा,

करो दास दासन की अनक भांत तिस करो निहोरा। तुला तहार तोले सुख सगले बिन हर दर्श सबो ही थोरा। संत प्रसाद गाय गुण सागर जन्म जन्म को जात बहोरा। आनंद सुख पेट तहर नानक जन्म कृतार्थ सबल सवेरा। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एको ओंकार सतगुर प्रसाद। किन विद मिले गुसाई मेरे राम राय कोई ऐसा संत सह सुखदाता मोहे मार्ग दे बताई रहाओ। अंतर अलख न जाई लखिया विच पढ़दा हूं मैं पाई। माया मोहे सबो जग सोया एहो परम कहो क्यों जाई। एका संगत एकत ग्रह बसते मिल बात ना करते भाई। एक बस बिन पंच दुहेले ओ बसदा गोचर ठाई। जिसका गृह तिन दिया ताला कुंजी गुर सौ पाई। अन क्यों पाव करे नहीं पावै बिन सतगुर सरनाई। जिनके बंधन काटे सतगुर तिन साध संगत लिव लाई। पंच जना मिल मंगल गाया हर नानक भेद ना पाई। मेरे राम राय इन बिद मिले गुसाई सहज पया प्रमखिन मैं नठा। मिल ज्योति जो समाई रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा। ऐसो परचो पायो करी कृपा दयाल बीठ लै सतगुर मजै बतायो रहाओ। जात का देखो ताता तुम ही मोहे एहो विश्वास होए आयो। कै पै करो अरदास बेनती जो सुनतो है रगरायो। लयो सहसा बंधन गुर तोरे ता सदा सह सुख पायो। होना सा सोई फुन होसी सुख दुख कहां दिखायो। खंड ब्रह्मांड का एको ठाणा गुर पर्दा खोल दिखायो। नाव निद नाम निधान इकठाई तो बाहर कैठे जायो। एक कनक अनक भांत साजी बहु प्रकार रचायो। कहो नानक परम गुर खोई है इव तत् तत् मिलायो। गौड़ी महला पंजवा औद कटे दिन सरे नारे मन गुरमिल का इसवारे। रहाओ करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की वेला। इहां खाड़ चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला। एहो संसार बेकार सहसे मैं तरयो ब्रह्म ज्ञानी। जिसे जगाए पी आए हर रस अकथ कथा तिन जानी। जां को आए सोई विहा जाओ हर गुरते मने बसेरा। निज कर महल पावो सुख सहजे बहुर ना होए गो फेरा। अंतर जामी पुरख विधाते सरदा मन की पूरे। नानक दास ही सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे। गौड़ी महला पंजवा राख पिता प्रभ मेरे मोहे निर्भ

की ओटा साध संग मिट जाही, कर कृपा संत मिले मोहे, तिनते धीरज पाया, संती मंत दियो मोहे निरपो, गुर का शब्द कमाया, जीत लै ओए महा बेखादी, सहज सुहेली बाणी, कहो नानक मन पया परगासा, पाया पद निर्वाणी। गौड़ी महला पंजवा ओ अवनासी राया, निरपो संग तुम्हारे बसते, एहो डरन कहां ते आया रहाओ। एक महल तू हो हफारो, एक महल निमानो, एक महल तू आपे आपे, एक महल गरीबानो, एक महल तू प्रणत भगता, एक महल खल होता, एक महल तू सब किश ग्राहज, एक महल कशु ना लेता। काठ की पुत्री कहां करे बपरी, खिलावन हारो जाने, जैसा पिख करावे बाजीगर, ओ तैसो ही साजियाने। अनक कोठरी बहुत पात करिया, आप हुआ रखवारा, जैसे महल राखे तैसे रहना, क्या हो करे विचारा। जिन किश किया सोई जाने, जिन ए सब साजी, कहो नानक परंपर स्वामी, कीमत अपने काजी। गौड़ी महला पंजवा, छोड़ छोड़ रे बिखिया के रसुआ, उर्ज रे ओरे बावर गावर, जो किरखे हरे आयो पसुआ। रहाओ जो जाने तू अपने का जय, सो संग न चाले तेरे तसुआ, ना गोवायो नांग सदासी, फेर फिरियो अर काल ग्रसुआ। पेख पेख रेख सुंब की लीला, राच माच तिनहू लव हसुआ, शीजित डोर दिन सर रैनी, जी को काज न कीनो कछुआ। करत करत इवि बिरधानो, हार्यो उगते तनखी नसुआ, ज्यो मोयो उन मोनी बाला, उसते कटे नाही रुचसुआ। जग ऐसा मोय गुरै दिखायो, तो शरण पर्यो तज गर्भसुआ। मार्ग प्रभु को संत बतायो, दृढ़ी नानक दास भगत हर जसुआ। गौड़ी महला पंजवा,

बोले वर्ण ना साकौ तुमरे रंगा गुण निदान सुख दाते अगमै गोचर प्रभ अवनासी पूरे गुरते जाते प्रम पौ काट किए नह केवल जब ते हमें मारी जन्म मरण कौ चूको सहसा साध संगत दरसारी चरण पखार करो गुर सेवा बार जाओ लख बरिया जे प्रसादे पौ जल तरिया जन नानक प्रिय संग मिरिया गौड़ी महला पंजवा तुझ बिन कमनरी जावै तो ही तेरो रूप सगल देख मोही रहाओ सुर्ग पयाल मृत पू मंडल सर्व समानो एक ओही शिव शिव कर तो सगल कर जोरै सर्व माया ठाकर तेरी दोही पतत पावन ठाकर नाम तुमरा सुखदाई निर्मल

शरण पर्यो ठाकुर वजीरा, तिना देख मेरा मन तीरा। एक टेक एको आधारा, जन नानक हर की लागा कारा। गौड़ी महला पंजवा, है कोई ऐसा हो मैं तोरे, इस मीठी ते हो मन हो रै रहाओ। अज्ञानी मानख पाया, जो नाही सो लो रै। रैन अंधारी कारिया, कवन जुगत जित पोरे। प्रम तो हारिया, अनक विधि कर टोरे। कहो नानक कृपा पई, साध संगत निध मोरे। गौड़ी महला पंजवा, चिंता मन करना मैं रहाओ। दीन दयाला पार ब्रह्म, जा कै सिमरन सुख पए। अकाल पुरख अगाध बोध, सुनत जसो कोट अग खए। कृपा नित प्रमया तार, नानक हर हर नाम ले। गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए। जा दिन बिसरे प्राण सुखदाता, सो दिन जात आ जाए रहाओ। एक रैन के पाहुन तुम आए, बोजुग आस बधाए। गृह मंदिर संपै जो दिसे, जो तरवर की शाए। तन मेरा संपै सब मेरी, बाग मिलक सब जाए। देवनहारा बिसरो ठाकरो, खिर मैं होत पर आए। पहरे बागा कर इशनाना, चोवा चंदन लाए। निरपो निरंकार नहीं चीनिया, ज्यो हस्ती ना वाए। जौ होए कृपाल, ता सतगुर मिले, सब सुख हर के नाए। मुक्त पाया बंधन गुर खोले, जन नानक हर गुण गाए। गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन गुर गुर गुर सद करिए। रतन जन्म सफल गुर किया, दर्शन को बलिहारिए रहाओ। जेते सास ग्रास मान लेता, तेते ही गुण गाइए। जा होए दयाल सतगुर अपना, ताए मत बुद्ध पाइए। मेरे मन नाम लय जम बनते छूटे, सर्व सुखा सुख पाइए। सेव स्वामी सतगुर दाता, मन वंचित फल आइए। नाम इष्ट मीत सुत करता, मन संग तुहारे चाले। कर सेवा सदगुर अपने की, गुरते पाइये पाले। गुर कृपाल कृपा प्रभ तारी, बिन से सर्व अंदेसा। नानक सुख पाया हर कीर्तन, मिट्यो सगल कलेसा। राग गौड़ी महला पंजवा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। तृष्णा बिरले ही की बुझी है रहाओ, कोट जोरे।

बदे बेकार नरक सुर्ग दोए पुंच ना होए बहुर बहुर अवतार। शिवपुरी ब्रह्म इंद्रपुरी निचल को थाओ नाहे बिन हर सेवा सुख नहीं हो साक्त आवे जाहे। जैसो गुर उपदेसया मैं तैसो कहया पुकार। नानक कह सुन रे मना कर कीर्तन होए उदार। राग गौड़ी माला महला पंजवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद पायो बाल बुद्ध सुख रे हरख सोग हान मृत। दुख सुख चित समसर गुर मिले रहाओ। जाओ लाओ हाँ के सोचो चितवाओ तौ लाओ दुखन भरे। जाओ कृपाल गुर पूरा भेटिया तौ आनंद सहजे। जेती सियानप कर्म हों किए ते बंद परे। जो साधु कर्म

क्या किश करै के करण हारा, क्या इस हाथ बिचारे जित तुम लावो तित ही लागा, पूरन खसम हमारे। करो कृपा सर्ब के दाते, एक रूप लिव लावो, नानक की बेनंती हर पह अपना नाम जपावो। राग गौड़ी माज महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दीन दयाल द मुद्र राया जियो, कोट जना कर सेव लगाया जियो, भगत वछल तेरा बिरद रखाया जियो, पूर्ण सबनी जाई जियो। क्यों पेखा प्रीतम कवन सुकरणी जियो, संता दासी सेवा चरणी जियो। एहो जियो बताई बल बल जाई जियो, तिस निम निम लागों पाई जियो। पोथी पंडित बेद खो जनता जियो, होए बैरागी तीर्थ नावंता जियो। गीत नाद कीर्तन गावंता जियो, हर निरपौ नाम ते आई जियो। पए कृपाल स्वामी मेरे जियो, पत तपवित लग गुर के पैरे जियो, भ्रमपो काढ़ किए निर्वैरे जियो, गुरमन की आस पुराई जियो। जिन नाव पाया सो तनवंता जियो, जिन प्रभ त्याया सो सोभावंता जियो। जिस साधु संगत ते सब सुकरणी जियो, जन नानक सहि समाई जियो। गौड़ी महला पंजवा माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो, रहन दिन सो सास सास चितारे जियो। संत देव संदेसा पै चरणारे जियो, तुद बिन कित बिन तरिए जियो। संग तुम्हारे मैं करे आनंदा जियो, वन त्रिण त्रिपावन सुख परमानंदा जियो। से सुहावी ओ मन बिकसंदा जियो, पेख दर्शन ओ सुख लइए जियो, चरण पखार करी ने सेवा जियो। पूजा अर्चा बंदन देवा जियो, दासन दास नाम जप लेवा जियो, बिनो ठाकर पै कही है जियो। इच्छ पुन्नी मेरी मंतन हरिया जियो, दर्शन पेख तो सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप तरिया जियो। एहो अजर नानक सुख सही है जियो, गौड़ी माज महला पंजवा। सुन सुन साजन मन मेरे

एक अस्थिर मन अचरज लख्यो ना जाई रहाओ। काम क्रोध मोह बस प्राणी हर मूर्त बिसराई। झूठा तन साचा कर मान्यो ज्यो सुपना रहनाई। जो दिसै सो सगल बिनासै ज्यो बादर की शाई। जन नानक जग जान्यो मिथ्या रहयो राम सरनाई। गौड़ी महला नावा प्राणी को हर जस मन नहीं आवे। अहनिस मगन रह माया मैं कहो कैसे गुण गावे। रहाओ पूत मीत माया ममता स्यों एह विद्या बंधावे। मृग तृष्णा ज्यो झूठो एहो जग देखता से उठतावे। भुगत मुक्त का कारण स्वामी मूड ताहे बिसरावे। जन नानक कोटन में को भजन राम को पावे। गौड़ी महला नावा साधो एहो मन गहयो ना जाई। चंचल तृष्णा संग बस्त है या ते थिर ना रहाई। रहाओ कठन क्रोध कठी के पीतर जेह सुध सब बिसराई। रतन ज्ञान सब को हिरलीना तासों कछना बसाई। जोगी जतन करत सब हारे गुनी रहे गुन गाई। जन नानक हर पय दयाला तो सब बिद बने।

पतत पुनीत दीन बंद हर शरण ताहे तुम आवो। गज को त्रास मिट्यो जे सिमरत तुम काहे बिसरावो। तज अब महान मोह माया फुन भजन राम चित लावो। नानक कहत मुक्त पंथ एहो गुरमुख होए तुम पावो। गौड़ी महला नावा को माई भूल्यो मन समझावै। वेद पुराण साध मग सुन करो निमख ना हर गुण गावै रहाओ। दुर्लभ देहे पाए मानस की वृथा जन्म सिरावै। माया मोह महासंकट बानो तासो रुच उपजावै। अंतर बाहर सदा संग प्रभु तासो नेहो ना लावै। नानक मुक्ताहे तुम मानो जेकट राम समावै। गौड़ी महला नावा साधो राम सरन बिसरामा। वेद पुराण पढ़े को एहो गुण सिमरे हर को नामा रहाओ। लोभ मोह माया ममता फोन औ बिखियन की सेवा। हरख सोग परसै जेह नहन सो मूर्त है देवा। स्वर्ग नरक अमृत बिख ए सब त्यों कंचन अर पैसा। उस्तत निंदा ए समझा कै लोभ मोह फुन तैसा। दुख सुख ए दे जे नहन तेह तुम जानो ज्ञानी। नानक

नील अनिल अग्न इकठाई, जल निवरी गुर बुझ बुझाई, मन दे लिया रहस गुण गाई। जैसा घर बाहर सो तैसा, बैस गुफा मैं आखो कैसा, सागर डूगर निरपो वैसा। मुवे कहो कहो मारे कौन, निडरे कहो कैसा डर कवन, शब्द पछाने तिन्ने पौन। जिन कहया तिन कहन वखानिया, जिन बुझिया तिन सहज पछानिया, देख विचार मेरा मन मानिया। कीर्त सूरत मुक्त एक नाई, तही निरंजन रया समाई, निज कर व्याप रया निठाई। औसत करह केते मुन प्रीत, तन मन सूचे साच सोचीत, नानक हर पज नीता नीत। गौड़ी गुआरेरी महला पहला, ना मन मरे ना कार्ज होए, मन वस दूता दुरमत दोए, मन माने गुर ते एक होए। निर्गुण राम गुणे वस होए, आप निवार बिचारे सोए रहाओ। मन भूलो बहुचते विकार, मन भूलो सिर आवे भार, मन माने हर एक अंकार। मन भूलो माया कर जाए, काम विरुद्ध रह ना ठाए, हर पज प्राणी रसन रसाए। गैवर हैवर कंचन सुतनारी, बहु चिंता पड़ चल हारी, जुए खेलन काची सारी, संपो संची पए विकार, हरक सोक उबे दरबार। सुख सहजे जपरदे मुरार, नगर करे ता मेल मिलाए, गुण संग्रह अवगुण शब्द जलाए।

तृष्णा यगनो शब्द बुझाए, दूजा परम सहि सुभाए, गुरमति नाम हृदय वसाए, साची बाणी हर गुण गाए, तन मैं साचो गुर

काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे, जरा मरण गत गर्भ निवारे, आप तरह पितरी निस्तारे, सतगुर सेवे सो जोगी होए, पैरच रह सो निरप होए, जैसा सेवै तैसो होए, नर नह केवल निरपौ नाउ, अनाथ है नाथ करे बल जाओ, पुनरप जन्म नाहीं गुण गाओ, अंतर बाहर एको जाने, गुर कै शब्दे आप पछाणे, साचै शब्द उदर निशाणे, शब्द मरै तिस निज कर वासा, आवै ना जावै चूकै आसा, गुर कै शब्द कमल परगासा, जो दिसै सो आस निरासा, काम क्रोध बिख भूख प्यासा, नानक बिरले मिलै उदासा, गौड़ी महला पहला, ऐसो दास मिले सुख होई, दुख विसरै पावै सच सोई, दर्शन देख पई मत पूरी, अड़सठ मज्जन चरण धूरी रहाओ, नेत्र संतोखे एक लिव तारा, जेवा सूची हर सारा, सच करनी अवे अंतर सेवा, मंत्र तासिया अलख भेवा, जै जै देखो तैं तैं साचा, बिन बूझे झगड़त जग काचा, गुरसम जावै सोजी होई, गुरमुख विरला बूझे कोई, कर कृपा राखो रखवाले, बिन बूझे पशु पहे बेताले, गुर कहया अवर नहीं दूजा, किसको देख करो अनपूजा, संत हेत प्रभ तरपवन धारे, आत्म चीनै सो तत् बिचारे, साच हृदय सच प्रेम निवास, प्रणवत नानक हम ताके दास, गौड़ी महला पहला, ब्रह्म गर्भ किया नहीं जानिया, वेद की बिपत पड़ी पछतानिया, जय प्रभ सिमरे तही मन मानिया, ऐसा गर्भ बुरा संसार है, जिस गुर मिले तिस गर्भ निवारै,

देवै दुर्मत हर नाकस दुराचारी प्रभ नारायण गर प्रहारी प्रहलादो धारे कृपा तारी भूलो रावण मुगदया चेत लुकी लंका लूटी लंका सी समेत गर्भ गया बिन सतगुर हेत सहस बाहो मद कीट मैं खासा हर नाक छले नखो बिदासा दैत संघारे बिन भगत अभ्यासा जरा संद काल जमन संघारे रक्त बीज काल नेम बिदारे दैत संघार संत निस्तारे आपे सतगुर शब्द विचारे दूजे पाए दै संघारे गुरमुख साच भगत निस्तारे बूढ़ा दुर्योधन पत खोई राम ना जान्या करता सोई जन को दुख पचै दुख होई जन में जय गुर शब्द ना जान्या क्यों सुख पावै परम पुलान्या एक तिल भूले बहुर पछतान्या कंस केस चांडूर ना कोई राम ना चीन्या अपनी पत खोई बिन जगदीश ना राखै कोई बिन गुर गर्भ ना मेटिया जाए गुरमुख गुरमत धर्म तीर जहर नाए नानक नाम मिलै गुण गाए गौड़ी महला पहला चोवा चंदन अंक चढ़ावो पाठ पटंबर पहर हंडावो बिन हर नाम कहां सुख पावो क्या पहरा

लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहां सुख पाला, नैन सलोनी सुंदर नारी, खोड सिंगार कर अत प्यारी, बिन जगदीश भजे नित खुआरी, दर कर मैला से सुखाली, एहनस फूल बिछावै माली, बिन हर नाम सो दे दुखाली, हैवर गैवर नेजे वाजे, लश्कर नेव खवासी पाजे, बिन जगदीश झूठे दे वाजे, सिद्ध कहावाओ रिद सिद्ध बुलावाओ, ताज कुलै सिर छतर बनावाओ, बिन जगदीश कहां सच पावाओ, खान मलूक कहावाओ राजा, अबे तबे कूड़े है पाजा, बिन गुर शब्द ना सबर सकाजा, हो मैं ममता गुर शब्द विसारी, गुरमत जानिया हृदय मुरारी, प्रणवत नानक शरण तुम्हारी, गौड़ी महला पहला, सेवा एक ना जान सियावरे, परपंच ब्या त्या गै कवरे, पाए मिलै सच सच है सच रे, ऐसा राम भगत जन होई, हर गुण गाय मिलै मल धोई रहाओ, ऊंदो कवल सगल संसार है, दुर्मत यगन जगत पर जा रै, सो उबरै गुर शब्द विचार है, प्रेंग पतंग कुंचरियार मीना, मिर्ग मरै सह अपना कीना, तृष्णा राच तत नहीं बीना, काम चितै कामण हितकारी, क्रोध विनाशै सगल विकारी, पत मत खोवै नाम विसारी, पर कर चीत मन मुख डोलाए, गल जेवरी तंदै लपटाए, गुरमुख छूट सहर गुण गाए, ज्यों तन विधवा पर कौ देई, काम दाम चित पर वसेई, बिन पिर तृप्त ना कबहू होई, पढ़ पोथी सिमरत पाठा, वेद पुराण पढ़ै सुन थाटा, बिन रस राते मन बहु नाटा, ज्यों चात्रक जल प्रेम प्यासा, ज्यों मीना जल माहे उलासा, नानक हर रस पी तृपतासा, गौड़ी महला पहला, हठ कर मरे ना लेखे पावे, वेश करे बहु पसम लगावे, नाम विसार बहुर पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सुख, नाम विसार सह जम दुख रहाओ, चोवा चंदन अगर

वाद अहंकार नाहीं प्रमेला, मंदे पावे नाम सोहेला, दूजे पाए अज्ञान दुहेला, बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोए

तिसको वाहो वाहो जे मेल मिलावै, वाहो वाहो तिसको जिसका एहो जियो, गुरसबदी मथे अमृत पियो, नाम वडाई तुद भाणै दियो। नाम बिना क्यों जीवा माए, आन दिन जपत रहो तेरी सरनाए, नानक नाम रते पत पाए, गौड़ी महला पहला। हाँ मैं करत पेखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत विरले मन मानिया, हाँ हाँ करत नहीं सच पाई है, हाँ मैं जाए पर...

सुल्तान खान बादशाह नैरना, नामो पूले जमका दुख सहना, मैं तर नाम ज्यो राखो रहना। चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम, सह मरे संचय माया दाम, मैं तन दीजे हरि अमृत नाम। रैयत मेहर मुकदम सिकदार, निश्चल कोय ना दिसे संसार, अफर्यो काल कूड सिर मारे। निश्चल एक सच्चा सज सोई, जिन कर साजी तने सब गोई, ओ गुरमुख जापै ता पत होई। काजी सेख पेख फकीरा, वड्डे कहावै हम मैं तन पीरा, काल ना छोड़ै बिन सतगुर की तीरा। काल जाल जिहवा यार नैनी, कानी काल सुनै बिख बैनी, बिन सबदै मूठै दिन रैनी, हृदय साच वस्या हर नाए, काल न जोहे सकै गुण गाए, नानक गुरमुख शब्द समाए। गौड़ी महला पहला, बोलै साच मिथ्या नहीं राई, चालै गुरमुख हुक्म रजाई, रह अतीत सच्चे सरनाई। सच कर बैसै काल न जो है, मनमुख कौ आवत जावत दुख मोह। रहाओ अपियो पियो अकथ कथ, अकथ कथ रही है, निज कर बैसो सहज कर लही है, हर रस माते ओ सुख कही है, गुरमत चालो निचल नहीं डोलै। गुरमत साच सहज हर बोलै, पीवै अमृत तत् विरोलै, सतगुर दीख्या दीख्या लीनी। मन तन अर्प्यो अंतरगत कीनी, गत मित पाई आत्म चीनी, भोजन नाम निरंजन सार, परमहंस सच ज्योतिया पार। जय देखो तह एक ओंकार, रह निरालम एका सच करनी, परम पद पाया सेवा गुरचरणी। मन ते मन मानिया चुकी अहम ब्रह्मणी, इन बिद कौन कौन नहीं तारिया, हर जस संत भगत निस्तारिया। प्रभ पाए हम अवर ना पारिया, साच महल गुर अलख लखाया, निहचल महल नहीं छाया माया। सासन दुखे परम चुकाया, जिनकै मन वसिया सच सोई, तिनकी संगत गुरमुख होई। नानक साच नाम मल खोई, गौड़ी महला पहला, राम नाम।

गुरमत नाम ना विसरै सहजे पद पाईऐ अंतर सब निधान है मिले आप गवाईऐ नदर करे प्रवे अपनी गुण अंक समावै नानक मेल ना चूकई लाहा सच पावै गौड़ी महला पहला गुर प्रसादी बूझले तो होए नबेरा कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा बिन गुर शब्द ना छूटिया देखो विचारा जेला कर्म कमावही बिन गुर अंधियारा रहाओ अंधे अकली बाहरे क्या तिन स्यों कहिए बिन गुर पंथ ना सूझई कित बिद नर बहिए खोटे को खरा कह खरे सार ना जाने अंधे का नाव पारखू कली काल विडाने सूते कौ जागत कह जागत कौ सूता जीवत कौ मुआ कह मुए नहीं रोता आवत कौ जात

चेरी की सेवा करे ठाकर नहीं दिसे, पोखर नीर विरुलिये मखन नहीं रिसे। इस पद जो अर्थ आए ले सो गुरु हमारा, नानक चीना है आपका सो अपरियापारा। सब आपे आप वरदा आपे परमाया, गुर कृपा ते बुझिया सब ब्रह्म समाया। अरा गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, अष्टपदिया एको अंकार सतगुर प्रसाद। मन का सूतक दूजा पाओ, परमे पूले आवो जाओ। मन मुख सूतक कबे ना जाए, जिचर शब्द ना पीजे हर कह नाए रहाओ। सबो सूतक जेता मोहवाकार, मर मर जमे वारो वार। सूतक अगन पौने पानी माहे, सूतक भोजन जेता किश खाहे। सूतक करमन पूजा होए, नाम रते मन निर्मल होए। सतगुर सेवे सूतक जाए, मरे न जन्मे काल ना खाए। सास्त सिमरत सो देखो कोए, विण नामे को मुक्त ना होए। जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कल मैं गुरमुख उत्तर सपार। साचा मरे ना आवे जाए, नानक गुरमुख रहे समाए। गौड़ी महला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण आधारा। हर जियो राखो हृदय उर तारा, गुरमुख शोभा साज दुबारा। पंडित हर पड़त जो विकारा, गुरमुख पौज उतरो पारा। रहाओ गुरमुख विचो मैं जाए, गुरमुख मैल ना लग आए। गुरमुख नाम वसे मन आए, गुरमुख कर्म तर्म सच होई। गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुख होई। अपना मन पर बोधो बूझो सोई, लोग समझावो सुने ना कोई। गुरमुख समझो सदा सुख होई। मन मुख डंफ बहुत चतराई, जो किश कमावे सो थाए ना पाई। आवे जावे ठौर ना काई, मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना। बग ज्यो लाए बह नित्याना, जम पकड़िया तब ही पछताना। बिन सतगुरु सेवे मुक्त ना होई, गुर प्रसादी मिले हर सोई। गुरदाता जुग चारे होई, गुरमुख जात पात नामे वड़ियाई। सायर की पुत्री बिदार गवाई, नानक बिन नामे झूठी चतराई। गौड़ी महला तीजा, इस जोका धर्म पढ़ो तुम पाई। पूरे गुरसब सो जी पाई, एथे अगे हर नाम सखाई। राम पढ़ो मन करो बिचार, गुर प्रसादी मैं लियो तार। रहाओ वाद विरोध ना पाया जाए, मन तन फीका दूजे पाए। गुर कै शब्द सच लिवलाए, हाँ मैं मैला एहो संसारा। नित तीर्थ नावे ना जाए हंकारा, बिन गुर पेटे जम करे खुवारा। सोजन साचा जे हों मैं मारे, गुर कै शब्द पंच संघार। आप तरे सगले कुल तारे, माया मोहे नट बाजी पाई। मनमुख अंध रहे लपटाई, गुरमुख लिबत रहे लिवलाई। बहुते पेख करे पेख तारी, अंतर तिसना फिरे हंकारी। आप ना चीने बाजी हारी, कापड़ पहर करे चतराई।

मन करहला गुर गोविंद समाल रहाओ, मन करहला विचारिया मनमुख पाथिया महाजाल, गुरमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम समाल। मन करहला मेरे प्यारिया सत्संग सतगुर पाल, सत्संगत लग हर त्याई है हर हर चले तेरे नाल। मन करहला वडभागिया हर एक नदर निहाल, आप छडाए छुट्टिया सतगुर चरण समाल। मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत समाल, गुरनाम नद नाम विखालिया हर दात करी दयाल। मन करहला तू चंचला चतराई छड विकराल, हर हर नाम समाल तू हर मुक्त करे अंतकाल। मन करहला वडभागिया तू ज्ञान रतन समाल, गुर ज्ञान खड़ग हथ धारिया जम मारियाड़ा जमकाल। अंतर निदान मन करहले ब्रह्म पवै बाहर पाल, गुरपुरख पूरा भेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल। रंग रतड़े मन करहले हर रंग सदा समाल, हर रंग कदे न उतरै गुर सेवा शब्द समाल। हम पंखी मन करहले हर तरवर पुरखिया काल, वडभागी गुरमुख पाया जन नानक नाम समाल। राग गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा अष्टपदियां एक ओंकार, सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। जब एहो मन मैं करत गुमाना तब यो बावर फिरत बेगाना, जब एहो हुआ सगल कीरीना ता तेर मैया कटकट जीना। सहज सोहेला फल मस्कीनी सतगुर अपने मोहे दान दीनी, रहाओ जब किस को एहो जान समंदा तब सगले इस मेले फंदा। मेर तेर जब इन चुकाई ताते इस संग नहीं बैराई, जब इन अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल भारी। जब इन करने हर पिछाता तब इसनो नाही किश्ताता, जब इन अपनो बांध्यो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा। जब इसते सब बिन से परमा भेद नहीं है पार ब्रह्मा, जब इन किस कर्मा ने पेदा तब ते दुख डंड अरखेदा। जब इन एको एकी बुझिया तब ते इसनो सबके सूझिया, जब एहो तावे माया अर्थी न तृप्तावे न तसलाथी। जब इसते एहो यो जौला पीछे लाग चली उठ कौला, कर कृपा जो सतगुर मिलियो मन मंदिर में दीपक जलियो। जीत हार की सोजी करी तो इस कर की कीमत परी, करन करावन सब किसे कै आपे बुद्ध विचार बबे कै। दूर ना नेरे सब कै संगा सालाहनो नानक हर रंगा, गौड़ी महला पंजवा गुरसेवा ते नामे लागा, तिसको मिलिया जिस मस्तक पागा। तिसके हृदय रविया सोए मन तन सीतन निचल होए, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे इहां उहां जो काम तेरे रहाओ। जास जपत पौ अपदा जाए तावत मनुआ आवे ठाए, जास जपत फिर दुख ना लागे जा जपत हम मैं पागे। जास जपत वसिया वै पंचा, जास जपत हृदय अमृत संचा। जास जपत एह तृष्णा बुझै, जास जपत हर दरगह सजै। जास जपत कोट मिटै अपराध, जा जपत हर होवै साध। जास जपत मन शीतल होवै, जास जपत मल सगली खोवै। जास जपत रतन हर मिलै, बहुर न छोड़ै हर संग हिलै। जास जपत कई बैकुंठ वास, जा जप सो सहज निवास। जास जपते अग्न पोहत, जास जपते काल ना जोहत। जास जपत तेरा निर्मल माथा, जास जप सगला धुलाता। जास जपत मुश्किल कछु ना बने, जास जप सुन अनहत तुने। जास जपते निर्मल सोए, जास जपत कमल सीधा होए। गुर सुख दृष्ट सब ऊपर करी, जिसके हृदय मंत्र दे हरी। अखंड कीर्तन तन पूजन चूरा, कहो नानक जे सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा गुर का शब्द हृदयंतर धार है, पंच जना स्यो संग निवार है। दस इंद्री कर रखे वास, ताकै आत्मै होए परगास।
ऐसी दृढ़ता ता कह होए, जा को दया मया प्रभ सोए रहाओ। साजन दुष्ट जा कै एक समान, जेता बोलन तेता ज्ञान है,

आपे लायो अपना प्यार, सदा सदा तिस गुर का करी नमस्कार। कल कलेश पै भ्रम दुख लाथा, कहो नानक मेरा गुर समराथा।

नाम बिना जो पहरै खाए, जो कुकर जूठन में पाए। नाम बिना जेता व्यवहार, जो मृतक मिथ्या सिंगार। नाम विसार करे रस भोग, सुख सुपने नहीं तन में रोग। नाम त्याग करे अनकाज, बिरस जाए झूठे सब पाज। नाम संग

पचमयो मोहन नाम सदा रव रहयो कोट मध्य कने गुरमुख लयो हर संतन कर नमो नमो नौ निध पावे अतुल सुखो नैन अलोबो साध जनो हृदय गावो नाम निदो काम क्रोध लो मोह तजो जन्म मरण दो ते रहयो दुख अंधेरा करते मिटयो गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलयो जिन सेव्या सो पार परयो जन नानक गुरमुख जगत तरयो महला पंजवा गौड़ी हर हर गुर गुर करत भरम गए मेरा मन सब सुख पायो रहाओ बल तो जल तो तौकिया गुर चंदन सीत लायो अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर ज्ञान दी पायो पावक सागर गहरो चर संतन नाम तरायो ना हम कर्म ना धर्म सोच प्रभ गह पूजा अपायो पाओ खंडन दुख भंजनो भगत वच्छल हर नायो अनाथ नाथ कृपाल दीनो समरथ संत ओटायो निर्गुणिया रे की बेनती देहो दर्स हर रायो नानक शरण तुहारी ठाकुर सेवक द्वार आयो गौड़ी महला पंजवा अरंग संग बिखिया के पोगा इन संग अंध ना जानी हों संचो हों खाड़ता सगली अवध बिहानी रहाओ हों सूरा प्रदान हो को नाही मुझे समानी जो बनवंत्या चार कुलीना मन में होए गुमानी ज्यो उलझायो बाद बुद्ध काम रत्या नहीं बिसरानी भाई मीत बंद पसखे पाचे तिन्हू कौ संपानी जित लागो मन बसना अंत साई प्रगटानी अहम बुद्ध सोच कर्म कर ए बंधन बंधानी दयाल पुरख कृपा करो नानक दा दसानी जुमला एक ओवंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद राग गौड़ी पूर्वी संत महला पहला मुंद रहन दुहेलड़िया जियो नींद ना आवै सा तन दुबलिया जियो पिर कह हावै तन थी दुबल कंत हावै केव नैनी देखै सिंगार मिठ रस भोग भोजन सब झूठ कतै ना लेखै मैं मत जोबन गर्भ गाली दुधा थनी ना आवै नानक सातन मिले मिलाई बिन पर नींद ना आवे मुंद निमानड़िया जियो बिन तनी प्यारे क्यों सुख पावेगी बिन उरतारे नाहा बिन कर वास नाही पुछो सखी सहेलिया बिन नाम प्रीत प्यार नाही वसै सास सुहेलिया सच मन सज्जन संतोख मेला गुरमती सहु जानिया नानक नाम ना छोड़ै सा तनु नाम सहि सुमानिया मिल सखी सहेलड़ी हो हम पिर रावेहा गुर पिछ लिखोगी जियो शब्द स्नेहा शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछताणिया निस जातो रह अस्थर जाम सच पछाणिया साच कीमत सदा नौतन शब्द नहो नवेलो नानक नगरी सहज साचा मिलो सखी सहेलियो मेरी इच पुन्नी जियो हम कर साजन आया मिलवर नारी मंगल गाया गुण गाए मंगल प्रेम रैसी मुंद मन यो माहो साजन रहंसे दुष्ट व्यापे साच जप सच लाहो कर जोड़ सातन करे बिनती रैन दिन रस पिनिया नानक पिरतन करे रलिया इच्छ मेरी पुनिया गौड़ी संत महला पहला सुन नहा प्रभु जियो एकलड़ी बनमा है क्यों तीरेगी ना बिना प्रवे प्रवाहे तन ना बाजो रह ना सके बिखम रैन कनेरिया नह नींद आवै प्रेम भावै सुन बेनंती मेरी आ बाजो प्यारे कोई ना सारे एकलड़ी कुर लाए नानक सातन मिले मिलाई बिन प्रीतम दुख पाए पिर छोड़ी आड़ी जियो कमन मिलावै रस प्रेम मिली जियो शब्द सुहावै शब्दे सुहावै।

सुन सखी सहेली सा सुहेली साचे के गुण सार है सतगुर मेली ता प्रावी बिकसी अमृत बाणी नानक सातन ता प्रावे जा तिसकै मन पाणी माया मोहनी नी करिया जियो कूड़ मुठी कूड़ियारे क्यों खूले गल जे वड़ा जियो बिन गुर अत प्यारे हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे तिस ही का सो होवै पुन दान्या नेक नावन क्यों अंतरमल तोवै नाम बिना गत कोई न पावै हठ निग्रह बेबाण नानक सच कर शब्द सियापै दुबदा महल के जाने तेरा नाम

भगत लाहा अन दिनो तिस बाज वखर कोई ना सूजै नाम ले वो खिन खिनो परख लेखा नदर साची करम पूरे पाया नानक नाम महारस मीठा गुरपुरे सच पाया राग गौड़ी पूर्वी संत महला तीजा एक ओवंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद सात अन बिनो करे जियो हर के गुण सारे खिनपन रह ना सके जियो बिन हर प्यारे रह ना सके गुर बिन मैल ना पाईए जो गुर कहे सोई पर की जय तिसना यगन बुझाइए हर साचा सोई तिस बने अवर ना कोई बिन सेवे सुख ना पाए नानक सातन मिले मिलाई जिसनो आप मिलाए तन रहन सोहेलड़िए जियो हर स्यो चित लाए सतगुर सेवे पाओ करे जियो विचों आप गवाए हर गुण गाए अंदन लागा पाओ सुन सखी सहेली जी की मेली गुर कै शब्द समाओ हर गुण सारी ता कंत प्यारी नामे तरी प्यारो नानक कामन ना प्यारी राम नाम गलहारो तन एकलड़ी जियो बिन नहा प्यारे दूजे पाए मुठी जियो बिन गुर शब्द करारे बिन शब्द प्यारे कौन दुत्तर तारे माया मोहे खुआई कूड़ वि गुत्ती ता फिर मुत्ती सातन मैल ना पाई गुरशब्दे राती सहजे माती आंदन रहे समाए नानक कामन सदा रंगराती हर जियो आ मिलाए ता मिलिया हर मेले जियो हर बिन कवन मिलाए बिन गुर प्रीतम अपने जियो कौन परम चुकाए गुर परम चुकाए इं मिलिए माए ता सा तन सुख पाए गुर सेवा बिन कोरे अंधार बिन गुर मग न पाए काम

पानी अन्न ना पावे मरिए हावे, बिन पर क्यों सुख पाई है। गुर आग्या करो बिनंती जे गुर पावे, जो मिले तवें मिलाई है। आपे मिल लए सुखदाता आया मिलिया कर आए, नानक कामन सदा सुहागणो ना पिर मर न जाए। गौड़ी महला तीजा कामन हर रस बेदी जियो, हर कै सह सुभाए मन मोहन मोहे लिया जियो। दुबदा सह सुमाए दुबदा सह सुमाए, कामन वर पाए गुरमती रंग लाए। एह शरीर कुड़ एह एक शरीर कूड़ कसत भरिया, गलत आई पाप कमाए। गुरमुख भगत जित सहित न उपजै, बिन भगती मैल न जाए। नानक कामन प्रै प्यारी विचों आप गवाए, कामन पिर पाया जियो गुर कै पाए प्यारे। रैन सुख सुती जियो अंतर उर तारे, अंतर उर तारे मिलिए प्यारे। आन दिन दुख निवारे अंतर महल पर रावे, कामन गुरमती विचारे। अमृत नाम पिया दिन राती दुबदा मार निवारे, नानक सच मिली सोहागण गुर कह त्या पारे।

राम नाम वा पाराग मैं अपारा गुरमती तन पाई है सेवा सुरत भगते साची विचों आप गवाई है। हम मतहीन मूर्ख मुग्ध अंधे सतगुर मार्ग पाए नानक गुरमुख शब्द सुहावे अंधन हर गुण गाए। आप कराए करे आप जियो आपे शब्द सवारे आपे सतगुर आप शब्द जियो जो जुग भगत प्यारे जो जुग भगत प्यारे हरे आप सवारे आपे भगती लाए आपे दाना आपे बीना आपे सेव कराए। आपे गुण गाता गुण काटे हृदय नाम वसाए नानक सत बलिहारी सच्चे विटों आपे करे कराए। गौड़ी महला तीजा गुर की सेवा कर पिराजियो हर नाम ते आए मन्यो दूर ना जाहे पिराजियो घर बैठिया हर पाए घर बैठिया हर पाए सदा चित लाए सहजे सत सुभाए। गुर की सेवा खरी सुखाली जिसनो आप कराए नामो बीजे नामो जमे नामो मन वसाए नानक सच नाम वड्याई पूर्व लिखिया पाए। हर का नाम मीठा पिरा जियो जा चाख है चित लाए रसना हरस चाख मुइये जियो आन रस साध गवाए। सदा हर रस पाए जा हर पाए रसना शब्द सुहाए नाम ते आए सदा सुख पाए नाम रह लिवलाए। नामे उपजे नामे बिरसै नामे सच समाए नानक नाम गुरमती पाईऐ आपे लै लवाए। एह वडाणी चाकरी पिरा जियो तन छोड़ परदेस सिधाए दूजे किने सुख ना पायो पिरा जियो बिख्या लोभ लुभाए। बिख्या लोभ लुभाए परम पुलाए ओह क्यों कर सुख पाए चाकरी वडाणी खरी दुखाली आप विच धर्म गवाए। माया बंधन टिकै नाही खिन खिन दुख संताए नानक माया का दुख तदे चूकै जां गुर शब्दी चित लाए। मन मुख मुग्ध गवार पिरा जियो शब्द मन ना वसाए। माया का परम अंध पिरा जियो हर मार्ग क्यों पाए क्यों मार्ग पाए बिन सतगुर पाए मन मुख आप गणाए। हर के चाकर सदा सुहेले गुर चरणी चित लाए जिसनो हर जियो करे कृपा सदा हर के गुण गाए। नानक नाम रतन जग लाहा गुरमुख आप बुझाए। राग गौड़ी संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन बै राग भया जियो क्यों देखा प्रभ दाते मेरे मीत सखा हर जियो गुरपुरख बिदाते। पुरखो बिदाता एक श्री तार क्यों मिले तुझे ओडीणिया कर करे सेवा शीस चरणी मन आस दर्शन माणिया। सास आसना

फिर दोष नाही सुख दाते हाँ विछड़ी बुरे आरे बिनवंत नानक दया धारो कर आवो ना प्यारे। हाँ मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा हाँ सिर अर्पी तस्मित प्यारे जो प्रभ दे संदेसा अर्पया ता शीस सुथान गुर पै संग प्रभु देखाया खिन माहे सगला दुख मिटिया मनो चिंदिया पाया दिन रैन रलिया करे कामनु मिटे सगलिया देसा बिनवंत नानक कंत मिलिया लोड़ ते हम जैसा। मेरा मन आनंद भया जियो वजी वधाई कर ला लिया आ प्यारा सब तिखा बुझाई मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर सखी मंगल गाया सब मीत बंद पहर को उपजिया दूत थाऊ गवाया अनहत वाजे वजह घर मैं पिर संग सिज विछाई बिनवंत नानक सहज रह।

संत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधो ध्याय मना मुरार मुकंदे कटिए काल दुख फादो दुख हरण दीन सरण श्री तार चरण कमल आराधी है जम पंथ विखड़ा अगन सागर निमख सिमरत साधी है काल मलै दैता शुद्ध करता दिन सरहण आराधो बिनवंत नानक करो कृपा गोपाल गोविंद माधो सिमर मना दा मोदर दुख हर पै पंजन हर राया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वछल बिरदाया भगत वछल पुरख पूर्ण मन आचिंदया पाईऐ तम अंध कूप ते उधार है नाम मन वसाईऐ सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अनक भगती गाया बिनवंत नानक करो कृपा पार ब्रह्म हर राया चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर सर्व कला जिन धारी करना मैं समरथ स्वामी घटघट प्राण आधारी प्राण मन तन जी दाता बेअंत अगम पारो सरण जोग समरथ मोहन सर्व दुख बिदारो रोग सोग सब दुख बिनसै जपत नाम मुरारी बिनवंत नानक करो कृपा समरथ सब कल तारी गुण गाओ मना अचत अविनाशी सब ते उच दयाला विश्वंपर देवन को एक सर्व करै प्रतपाला प्रतपाल महादयाल दाना दया तारे सब किस काल कंटक लो मोह नासै जी जा कै प्रभसै सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूर्ण कला बिनवंत नानक इच्छ पुन्नी जब दीन दयाला गौड़ी महला पंजवा सुन सखिए मल उदम करेहा मनाए लय हर कंत मान त्याग कर भगत ठगौरी मोहै साधु मंत सखी वस आया फिर छोट ना जाई एह रीत भली भगवंत नानक जरा मरण पै नरक निवार पुनीत करै तिस जंत सुन सखिए एह पली बिनंती एहो मतांत पकाई है सहज सुभाए उपाद रहत होए गीत गोविंद गाई है कल कलेस मिटै भ्रमनासै मन चिन्हया फल पाई है पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर नानक नाम ते आई है सखी इच्छ करी नित सुख मनाई प्रम मेरी आस पुजाए चरण प्यासी दर्श बैरागन पेखो थान सवाए खोज लहो हर संत जना संग समरथ पुरख में लाए नानक तिन मिलिया सुरजन सुखदाता सेवड भागी माए सखी नाल वसा अपने नहा प्यारे मेरा मंतन हर संग हिलिया सुन सखिए मेरी नींद भली मैं अपनड़ा पिर मिलिया प्रम खोयो सांत सहे सुवामी परगास भया कौल खिलिया वर पाया प्रभ अंतर जामी नानक सोहाग ना टलिया।

ओवं गुरम कियो अकारा, एकै सुत परो बनहारा। भिन्न भिन्न त्रैगुण विस्तारं, निर्गुण ते सरगुण दृष्टारं। सगल भांत कर करै उपायो, जन्म मरण मन मोह बढ़ायो। दुहु भांते आप निरारा, नानक अंत न पारा वारा। सलोक सेई साह भगवंत से, सच संपै हर रास। नानक सच सुच पाई है, ते संतन कै पास। पवड़ी ससा सत सत सत सो, सत पुरख ते पिन ना को। सो सरन परै जे पायं, सिमर सिमर गुण गाए सुनायं। संसय परम नहीं कछ व्यापत, प्रगट प्रताप ता हमको जापत। सो साधु